साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करती हैं। गर्मी में योग करें शांत मन ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा तरबूज पुदीना दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय कॉफी जंक फूड धूप में तुरंत एक्सरसाइज बहुत टाइट कपड़े इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है। इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे, यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी। बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की। तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया। आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के खाएंगे और पानी पिएंगे, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपकी गैस की समस्या जितनी भी भारी होगी वह धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। तीसरा पॉइंट आते हैं, मेटाबॉलिज्म तेज करता है। खाली पेट पानी पीने से शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता बढ़ती है, वजन घटाने में मदद मिलती है। मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिन लोगों को जिम जाना होता है, भारी से भारी एक्सरसाइज करनी होती है। शायद उनका उद्देश्य यही होता है कि हमें पतला होना है, हमारा पेट अंदर हो जाए, टमी अंदर हो जाए और हम अच्छे से सुडौल होकर के मार्केट में जाएं, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र पर जाएं या फिर हम अपने घर पे रहें, अपने दोस्तों के बीच में जाएं। तो उनके लिए सबसे सरल उपाय गर्म पानी, यानी कि गुनगुना पानी की आदत डाल लेनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म तेज करता है, यानी कि खाली पेट पानी पीने से शरीर की जितनी भी खराब कैलोरी होती है वो बर्न की करने की क्षमता बढ़ जाती है और वजन घटाने में मदद करता है। आप मेरे कहने पे, यानी आज समता के कहने पे, एक महीना लगातार एक गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत सुबह शुरू करें और आप ये आदत को शुरू करने से पहले वेट करें और उसके बाद एक महीने के बाद अपना वजन जरूर करें। आप देखेंगे कि 1 से 2 किलो वजन आपके शरीर का कम होता हुआ दिखाई देगा, बिना किसी सर्टिफिकेट से, बिना किसी साइड इफेक्ट से, बिना किसी गोलियों से, बिना किसी भी भारी एक्सरसाइज करने से। चौथा पॉइंट आते हैं, जो कि हम गर्ल्स के लिए, हम महिलाओं के लिए एक रामबाण जितना काम करता है।
जी हाँ दोस्तों, त्वचा को बनाता है ग्लोइंग। आज हर एक महिला, हर एक लड़की की ये चाहत होती है कि हम खूबसूरत दिखें, हमारे बाल लंबे हों, हमारे चेहरे पे कोई मुहासा नहीं हो, कोई पिंपल ना हो, और हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड होकर के एक चमकती हुई त्वचा लगे। तो देर किस बात की है, सिर्फ आपको एक छोटी सी आदत को अपनाना है और अपनी जिंदगी में देखना है एक बड़ा बदलाव। बिल्कुल, एक गिलास पानी गुनगुना आपको नित्य प्रतिदिन योग की क्रिया में, यानी कि योग करने के बाद में आपको अपनी जीवन शैली में इसको अपनाना है, जिससे आपको मिलेगा लाभ, खून साफ होता है। अगर खून साफ होगा, हमारी बॉडी का ब्लड साफ होगा, तो पिंपल और मुहासे बिल्कुल नहीं होंगे, ड्राइनेस कम होती है। सर्दियों में ड्राइनेस जिन्हें ज्यादा होती है, यानी कि आपको पानी की कमी है, त्वचा में नेचुरल चमक आती है। आप जितनी भी महंगी क्रीम लगा लें, लेकिन अगर आपकी स्किन पर नेचुरल चमक है, तो इसका मतलब है कि आप पानी पीने में सबसे ज्यादा अच्छे हैं और पानी को पी रहे हैं। नेचुरल चमक जानने का सबसे आसान तरीका होता है दो टाइम पर। बताऊं कैसे? पहला, जब आप सुबह सो के उठते हैं, आप अपने आप को शीशे में निहारें। अगर आपके चेहरे पे हल्की सी भी एक चमक है, यानी कि ये चमक आपके अंदर की है, क्योंकि आपने सोते समय कोई क्रीम नहीं लगाई है और उठते ही आपने कोई क्रीम नहीं लगाई है। जो चमक आती है वो आपकी नेचुरल चमक है। दूसरा, जब आप नहा के निकलते हैं किसी भी प्रोजेक्ट से, अगर आपने अपने फेस को साफ किया है, साबुन से साफ किया है, लेकिन एक खिंचाव, एक चेहरे पे सूखापन आ ही जाता है, जिसके कारण से वो चमक कहीं ना कहीं छिप जाती है। लेकिन अगर वो चमक आपको दिखाई दे रही है, इट मींस कि आपके अंदर पानी की कमी नहीं है। अगर वो चमक नहीं है, त्वचा रूखी हो गई है, इसका मतलब है आपकी स्किन को हाइड्रेशन की आवश्यकता है। पांचवा पॉइंट आता है, दिमाग को रखता है फ्रेश। रात में शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, सुबह पानी पीने से थकान कम होती है, सिर दर्द से राहत होती है और एकाग्रता बढ़ती है। मैं बता दूं स्टूडेंट्स को कि अगर उन्हें पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, एकाग्रता नहीं आ रही है, थकान सी महसूस होती है, एग्जाम्स हैं, यार मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन अगर अभी मोबाइल मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। तुरंत तुरंत हम मोबाइल देखने बैठ जाते हैं, स्क्रीन को देखने बैठ जाते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई में एकाग्रता नहीं है तो सब कुछ बेकार है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर वो अभी से एक गिलास सुबह पानी पीना शुरू कर देंगे, तो रात में शरीर डिहाइड्रेट हो जाने के कारण से जो थकावट हो जाती है, एकाग्रता नहीं होती है, ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। छठा पॉइंट है, हृदय और ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सर्दियों में खून गाढ़ा हो जाता है, लेकिन अगर हम एक गिलास पानी सवेरे उठ करके पियेंगे, जिससे खून गाढ़ा नहीं होगा, ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, दिल पर दबाव कम पड़ता है, और कहा जाता है कि यदि हृदय आपका स्वस्थ है तो आपका सब कुछ स्वस्थ है। सातवां पॉइंट आता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोज सुबह पानी पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, सर्दी जुखाम जैसी समस्याएं कम होती हैं, हम कम बीमार पड़ते हैं। आइए अब हम बता दें आपको कि ये नियम कैसे करना है और कितना करना है। सवेरे उठते ही नित्य क्रिया करने के बाद में, यानी सोच के करने के बाद में, उठते ही आप आराम से कहीं जमीन पर उकूड़ू बैठ जाएं, या तो फिर आप कहीं पे भी आराम से मैट पे बैठ जाएं। अगर आपको इतनी भी व्यवस्था नहीं है तो आप किसी कुर्सी पे, मेज पे, पलंग पे, सोफे पे, कहीं पे भी आप बैठ जाएं। उसके बाद में एक गिलास गुनगुना पानी लें। कहते हैं कोई भी शुरुआत छोटे से करनी चाहिए, एक गिलास पानी से करें। अगर आपको एक गिलास भी भारी लग रहा है तो आधे गिलास से आप शुरू करें, आधा गिलास गुनगुना पानी सिप सिप करके पिए। साथ ही साथ आज मैं आपको एक टेक्निक और बता दूं कि पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है। पानी मुंह में रख करके आपको दांतों को चबाना है, जिससे जिस तरीके से आप खाना चबा के खाते हैं और हमें यह पाचन में सहायता मिलता है, ठीक वैसे ही पानी को भी चबा करके ही पीना चाहिए। उसके बाद इसमें अगर आप चाहें, जिन्होंने अपना वेट कम करना है, जिन्होंने अपनी टमी को अंदर करना है, तो यदि आप चाहें तो उस गुनगुने पानी में
दो से तीन ड्रॉप नींबू की और आधा चम्मच शहद डाल लें। अगर आपको सूट करे तो, मतलब अगर आपको सूट नहीं करेगा आप एक दो दिन उसको पी के देखें, अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ सादा पानी में दो से तीन ड्रॉप नींबू की आप डाल करके इसको पी सकते हैं। आइए अब हम आपको बता दें ध्यान देने योग्य बातें। बहुत ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, गुनगुना पानी पीना है, जो टैप से बिल्कुल गुनगुना पानी आता है या तो आप उसे पिए, या आप रात में एक गिलास पानी को भर के रख दें और वही पानी सुबह उठ करके पिए। एक साथ ज्यादा पानी न गटके, सिप सिप करके पानी पिए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से सलाह जरूर से लें। सुबह की हेल्दी रूटीन को जानने के लिए आइए हम एक चीज आपको और बता दें, वॉशरूम रूटीन। पानी पीने के 5-10 मिनट बाद पेट साफ होने की आदत जो बन जाती है ना, इससे सबसे अच्छा होता है कि आपकी लीवर की डिटॉक्स हो जाती है, जिससे आपको गैस एसिडिटी नहीं बनती है। योग प्राणायाम शुरुआत करने वालों के लिए अनुलोम विलोम 5 मिनट, कपाल भाती 3-5 मिनट, भुजंग आसन और पवन मुक्तासन 5 मिनट। और पेट की चर्बी गैस तनाव में ये बहुत मदद करता है। इन तीनों प्राणायाम को करने के बाद में आप एक गिलास आराम से बैठ करके सिप सिप करके पानी पीजिए, और उसके बाद में आप अगर चाहें तो थोड़ा सा वॉक, यानी कि अगर आपकी छत खुली हुई है, अगर छत खुली हुई नहीं भी है तो आप अपने आंगन में गोल गोल घूम सकते हैं, या फिर सामने से जाएं फिर वापस लौटें, फिर सामने से जाएं और वापस लौटें, या तेज चाल आपको चलनी है योग प्राणायाम करने के बाद में और पानी को पीने के बाद में। उसके बाद में जब आपको पसीना आ जाएगा और आपको थोड़ी सी थकावट लगेगी, बस उसी समय आपको आराम कर लेना है और फिर आपका जो भी रूटीन है रोज का उसे ये कर लेना है। एक्सरसाइज के 20-30 मिनट बाद ही आपके पास कोई भी नाश्ता, यानी कि आप हेल्दी ऑप्शंस जरूर कर सकते हैं, जैसे फल ले सकते हैं, 4-5 भीगे बादाम खा सकते हैं, ओट्स या दलिया खा सकते हैं, या फिर उबला हुआ एग ले सकते हैं, पनीर यदि हो तो, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो पूरे दिन का जो आपको पानी पीना है वो है 8-10 गिलास, थोड़ा थोड़ा करके पिए ताकि ये पूरा रूटीन एक दिन में पूरा हो जाए। तो ये थे कुछ आज के टिप्स जो कि हमने योग के साथ में किए। योग के साथ में पानी का महत्व, पानी को कैसे पीना है, कितना पीना है और किस दशा में पीना है, ये सारी चीजें आपको आज हमने बताई। तो क्योंकि मैं इन सारे रूटीन्स को करती हूँ और आप भी करिए, फिट रहिए। फिर मिलेंगे एक नए टिप्स के साथ में, तब तक करें योग, रहें निरोग। हेलो दोस्तों, मैं आपकी समता योगा एक्सपर्ट योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना खुद से भी ज्यादा और बहुत सारा ध्यान रखते होंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ। आज हम बात करते हैं अपने एक नए प्राणायाम की तरफ जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। जी हाँ दोस्तों, शीतली प्राणायाम के बारे में मुझे लगता है कि काफी लोगों को जानकारी भी है और काफी लोगों ने यह नाम भी जाना होगा और सुना होगा। तो जानेंगे आज हम विस्तार से शीतली प्राणायाम के फायदे और अभ्यास करेंगे, इनके नुकसान तो नहीं कहेंगे, मतलब ये कि अगर हमको नहीं करना है या किस अवस्था में करना है वो बताएंगे, और साथ में हम जानेंगे इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। शीतली शब्द का अर्थ है ठंडा करने वाला, यानी वह प्रक्रिया जो हमारे शरीर को शांत करती है और शीतलता की भावना दे सकती है। शीतली शब्द को मूल रूप से शीतल शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है ठंडा या सुखदायक। जी हाँ दोस्तों, शीतल नाम से ही आपको ये प्रतीत हो रहा है कि शीतली का अर्थ होता है शीतल यानी ठंडा, और यदि हम यह प्राणायाम के रूप में लाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, यानी हमारे संपूर्ण शरीर को किस तरीके से यह शीतल करते हुए शांत करता है। शीतली प्राणायाम का दैनिक अभ्यास हमारे शरीर के साथ मन को भी शांत करता है। शीतली प्राणायाम का मूल उद्देश्य शरीर के तापमान को ठीक करना और उनसे हमारे तांत्रिक तंत्र और स्व अंतःस्रावी ग्रंथियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से
व्यक्ति युवा और आकर्षक हो जाते हैं और इसका दैनिक अभ्यास प्यास और भूख को नियंत्रित करने में आपको सक्षम बनाता है। शीतली प्राणायाम कुछ हद तक शीतकारी प्राणायाम की जैसा है, यानी दोनों का ही उल्लेख प्राचीन पाठ में हठ योग प्रदीपिका में किया गया है। इस लेख में शीतली प्राणायाम के आसन को करने के तरीके बहुत सारे उल्लेखों में बताए गए होंगे, लेकिन साथ में सावधानियां भी बताई गई होंगी जो आज हम पूर्ण रूप से उल्लेख में करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे शीतली प्राणायाम किस तरीके से होता है, यानी हम साथ में करेंगे अभ्यास। तो आइए दोस्तों हम आसन पर बैठ जाते हैं और किसी भी मुद्रा में, यानी पद्मासन की स्थिति, सुखासन की स्थिति में आकर के हम लोग जमीन पर योगा मैट या चद्दर बिछा लें और एकाग्रचित होकर के बैठ जाएंगे। किसी भी आरामदायक ध्यान करने के आसन में बैठ जाएं। हाथों को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें, आंखें बंद कर लें और पूरे शरीर को शिथिल करने की कोशिश करें, यानी पूरे शरीर को हम यह मान लें कि यह शरीर हमारा नहीं और हम बिल्कुल आराम की स्थिति में बैठ जाएं। जहां तक संभव हो सके तनाव के बिना। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि यदि हमारे दिमाग में कोई भी स्ट्रेस या कोई भी तनाव, कोई भी प्रॉब्लम अगर चल रही है कि हमें ये करना है, अभी मुझे ये काम निपटाना है या हमें कॉलेज जाना है या हमें ये जॉब में ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग से, आप अपने मस्तिष्क से यह सारी चिंताओं को अलग करके बैठ जाएं। जीभ को मुंह के बाहर बढ़ाएं, जीभ के किनारों को रोल करें ताकि यह एक ट्यूब या नालिका जैसी बन जाए। जैसे दोस्तों आप अपने मुंह में, जैसे आपकी जुबान है तो जुबान को इस तरीके से फोल्ड कर लें, यानी मोड़ लें, जैसे वो नालिका का शब्द जैसे मैंने अभी लिया तो जैसे नाली का रूप होता है, यानी उसके बीच में एक जगह बन जाती है, उस तरीके से आपको मोड़ लेना है और इस ट्यूब के माध्यम से श्वास लेंगे, यानी जब वो रोल हो जाएगी तो उसी रोल के माध्यम से हमको श्वास लेनी है। श्वास लेने के अंत में जीभ को मुंह में वापस अंदर ले लें और वैसे ही मुंह को बंद कर लें। नाक के माध्यम से श्वास को लेंगे, जीभ के किनारों को रोल करें ताकि यह एक ट्यूब नालिका जैसी बन जाए और फिर हम जीभ को अंदर लेकर के श्वास को लेंगे। श्वास लेते समय तेज हवा के समान ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। जीभ और मुंह की छत पर बर्फीली शीतलता का अनुभव होगा। यह एक चक्र है, हम इस चक्र को 9 चक्र के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम फिर से इस अभ्यास को एक बार करते हैं। किसी भी आरामदायक स्थिति में हम बैठ जाएंगे और उसके बाद मुद्रा करके घुटनों पर हाथ रख लें, आंखें बंद कर लें और पूरी तरह शरीर को शिथिल बना लें। जहां तक संभव हो सके तनाव के बिना ही जीभ को मुंह के बाहर बढ़ाएं, जीभ के किनारे को रोल करें ताकि यह एक ट्यूब या नालिका जैसी बन जाए। इस ट्यूब के माध्यम से श्वास लें। श्वास लेने के अंत में जीभ को मुंह में वापस ले लें और जीभ को मुंह में वापस लेने के बाद में उसे अंदर कर लें। नाक के माध्यम से श्वास को छोड़ें, मुंह से श्वास नहीं लेनी है। श्वास लेते समय तेज हवा के समान ध्वनि उत्पन्न होगी। जीभ और मुंह की छत पर, यानी आपके पूरे मुंह में बर्फीली शीतलता का अनुभव होगा। यह अभी एक चक्र संपूर्ण हुआ। यही चक्र आपको
पूर्णता 9 या 10 बारी करना है और किसी भी समय आप इस चक्र को कर सकते हैं। इस प्राणायाम यानी शीतली प्राणायाम को करने से हमारे पास कोई इसमें समय की बंधता नहीं है कि अगर हमने अभी खाना खाया है तो हम नहीं कर सकते हैं, हम शाम के समय नहीं कर सकते हैं। हम इस प्राणायाम को किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे पूरे शरीर को शीतलता प्रदान कर

नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक सुबह का कार्यक्रम पहली किरण। मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है बेहद खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे बरकतों, सब्र, इबादत और रहमत के महीने यानी माह रमजान की। रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं है दोस्तों, ये अपने अंदर झांकने, खुद को सुधारने और अल्लाह से जुड़ने का महीना है। तो रमजान क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और इससे क्या क्या होता है बदलाव हमारे जीवन में, इन सब पे आज चर्चा करेगी आपकी अपनी आरजे, आपके अपने सुबह की पहली किरण यानी आपके पसंदीदा कार्यक्रम पहली किरण के साथ।

दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उस पाक महीने की जो कि है रमजान। चलिए तो फिर बात कर लेते हैं रमजान के इतिहास के बारे में। रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है। यही वो महीना है जब पवित्र कुरान का अवतरण हुआ था, यानी जब अल्लाह पाक ने हमें ये नियामत बरती थी कि हम कुरान पाक से जुड़ सकें। कुरान इस्लाम के अंतिम पैगंबर पैगंबर मोहम्मद पर कुरान की पहली आयत इसी महीने में नाजिल हुई थी। कहा जाता है कि इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए इसे रहमत, मगफिरत और निजात का महीना भी कहा जाता है।

दोस्तों, आज हम पहली किरण के माध्यम से सेलिब्रेट कर रहे हैं उस महीने को जो कि त्योहारों में सबसे आला माना जाता है, रमजान का महीना। चलिए जानते हैं कि आखिर रमजान क्यों मनाया जाता है। रमजान इसलिए मनाया जाता है क्योंकि खुदा के करीब आने के लिए सबसे सही वक्त होता है। सब्र और संयम सिखाने के लिए भी ये वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों का दर्द समझने के लिए रमजान मनाते हैं। आत्मशुद्धि और आत्मसंयम के लिए भी ये पाक महीना मनाया जाता है। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि बुराई से बचने, झूठ से दूर रहने और दिल को साफ करने का अभ्यास भी है। तो आइए मनाते हैं इस दिन को, इस महीने को और इस वक्त को और भी शानदार तरीके से, हम और आप मिलकर।

जैसा कि आज हम मना रहे हैं दोस्तों रमजान का महीना और उसके बारे में कुछ चर्चा की जा रही है, तो कैसे मनाते हैं इसको, आइए बात करते हैं इस पे। पूरे एक महीने का वक्त निकालते हैं हम माहे रमजान को सेलिब्रेट करने के लिए। जी हाँ, पूरा दिन इतनी खुशियों के साथ बीतता है, रात भी हमारी बड़ी ही शानदार होती है। कारण क्या है? मनाने का तरीका, तो चलिए बात कर लेते हैं इस पर। सबसे पहले होती है हमारी सहरी। सुबह के फज्र की नमाज से पहले खाया जाता है कुछ खाना। फिर क्या होता है, दिन भर हम रखते हैं रोजा। रोजा यानी कुछ भी बिना खाए पिए। फिर आता है शाम का वक्त, जो होता है इफ्तार का वक्त। इफ्तार के वक्त में सूर्यास्त के बाद रोजा खोला जाता है। अक्सर रोजा हम खजूर और पानी से खोलते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, पहले का जब वक्त होता था तो सुबह सुबह जब हम एक दूसरे को जगा देते थे तो उसको भी कहीं ना कहीं शफा मानी जाती थी, दुआ माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि हमारे नेक कामों में इजाफा हुआ है। पर जब से मोबाइल का ज़माना हो गया तब ही से सभी कहीं ना कहीं अलार्म्स का यूज़ करते हैं, और अब हमें जग के मतलब एक दूसरे को जगाने के लिए दूसरे का दरवाज़ा नहीं खटखटाना होता है, बस एक रिंग करने की ज़रूरत होती है। पर फिर भी हम ये काम करना नहीं भूलते हैं। और जब शाम का वक्त होता है तो सब एकजुट होके पूरा परिवार, कोई कहीं भी हो, लेकिन इस मौके पर, इस पूरे एक महीने हम ऐसा सेलिब्रेट करते हैं जैसे पूरी दुनिया हमारी उस टेबल पे ही हो जो इफ्तार का वक्त होता है। बेशक हम खुद भी इफ्तार करते हैं और दूसरों को भी इफ्तार करवाते हैं।

कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो हमारा रमजान पाक का महीना होता है वो एक दूसरे से मिलने का, प्रेम बढ़ाने का, भाईचारे का भी महीना होता है, क्योंकि हम इस त्योहार को मनाते हुए ये सबसे पहले सीखते हैं क्या, भाईचारा निभाना। और इन सभी के अलावा हम पांचों वक्त की नमाज करते हैं, खासकर तरावीह की नमाज अदा की जाती है, और जकात और फितरा देकर जरूरतमंदों की मदद भी की जाती है। और इस तरह से जब पूरा एक महीना बीत जाता है तब आता है वो दिन जो होता है रमजान का अंतिम दिन, यानी ईद उल फितर। जी हाँ, जिसकी खुशियाँ बहुत ही अपार होती हैं। खुशियाँ लेकर आता है हमारे बीच में ये रमजान का अंतिम दिन यानी ईद उल फितर। जिस तरह हिंदू भाइयों में होली और दिवाली बेहद खास त्यौहार, मतलब इनका सबसे बड़ा त्यौहार होता है, उसी तरह हम मुस्लिम भाइयों में ये दिन यानी ईद का दिन सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे ज्यादा सफाक पाक और दुआओं से भरा हुआ दिन ईद उल फितर का दिन। जी हाँ, और इस दिन हमारे बड़े हमें ईदी देते हैं और हम ईदी लेने में हाथ पसार के सबसे आगे खड़े पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाली ईदी नहीं होती, वो दुआएं होती हैं, वो प्यार होता है, वो बरकत होती है जो हमें हमारे बड़ों से मिलती है। और सेवैया की मिठास कौन भूल सकता है, कोई नहीं। फिलहाल चलते हैं इस प्यारी सी कव्वाली की ओर और इसके बाद आते हैं कुछ और प्यारी प्यारी बातें लेकर रमजान पाक महीने के बारे में।

इतनी सारी बातों के बीच मुझे एक छोटा सा विचार आया है, वो आपसे ये साझा करने वाली हूँ मैं। रोजा सिर्फ पेट का नहीं, रोजा आंखों का, जुबान का और दिल का भी होना चाहिए। जब हम बुराई से बचते हैं तभी असली रोजा मुकम्मल होता है, यानी जब हम खुशियां बांटते हैं, जब हम दुआ करते हैं, जब हम दर्द सहने लगते हैं अपना नहीं दूसरों का, तो अल्लाह पाक के और करीब जाने लगते हैं।

जिसकी तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी, हमारे मुल्क में क्यों घुसाया, चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़ कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो उस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

दोस्तों, अब मैं आपसे एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहूंगी जिसका टाइटल मैंने दिया है असली रोजा। आखिर में असली रोजा है क्या? हम व्रत रखते हैं हिंदुओं में हुए, और अगर हम इस्लाम की बात करें तो हम रोजा रखते हैं। आखिर में ये व्रत और रोजा, ये उपवास रखा क्यों जाता है? इसका मेन मोटो क्या है, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक छोटे से गांव में आमिर नाम का एक लड़का रहता था। वो रोजा तो रखता था मगर दिन भर गुस्सा करता था, झूठ बोलता और लोगों से लड़ता भी था। एक दिन उसके दादा ने कहा, बेटा अगर रोजा रखते हुए भी तुम्हारा व्यवहार नहीं बदल रहा तो समझो तुम सिर्फ भूखे हो, रोजेदार नहीं। उस दिन आमिर को समझ आया कि रोजा सिर्फ शरीर का नहीं आत्मा का भी होता है। उसने अपने गुस्से पर काबू पाया, दूसरों की मदद करनी शुरू की, और तभी उसे महसूस हुआ असली सुकून क्या होता है। जी हाँ, जब हम असली सुकून से रूबरू होने लगे, दूसरों की खुशियों में खुश होने लगे, कुछ अच्छे कर्म को करते जाएं, तो समझ लीजिए कि आपने वाकई में कोई व्रत रखा है, कोई फर्ज अदा किया है, कोई रोजा रखा है, रोजेदार हो गए हैं आप। तो आइए अल्लाह पाक को याद करते हुए एक और गीत की ओर बढ़ते हैं, आपके अपने सुबह की पहली किरण यानी इस कार्यक्रम के माध्यम से।

तो दोस्तों, रमजान हमें सिखाता है कि सब्र में शक्ति है, दान में सुकून है और इबादत में आत्मिक शांति। जैसे हिंदू धर्म में सावन का महीना शिव भक्ति के लिए खास होता है, वैसे ही इस्लाम में रमजान आध्यात्मिक उन्नति का माह है, यानी माही रमजान।

अब थोड़ी सी चर्चा और करना चाहूंगी मैं आपसे रमजान को लेकर। रमजान, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस्लामी चांद आधारित कैलेंडर का नौवां महीना है। इस महीने को सबसे पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी दौरान पवित्र ग्रंथ कुरान का अवतरण हुआ था। इस्लामिक मान्यता के अनुसार पहली वही यानी ईश्वरीय संदेश पैगंबर मोहम्मद पर 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा की गुफा में उतरी थी। ये घटना रमजान की एक खास रात लैलतुल कद्र यानी शबे कद्र में हुई मानी जाती है। इसे हजार महीनों से बेहतर रात कहा गया है।

आखिर क्यों हुई रोजे की परंपरा? तो रोजा यानी उपवास इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। 624 ईस्वी में मदीना में मुसलमानों के लिए रमजान के रोजे अनिवार्य किए गए। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि आत्म संयम, सब्र और आत्म शुद्धि का

श्रोताओं अब बात करेंगे ऐतिहासिक महत्व की। किसकी? रोजे की। रमजान के महीने में कई महत्वपूर्ण इस्लामी घटनाएं हुई। 624 ईस्वी में बद्र की लड़ाई यानी बैटल ऑफ बद्र भी रमजान में लड़ी गई, जो इस्लामी इतिहास की अहम घटनाओं में गिनी जाती है। ये महीना आत्मचिंतन, दान यानी जकात और इबादत का प्रतीक बन गया।

अब बात करेंगे चांद और रमजान का इतना गहरा ताल्लुक क्यों होता है। जब तक चांद दिखता नहीं तब तक हम रोजा यानी रमजान रखना शुरू नहीं करते। कारण क्या है? और जब भी चांद हमें दिखता है तो हम चांद मुबारक क्यों कहते हैं? इन सबके पीछे की घटना है, इस्लामिक कैलेंडर चांद पर आधारित है। बस यही इतने से, यानी चांद जब हमें दिखेगा उसी हिसाब से हमारा इस्लामिक कैलेंडर भी काम करेगा। इसलिए रमजान हर साल लगभग 10 से 11 दिन पहले आ जाता है। चांद दिखने पर ही रमजान की शुरुआत और अंत तय होती है। तो हुआ ना बेहद खास चांद। इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या कोई अन्य धर्म, चांद तो चांद है और वो हमेशा से खास था, खास है और खास रहेगा। बिल्कुल आपके और हमारी तरह, जैसे आप हमारे लिए खास, हम आपके लिए खास, और ये सुबह भी हम सभी के लिए खास, क्योंकि आज हम मना रहे हैं बरकतों का महीना, इबादत का महीना, माहे रमजान। तो दोस्तों, रमजान का इतिहास हमें ये सिखाता है कि ये महीना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्म सुधार, करुणा, अनुशासन

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियाँ हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवन नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

गुड मॉर्निंग इंडिया एंड गुड मॉर्निंग गोंडा, आ गई आपकी आज समता एंड फटाफट से चैट बॉक्स में आ जाइए। आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम आदाब और आज के प्रोग्राम का ईद ईद ईद बहुत ज़्यादा मुबारक।

जी बिल्कुल, और सलाम करने की आरजू तो है ही। और आज है हमारा वेनसडे, नहीं हमारा थर्सडे स्पेशल, क्योंकि आज है ईद, और ईद एक बार सभी को दिल से मुबारक। तो फटाफट आ जाए एक सॉन्ग और, बहुत प्यारा सा ईद मुबारक मैं सुनाऊंगी, उसके बाद आऊंगी आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे।

चलिए सुनते हैं दिल रुआ की एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि मुबारक पे है। उसके बाद आते हैं, आज बहुत ही प्यारी सी पोयम लेकर के आई हूँ जो कि है ईद स्पेशल, तो आइए सुनेंगे लेकिन इस गाने के बाद।

0: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। तो चलिए फटाफट आज ईद मुबारक के लिए हम अभी चैट बॉक्स में भी आएंगे, लेकिन उसके पहले मैंने एक बहुत ही प्यारी सी पोयम आज ढूंढ के रखी हुई है आप सभी के लिए। आइए सुनते हैं एंड उसके बाद में थॉट ऑफ द डे। तो सबसे पहले तो जो पोयम है वो हम सुना देते हैं। गले मिलकर सबने दी मुबारकबाद, गले मिलकर सबने दी मुबारकबाद, मिठास सेवइयों की जैसे हो कोई याद। रंग बिरंगे न लिबास पहने हैं सबने, रंग बिरंगे नए लिबास पहने हैं सबने, सज गए हैं खुशियों के न जाने कितने सपने। मिटाकर दिलों से नफरत और दूरियां, मिटाकर दिलों से नफरत और दूरियां, मुस्कुरा रही है आज ये मजबूरियां। अल्लाह की रहमत बरसे सब इंसानों पर, प्यार और भाईचारा मैं के इस जहान पर। है यही पैगाम ईद का हर साल, हर चेहरे पे रहे मुस्कान बेमिसाल। मुबारक हो आपको ईद का त्योहार, दुआ है खुशियों से भरा हो आपका संसार। तो ये प्यारी सी जो पोयम अभी मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाली थी तो ये आपके लिए था, और मुझे विश्वास है कि आपको ये आज की पोयम ज़रूर पसंद आई होगी, है ना। तो चलिए फिर हम आज के विचार की ओर चलते हैं, जो कि हमारा बहुत ही मोटिवेशनल वाला विचार रहता है। तो विचार कुछ इस तरीके से है कि जिंदगी में हमेशा से सफलता उसे मिलती है जो ठान लेता है कि उसको हारना नहीं है। इंसान की सफलता उसकी हार या जीत से नहीं, बल्कि उसकी सोच से पता चलती है। मान ली तो हार, ठान ली तो जीत। तो ये था आज का थॉट। इंसान की सफलता उसकी हार या जीत से नहीं, बल्कि उसकी सोच से पता चलती है। मान ली तो हार, ठान ली तो जीत। और एक बहुत ही बढ़िया सा और मेरे पास थॉट है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो ये प्यारा सा थॉट आपके लिए। और उज़्मान खान, कमल नयन जी एंड हरिचंद सविता जी एंड धर्मेंद्र जी, इतने अभी लिसनर्स आए हुए हैं चैट बॉक्स में। एंड जल्दी से आ जाइए क्योंकि फटाफट आप लोग आएंगे तभी प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे। एंड अभी लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आएंगे हम आज की हेल्थ इज वेल्थ को लेकर के। भाई देखिए गर्मियां बहुत हो गई हैं, ठीक है, तो गर्मियों में हेल्थ इज वेल्थ को लेकर के एक तो प्रकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो प्रिकॉशन क्या होना चाहिए हम आपको बताएंगे। तो हेल्थ के मामले में जैसे गर्मियां हैं, तो गर्मियों में हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये हम सब आपको बताएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक सॉन्ग हो जाना चाहिए, क्योंकि सॉन्ग के बिना अभी सब लोग, आप लोग यही कहेंगे कि जैसे कल एक मैसेज आया था कि सब कहाँ हैं और अभी तक तो किसी ने वही नहीं दिया है, मतलब डेढ़ घंटे में केवल एक ही सॉन्ग है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, उसके बाद हम सीधे आते हैं आज का हेल्थ इज वेल्थ में क्या बताएंगे, ये तो आपको हमारे साथ बने रहना है तभी जान पाएंगे।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आर्य समुदाय एंड शो चल रहा है गुड मॉर्निंग गोंडा। तो आइए हेल्थ इज वेल्थ में जल्दी से शुरू कर देते हैं कि भाई गर्मियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं और गर्मियों में थोड़ा सा प्रिकॉशन हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और गर्मियों में स्वस्थ रहना भी एक अपने लिए बहुत बड़ा टारगेट का काम होता है। तो भाई गर्मियों में स्वस्थ भी रहना है और हमें खाना भी खाना है और हमें अपने आप को खुश भी रखना है। तो दिन भर पर्याप्त पानी पीने के लिए और कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी और आप दिन भर हाइड्रेशन में डिहाइड्रेशन से बचेंगे और हाइड्रेट रहेंगे। तो दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। अगर आपको पानी की प्यास नहीं लग रही है तो सिंपल सा एक आपको उपचार बता देती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि मीठा खाए बिना प्यास नहीं लगती है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो होती है जिसे प्यास को बढ़ाने के लिए इन दिनों में, या तो आप पेठा खा सकते हैं, या तो आप किशमिश रख सकते हैं और या तो आप जो सफ़ेद वाले बताशे होते हैं ना वो आप ले लें, सबसे सस्ता एंड जिसे कहते हैं ना सस्ता एंड सुलभ, तो वो ले लें और जिससे आप खा करके आप अपनी प्यास को बढ़ा सकते हैं और पानी भरपूर मात्रा में पी सकते हैं। दिन भर पर्याप्त पानी लेंगे तो इसे डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हर थोड़ी देर में पानी को पीना पड़ेगा और आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और मौसमी, तरबूज जैसे फल ज़्यादा लें। तेज धूप में बाहर निकलते समय छाता, टोपी या सनग्लास का उपयोग ज़रूर करें। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक जो बहुत तेज धूप से इस समय हो रही है उसे बचें। हल्का और सूती कपड़ा पहने ताकि आपका शरीर ठंडा रहे और कोशिश करें कि इस समय आप बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहने, मतलब ठंडे वाले जो बहुत लाइट शेड वाले कलर होते हैं आप वही कपड़े उसी कलर के आप कपड़े पहने। ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना कम खाएं। ज़्यादा तला भुना खाना खाएंगे तो आपका जो पाचन है वो गड़बड़ाने लगेगा। बासी खाना खाने से बचें, गर्मी में जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे आटा हो गया, सब्जी रखी रहती है फ्रिज में तो चलो सुबह को खा लिया, ये काम आप बिल्कुल ना करें। बासी खाना खाने से बचें, गर्मी में जल्दी ख़राब हो जाता है और जिसकी वजह से आपका पाचन खराब हो सकता है। बाहर से आते ही तुरंत ठंडा पानी ना पिएं और ना ही तुरंत नहाएं। रोज़ाना हल्का प्राणायाम और सुबह की सैर ज़रूर करें। भाई देखिए प्राणायाम योग के लिए तो हम लोगों ने जो FM में इतनी सुबह को 6 से 6:30 बजे तक का इतना बढ़िया सा एक प्रोग्राम सेट करके रखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि काफ़ी लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं, जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हर रोज़ कई ना कई ऐसे योग प्राणायाम हम लेकर के आते हैं जो कि आपके लिए, हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ज़्यादा अगर आपको योगा नहीं भी करना है ना, मुश्किल से 8 प्राणायाम ऐसे हैं, 4 प्राणायाम ऐसे हैं जो हमें ज़रूर से करने चाहिए। उसी में पूरा का पूरा एक संक्षिप्त, जिसे कहते हैं ना संक्षिप्त विवरण, और एक ही लाइन में हमें देना होता है तो 2 लाइनों में देना होता है, तो वही है 3 से 4 प्राणायाम ऐसे हैं जो कि आप अगर रोज़ करेंगे ना तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ करके कंटिन्यूसली प्राणायाम योग करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें प्रणो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निसार और भ्रामरी, ये कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिसको आप नियमित रूप से कर रहे हैं इन गर्मियों में, एंड शीतली प्राणायाम, तो आपको अंदर से एक पॉजिटिवनेस आएगी, प्लस प्लस प्लस आपको गर्मी कम लगेगी, प्लस मुझे तो ये पता है कि आपको भूख लगेगी और अच्छे से आपकी बॉडी जो है वो मेंटेन रहेगी। एंड बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और उन्हें बार बार पानी देते रहें। अगर चक्कर, कमजोरी, सिरदर्द या बहुत पसीना आए तो तुरंत आराम करें और ORS जरूर लें। पर्याप्त नींद लें ताकि शरीर थका हुआ महसूस ना करे। और उसके बाद में जो कि पॉइंट्स इसमें कुछ ऐसे दिए गए हैं जो कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपका शरीर थका हुआ है तो आप पर्याप्त रूप से नींद जरूर लें। हीट स्ट्रोक से बचें, यानी कि धूप में लंबे समय तक ना रहें। शरीर को ठंडा रखें, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहें। तेज बुखार, बेहोशी या उल्टी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एंड जो कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिसको हम ले सकते हैं गर्मियों में, खास करके नारियल पानी और तरबूज। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे नींबू पानी हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई। तो इन सब चीज़ों को अगर आप लेंगे ना तो आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ कि जिसको आप नज़रअंदाज ना करें। जैसे कहते हैं ना कि शरीर मांग रहा है मदद, क्या है वो? हर समय अगर आपको नींद आ रही है तो आपकी बॉडी में आयरन या थायराइड की कमी हो चुकी है। इसके लिए उपाय मैं बताऊँ आपको कि सुबह गुड़, चना और आंवला जूस आप ले सकते हैं। पेट में गैस की आवाज़ें अगर आ रही हैं तो गैस हो सकता है या आंतों में सूजन हो सकती है। इसका उपाय है अजवाइन, सौंफ और जीरे का पानी, आप इसको ले सकते हैं सुबह खाली पेट। जोर जोर से अगर आप सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। चुकंदर, अनार, तिल गुड़ के लड्डू आप ले सकते हैं। मुंह का स्वाद अगर बिगड़ा हुआ है तो लीवर या पाचन की गड़बड़ी हो सकती है। सुबह गुनगुना पानी, नींबू और शहद का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ बाल धोने के बाद अगर जड़ों में दर्द हो रहा है तो ये कारण हो सकता है स्ट्रेस और ब्लड सर्कुलेशन कम। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि नारियल तेल की मालिश और अश्वगंधा आपको हल्का सा लेना है। छोटे संकेत हैं लेकिन बड़ी बीमारी बनने से पहले संभल जाएं। और बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं तो आप इसको ज़रूर से, अगर आपको ये चीज़ें लग रही हैं तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो चलिए अब यहाँ लेते हैं हम थोड़ा सा पूर्ण विराम, यानी कि हम लेंगे यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे 31 मई, ज्येष्ठ पूर्णिमा है। तो क्या हो सकता है, क्या करना है, ये सब बताएंगे, लेकिन इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक ब्रेक। तो ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है, प्लीज़ आप सभी लोग ज़रूर से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस को नहीं सुनेंगे तो आपसे होने वाली कुछ चीज़ें छूट सकती हैं। तो प्लीज़ इसको सुनिए और इसका फ़ायदा भी उठाइए कि क्या है क्या नहीं है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं 31 मई 2026। तो ये 31 मई 2026 का जो ये दिन है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने सोचा कि आज मुझे मौका मिला है तो आज 28 तारीख तो है ही, तो बाकी बचे हैं 2 दिन। तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा, जीवन में मानसिक तनाव या फिर सुख समृद्धि की अगर कमी होती है तो इस पूर्णिमा के दिन आप ये थोड़े से जो उपाय हैं वो करेंगे, जिससे आपको आपकी मानसिक शांति मिलेगी और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। तो ये अधिक मास की पूर्णिमा है और तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो भाई ये 30 मई 2026 को सुबह 11:47 पर होगा और इसका समापन 31 मई 2026 को दोपहर 2:14 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ अधिक आर्थिक पूर्णिमा 31 मई 2026 रविवार को मनाई जा रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे अगर आप इस दिन पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो इसका जो फल है वो क्या होता है। देखिए, बहुत सारे घरों में देखा गया है, बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि पित्त दोष होता है, जिसके कारण से काम नहीं बनते हैं, घर में बहुत सारी कलेश होता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो वो दूर हो सकता है अगर आप इस दिन पूजा पाठ करते हैं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के बाद, यानी कि आप अपने घर में भी नहा करके दीप दान जरूर करना चाहिए, यानी कि अगर आप नदी पर जा रहे हैं, अगर आप कहीं ऐसे स्थल पर गए हैं तो गंगा स्नान करने के बाद में आप दीप दान जरूर करिए। अगर आप घर पे ही हैं तो नहाने के बाद में आप दीपक जरूर जलाएं, उसके बाद ही सूर्य देव को अर्घ दें, मतलब सूर्य को जो लोग जल देते हैं। आप घर में भी गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से मन की नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है और साथ ही पित्त दोष दूर होता है। यानी आप घर में भी अगर नहा रहे हैं तो गंगा जल आप अपने जो आपकी बकेट है जिसमें आप पानी भरते हैं उसमें आप डाल दीजिए, नहाने के बाद में आप दीपदान करें, यानी कि आप घर में दिया जलाएं, उसके बाद में आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। दूसरा है कि कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी अगर आप इस दिन ये उपाय कर ले रहे हैं। तो पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए, सुबह स्नान करने के बाद तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए और यह हर दिन करना चाहिए, हर दिन दीपक जलाना चाहिए, लेकिन इस दिन का खास विशेष महत्व है। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इस उपाय को करने से धन से हमेशा तिजोरी भरी रहती है। ओके, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहती है। दूसरा है कि सबकी मुरादें पूरी करने वाला ये दिन है। तो क्या है करना है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन देसी घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद पंचामृत, तुलसी दल, मिश्री, फल, पंजीरी का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से श्री हरि और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सभी मुरादें भी पूरी होती हैं। तो 31 को पूर्णिमा का बहुत बड़ा संयोग बन रहा है, तो इस दिन आपको जरूर से ये उपाय करना है और इस तरीके से आपको पूजा पाठ करना है। छोटा सा उपाय है कि रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठकर एक मंत्र को है उसका जाप आपको करना है 108 बार, अगर आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करनी है तो। ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र है, फिर से सुन लीजिए, ओम सोम सोमाय नमः। इसको 108 बार चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके उच्चारण करना है। जिसने भी ये कर लिया उसकी सभी मुरादें पूरी हो सकती हैं। एक कांच के बर्तन में पानी भरकर रात भर चांद की रोशनी में रखें। अगले दिन इस अभिमंत्रित जल को पूरे घर में छिड़क दें, जिससे क्या होगा कि नकारात्मकता जो हमारे घर की होती है वो दूर होती है। और वैसे भी पूर्णिमा का हर एक किया गया उपाय हमारे लिए एक समृद्धि का साधन बन सकता है, मानसिक तनाव दूर हो सकता है, और ये अचूक उपाय है पूर्णिमा के दिन का। तो भाई आप लोग ज़रूर करें, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो इसको ज़रूर करें पूर्णिमा के दिन। और वैसे भी ये जो मास चल रहा है ये बहुत ही उपयोगी है। इसमें कहा जाता है कि आप जो भी इसमें पूजा पाठ करते हैं उसका 4 गुना जो फल है वो मिलता है। तो आइए चलते हैं चैट बॉक्स में, और चैट बॉक्स में देखते हैं कि कौन कौन आ गया है। जिसमें आई हैं नीना जी, आशु जी, कसौटी जिंदगी के सीरियल का सॉन्ग है, अच्छा जी अच्छा जी, बेपनाह प्यारे, हाँ हाँ, नव्या जी गुड मॉर्निंग, आशु जी गुड मॉर्निंग, नीना जी गुड मॉर्निंग। लो भाई सबको बुला रही है मैम, आ जाओ, कहाँ है, अच्छा हाफ सारी लिसनर्स, ओके। तो प्रीति जी गुड मॉर्निंग, एंड सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। चलिए तो अब लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आएंगे सीधे गेम और राशिफल की ओर। तो मुझे लग रहा है कि हम कुछ गाने चला दें, और कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ पुराने गानों की ओर चलते हैं, मतलब कुछ ऐसे नगमों की ओर जो कि थोड़े से पुराने हैं। तो चलिए थोड़े से पुराने सही लेकिन हैं तो बहुत ही प्यारे से गाने, आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: बिल्कुल, कौन दिशा में ले चला है सांवरिया, और मैं दूंगी चैट बॉक्स में आपको वर्ड, और साथ ही साथ हम खेलेंगे गेम, और गेम के साथ साथ हम बताएंगे आपको राशिफल भी। तो तैयार हो जाएं, चैट बॉक्स में मैं देने जा रही हूं आपको एक वर्ड।

तो भाई प्रीति जी का सॉन्ग है ये, प्रीति जी के सॉन्ग को प्ले किया है क्योंकि कौन था वर्ड, कोई नहीं था, कौन था, तो कौन वर्ड में प्रीति जी ने सही से लिखा है। आइए मैं नेक्स्ट वर्ड देती हूँ चैट बॉक्स में।

0: बिल्कुल। और इसके बाद हम सॉन्ग प्ले करने जा रहे हैं आशु जी का, लेकिन उसके लिए छोटी सी ब्रेक जरूरी है।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
6: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
7: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

ओके, तो सॉन्ग सुन रहे हैं कमल नयन जी का, और इसके बाद सीधे अब हम आएंगे आज के राशिफल की ओर, और उसके बाद में बीच में हम आपको सॉन्ग्स भी सुनाएंगे, लेकिन इस सॉन्ग के बाद सीधे आएंगे राशिफल।

वेलकम बैक लिसनर्स। चलिए भाई, अब आता है राशिफल का टाइम और उसके बाद मैंने लगा दिया है आशु जी का सॉन्ग। तो प्लीज़ भाई, सभी लोग पार्टिसिपेट करें जिनके सॉन्ग्स अभी नहीं हुए हैं, जल्दी से अपने सॉन्ग्स को लिखें। और वर्ड हमने दिया है अपना, अपना वर्ड दिया है तो फटाफट लिखें। तब तक के लिए आइए हम चलते हैं राशिफल की ओर, जो कि आज का राशि है मेष राशि। सबसे पहली राशि चंद्र राशि के अनुसार आज है गुरुवार 28 मई 2026। पॉजिटिव है कि इस समय सकारात्मक परिस्थितियां बनी हुई हैं। प्रभावशाली लोगों से मेल मुलाकात होने से आप अपने अंदर भी बदलाव महसूस करेंगे। बच्चों के भविष्य से जुड़ी कुछ योजनाएं बनेंगी और उन्हें तुरंत लागू करना भी उचित होगा। किसी विशेष उद्देश्य को लेकर यात्रा भी करनी पड़ सकती है। और स्वास्थ्य बता रहा है कि लव लाइफ बता रहा है, सबसे पहले लव लाइफ बताएंगे कि एक घर में एक दूसरे का सम्मान बनाए रखने से दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियां बढ़ने वाली हैं। स्वास्थ्य बता रहा है कि तनाव वाली परिस्थितियों से दूर रहें, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की नियमित जाँच करवाते रहें। साथ ही साथ लापरवाही बिल्कुल ना करें। भाग्यशाली रंग है पीला एंड भाग्यशाली अंक है 7 मेष राशि वालों। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन, आइए जानते हैं क्या कि आज घर में दिन भर व्यस्तता रहेगी और मेहनत के मनोअनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। किसी शुभ चिंतक का आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके लिए वरदान साबित होंगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आपको सुकून मिलेगा। लव लाइफ बता रहा है कि घर का माहौल शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहने वाला है। किसी संबंधी के यहाँ जाने का निमंत्रण भी मिल सकता है। प्रेम संबंधों में आपस में कुछ भावात्मक दूरियां आने की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य बता रहा है कि सकारात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखें। माइग्रेन और सिर दर्द जैसी दिक्कत से बचने के लिए तनाव मुक्त रहें और उचित आराम भी लें। भाग्यशाली रंग है हरा एंड भाग्यशाली अंक है 5 वृष राशि वालों। मिथुन राशि वालों के लिए है, आइए जानते हैं आज का दिन कैसा। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात का अवसर मिलेगा। भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर विचार विमर्श कर सकते हैं। सिर्फ कोई भी निर्णय लेने से उचित योजना बनानी होगी। ओके। दिन के उत्तरार्ध में उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। लव लाइफ बता रहा है कि जीवन साथी के साथ घूमने जाने का प्लान बनेगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य और प्यार बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य बता रहा है कि कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या दोबारा उभर सकती है। आयुर्वेदिक इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। भाग्यशाली रंग है गुलाबी एंड भाग्यशाली अंक है 3 मिथुन राशि वालों। नेक्स्ट राशि हमारी आती है कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन है, आइए जानते हैं कैसे। कि पॉजिटिव है, कलात्मक गतिविधियों में रुचि रखने वालों के लिए दिन विशेष है। आज अपनी योग्यता को निखारने का मौका मिल सकता है। दिन भर व्यस्तता के बावजूद आप घर परिवार के लिए भी उचित समय निकाल लेंगे। भूमि वाहन आदि की खरीद फरोख्त से जुड़ी योजना बनेगी। लव लाइफ बता रहा है कि पति पत्नी के बीच कुछ नोकझोंक जैसी स्थिति बन रही है। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आने वाला है। वाह। स्वास्थ्य बता रहे हैं कि व्यवस्थित दिनचर्या रखें, योग और एक्सरसाइज को भी नियमित रखें, वरना मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव की समस्या बढ़ सकती है। भाग्यशाली रंग है बादामी, भाग्यशाली अंक है 2 कर्क राशि वालों। तो भाई, ये थी 4 राशियां, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। ये हम लेंगे, लेकिन उसके पहले हम सुनेंगे एक सॉन्ग जो कि भेजा है आई थिंक आशु जी ने। तो आशु जी का सॉन्ग सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

नेक्स्ट वर्ड इज कसम, नेक्स्ट वर्ड इज कसम। और इसके बाद, इस सॉन्ग के बाद आएंगे हम बाकी चार राशियों के बारे में बताने के लिए, लेकिन नेक्स्ट वर्ड इज कसम।

जी बिल्कुल, इस प्यारे से सॉन्ग को हमें करना पड़ेगा यहीं स्टॉप, क्योंकि जो टाइमिंग है वो भागी जा रही है, और अगर टाइमिंग को रोका नहीं तो वो हो जाएगी, भाग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फटाफट बाकी राशियों के बारे में आइए जान लेते हैं, जो कि है हमारी राशि सिंह राशि। तो सिंह राशि के जातक आइए चंद्र राशि के अनुसार बताते हैं। पॉजिटिव, इस समय कुछ नया शुरू करने से पहले समय आपके पक्ष में है। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कामों की रूपरेखा बना लें। अपने संपर्क सूत्रों और मित्रों से मेल मुलाकात लाभदायक होगी। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे रिश्तों से जुड़ी बातचीत शुरू हो सकती है। एंड लव लाइफ बता रहा है कि दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंध अपयश या बदनामी का कारण बन सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। स्वास्थ्य बता रहा है कि वर्तमान मौसम की वजह से सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है। अपनी क्षमता से ज्यादा कार्यभार न लें। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज एंड भाग्यशाली अंक है 6। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन आइए जानते हैं कैसे है। दिन सफलता देने वाला है। अपनी क्षमताओं का भरपूर सहयोग करें एंड उपयोग करें। किसी मित्र या परिजन की मदद से कोई अटका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। अपनी आर्थिक योजनाओं पर जरूर ध्यान दें। दिन निकट भविष्य में लाभदायक परिणाम मिलने वाले हैं। लव लाइफ बता रहा है कि घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने में आपसी सामंजस्य होना जरूरी है। अगर प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो सफलता मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य बता रहा है कि किसी समय अनिर्णय और तनाव जैसी स्थिति बन सकती है। कुछ समय अनुभवी लोगों के सानिध्य में जरूर बिताएं। भाग्यशाली रंग है केसरिया एंड भाग्यशाली अंक है 1। कन्या राशि वालों, तुला राशि वालों के लिए है आज का दिन, आइए जानते हैं कैसे। आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाएंगे। आपके प्रयासों से कोई रुका हुआ काम भी बन सकता है। इससे आप सुकून और ऊर्जा महसूस करेंगे। राजनीतिक संबंधों के माध्यम से आपका जन संपर्क दायरा और ज्यादा बढ़ेगा। भविष्य में संपर्क आने आपके काम भी आएंगे। लव लाइफ बता रहा है कि जीवन साथी और परिवारजनों का सहयोग आपके मनोबल को मजबूत रखेगा। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग पर जाने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य बता रहा है कि ज्यादा तनाव और मेहनत का स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। काम के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज एंड भाग्यशाली अंक है 9। तुला राशि वालों, वृश्चिक राशि वालों के लिए आइए जानते हैं आज कैसा है दिन। उत्तम समय है सिर्फ परिस्थितियों का को सोच समझ कर आकलन करें। आय का कोई रुका हुआ स्रोत शुरू होने वाला है फिर से। अपने अंदर की क्रिएटिवनेस को निखारने का मौका मिलेगा। कुछ खर्चे और चुनौतियां आपके सामने आएंगी, लेकिन आप उन्हें भी हल कर लेंगे। लव लाइफ बता रहा है कि परिवार के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को शांतिपूर्वक तरीके से निभाएंगे। प्रेम संबंधों में रोमांटिक स्थिति रहने वाली है। स्वास्थ्य आपका बता रहा है कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन जोखिमपूर्ण कार्यों को करने से बचें। घर के वरिष्ठ लोगों के स्वास्थ्य को गंभीरता से लें। भाग्यशाली रंग है नीला एंड भाग्यशाली अंक है 3। धनु, मकर, कुंभ और मीन ये बताएंगे, लेकिन इस सॉन्ग के बाद, क्योंकि ये सॉन्ग भेजा है नव्या जी ने, आई थिंक ये नव्या ने सॉन्ग भेजा है। एंड आप सभी को फिर से ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। तो नव्या जी ने भेजा था एंड मनीष शर्मा ने भेजा है कसम खुदा की यही कहूँगा, कसम खुदा की। तो ये गाने की मिड लाइन है। प्लीज मनी जी, मैं अब आपको वर्ड देने जा रही हूँ, उससे आप सॉन्ग लिखिए और आप ही के सॉन्ग को प्ले करेंगे।

वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज क्षमता। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बाकी बची राशियों को, और उसके बाद मनी जी का एक सॉन्ग है तो मनी भाई के सॉन्ग को हम पूरा करेंगे। लेकिन उसके पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन जल्दी से जान लेते हैं। धनु के लिए आज दिन भर सभी काम जो हैं वो आपके व्यवस्थित रूप से होते जाएंगे। अपनी योजनाओं को गोपनीय तरीके से लागू करते चलें। थोड़ी सी सतर्कता आपकी योजनाएं सफल करने के लिए होंगी। किसी वरिष्ठ और शुभ चिंतक का सहयोग भी आपके लिए सहायक होगा। लव लाइफ बता रहा है कि दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी समस्याएं उठ सकती हैं, लेकिन समय रहते हल भी हो जाएंगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन समस्याओं की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन उठ सकता है। भाग्यशाली रंग है लाल एंड भाग्यशाली अंक है 5। धनु राशि वालों, अगली राशि आती है मकर राशि वालों के लिए। आइए जानते हैं कैसा है दिन। इस समय ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है। बेहतरीन अवसर सामने आएंगे, उन्हें हासिल करने में देर ना करें। किसी घर के किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए उत्तम रिश्ता आने वाला है। तो विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई के लिए पूरी तरह एकाग्र रहने वाले हैं। लव लाइफ बता रहा है कि दाम्पत्य संबंध मधुर शांति से परिपूर्ण होंगे। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य बता रहा है कि मांसपेशियों का दर्द परेशान करेगा। व्यायाम और योग आप इसका मुख्य इलाज है। भाग्यशाली रंग है आसमानी एंड भाग्यशाली अंक है 1। तो ये है मकर राशि वालों के लिए। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। आपका सकारात्मक नजरिया और संतुलित सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। घर के रखरखाव से जुड़ी योजनाओं पर विचार होगा। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से आत्मिक शांति मिलेगी। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। बिल्कुल। तो लव लाइफ बता रहा है कि वैवाहिक संबंध सुखद रहेंगे। आपके स्वभाव की भावुकता और मधुरता प्रेम संबंधों में नजदीकियां लाएगी। स्वास्थ्य बता रहा है कि वर्तमान मौसम की वजह से अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। ज्यादा कारभार की वजह से थकान और बदन दर्द जैसी स्थिति होगी। शुभ रंग है लाल एंड भाग्यशील एंड शुभ अंक है 3। अब लास्ट यानी कि मीन राशि वालों के लिए आइए जानते हैं आज का दिन कैसा है। पिछले कुछ समय से चल रही समस्या और असंतुलित खर्चों को व्यवस्थित करने में आर्थिक स्थिति में ठहराव आएगा। कोई उपलब्धि हासिल होने से मन प्रसन्न रहेगा। नई जानकारियां सीखने को मिलेंगी। बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान देकर मन में तसल्ली रहेगी। एंड लव लाइफ बता रहा है कि किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध दोनों में अनुकूलता रहेगी। स्वास्थ्य बता रहा है कि गुस्सा और तनाव जैसी नकारात्मक परिस्थितियों में अपना बचाव करें। कुछ समय आत्मचिंतन में जरूर बिताएं। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज एंड भाग्यशाली अंक है 3 मेन राशि वालों के लिए। तो भाई ये थी आज की राशि फल, और अब हम सुनेंगे मनी जी का ये प्यारा सा खूबसूरत सा सॉन्ग जो कि सनम तेरी कसम पे भेजा है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को, फिर मैं आपसे लूंगी टाटा बाय बाय।

ओके लिसनर्स, तो अब मुझे दे इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे सुन सहेली में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लेकिन आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा, एंड सॉन्ग्स का भी फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जिनके सॉन्ग्स नहीं हुए हैं वो सुन सहेली में आएंगे, हम उनके सॉन्ग्स को जरूर पूरा करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे

0: कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
1: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर गांव की गूंज, जहां हर एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि समाज का आईना होता है। हम हैं आपकी अपनी आवाज, आपके फेवरेट शो गांव की गूंज की टीम के साथ। आज हमारी 89.6 FM की टीम लेकर आई है एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम हाल ही में उत्तर प्रदेश के माधोपुर गांव गए थे, जहां हरियाली ही और सादगी थी, लेकिन उसी सुंदरता के बीच छुपी है एक कड़वी सच्चाई, बेटियों के प्रति भेदभाव। आज हम उसी सच्चाई को आपके सामने रखेंगे और उसे बदलने की शुरुआत करेंगे।
9: जब हम माधोपुर पहुंचे तो सच कहूं, ऐसा लगा जैसे किसी किताब के पन्ने में प्रवेश कर लिया हो। चारों तरफ फैले हुए गेहूं के खेत, जिनकी बालियां हवाओं के साथ ऐसे झूम रही थीं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू थी और लोगों के चेहरों पर एक सच्ची मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी थकान पल भर में उतर गई हो।
10: हाँ जया, यह सब बहुत सुंदर था, लेकिन जैसे जैसे हम गांव के अंदर गए, कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने दिल को बेचैन कर दिया। हमने देखा कि यहाँ लोग बहुत मेहनती हैं, परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बात बेटियों की आती है तो वही लोग, वही परिवार अचानक बदल जाता है।
8: मुझे याद है जब हमारी गांव की गूंज की टीम 89.6 FM की टीम एक घर में गई थी। वहाँ सब लोग खाना खा चुके थे, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब, और उसके बाद चुपचाप बिना कुछ कहे घर की बहुएं और बेटियां रसोई में बैठकर बचा हुआ खाना खा रही थीं। उनके चेहरे पर एक शिकायत नहीं थी, लेकिन आंखों में एक आदत सी थी, जैसे ये उनके जीवन का हिस्सा बन चुका हो।
11: हमार तो जियरा हिल के रहेगा, हम सोचित रहे कि ये का नियम है, का बेटी और बहू के पेट कम होते, का वो लोग इंसान नहीं है का। ये सब देख के लगत है कि आज भी हम कहीं न कहीं

0: हमने माधवपुर में सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं देखी, बल्कि एक सच्ची सोच देखी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ लोग बहुत धार्मिक हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन जब हमने ध्यान से सुना तो कई जगह एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, भगवान बस बेटा देना। कुछ लोग तो तंत्र मंत्र तक कराते हैं सिर्फ इस इच्छा में कि घर में बेटी नहीं बेटा ही जन्म ले।
1: यह सुनकर मन में एक सवाल उठा, क्या भगवान को भी हम भेदभाव सिखा रहे हैं?
2: और बात यहीं तक सीमित नहीं थी, हमने कुछ ऐसी बातें भी सुनी जो दिल को झकझोर देने वाली थी। कानूनन यह गलत है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे यह जानने की कोशिश करते हैं कि गर्भ में बच्चा लड़का है या लड़की,
3: और अगर उनका पता लग जाए कि पेटे में लड़की है तो उनका जन्म ले के पहले ही खत्म करने की सोच लेते हैं। गांव की दाई या कुछ गलत रास्ते अपनावे वाले लोग हैं, महतारी का इसी दवाई दे हैं जो मासूम की जिंदगी का दुनिया देखे इनके पहले खत्म कर दे, जानू कि नहीं।
1: अरे बाप रे बाप,
2: सोचिए जिसे हमने देखा भी नहीं, जिसने कोई गलती भी नहीं की, उसे सिर्फ इसीलिए जीने का हक नहीं मिलता क्योंकि वो बेटी है।
1: यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अन्याय है। अरे हम कहते हैं कि हम शिक्षित तो हो रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर आज भी हम एक बेटी को जन्म लेने का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं तो हम किस विकास की बात कर रहे हैं?
3: अरे ये सब तो सुन के हम सन रह गए। हम सोचत रहे कि आज भी कहीं न कहीं बेटी के जन्म से पहले रोक दिया जात है। का कसूर बाबू नन्ही सी जान के सिर्फ इतना कि वो बिटिया बा, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है।
1: बिल्कुल सही कहा था।
0: और जो बेटियां जन्म लेती भी हैं, उनका जीवन भी आसान नहीं होता। हमने देखा घर में लड़के आराम से बैठे हैं या पढ़ाई के नाम पर बाहर जा रहे हैं, और वहीं लड़कियां छोटी सी उम्र में रसोई में लगी हैं, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, पानी भरना, यहाँ तक कि खेतों में भी काम करना।
2: उनके लिए बचपन, खेल, सपने, सब कुछ जैसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उन्हें यह सिखा दिया जाता है कि तुम्हें तो ससुराल जाना है, तुम्हें घर का काम सीखना है।
1: और दूसरी तरफ बेटे चाहे पढ़ाई में अच्छे हों या नहीं, माँ बाप उनके लिए हर संभव कोशिश करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कर्ज लेते हैं, यहाँ तक कि खेत तक बेच देते हैं, बस इसीलिए क्योंकि वो बेटा है और उन्हें लगता है कि वही उनका भविष्य है।

0: हमारी 89.6 FM की टीम ने इस गांव में कई घरों में एक ही बात बड़े गर्व से सुनी। लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारे तीन तीन बेटे हैं, तीनों शहर में नौकरी करते हैं। उनकी आवाज में गर्व था, एक संतोष था, जैसे उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। लेकिन जब हमने धीरे से पूछा, क्या वे आपका ध्यान रखते हैं, क्या वे आपसे मिलने आते हैं, तो अचानक वही चेहरे जो अभी तक गर्व से चमक रहे थे एकदम शांत हो गए, आंखें झुक गईं और होठों पर एक मजबूर सी खामोशी छा गई।
1: हम उसी घर में कुछ देर बैठे और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पता चला कि इनके तीन बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ शहर में बस गए हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी जिंदगी, लेकिन उस अच्छी जिंदगी में अपने माँ बाप के लिए कोई जगह ही नहीं बची।
2: वो तो ना उन्हें अपने पास बुलावत है, ना ही गांव आवे की उनका फुर्सत है। और सबसे दुखद बात ये है कि अपन माँ बाप का शहर बुलावे से भी कतरात है, क्योंकि उन्हें डर लागत है कि कहीं उनके सादे सीधे साधे माँ बाप उनकी सारी इमेज का खराब ना कर दें।
3: पूरा कहा तू बहनी, सोचिए जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों की पढ़ाई में, उनके सपनों के लिए, उनके भविष्य के लिए लगा दी, खेत बेच दिए, अपनी जरूरतें छोड़ दी, आज वही माँ बाप अपने ही बच्चों के जीवन में एक बोझ जैसे महसूस किए जा रहे हैं। यह सिर्फ दूरी नहीं है, ये भावनाओं की दूरी है जो सबसे ज्यादा दर्द देती है।
0: लेकिन उसी घर में एक कहानी और भी थी, एक ऐसी कहानी जिसने हमारे दिल को छू लिया।
1: उस घर की एक बेटी भी थी, रीमा।
3: रीमा? रीमा ने शहर में शादी करने से साफ मना कर दिया था। जब रिश्ते आए बड़े बड़े शहरों से, अच्छे घरों से, तो उसने एक ही बात कही, मेरे माँ बाप मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर दूर नहीं जाऊंगी।
2: रीमा कहत रही कि जब हम शहर में जाइबे, हम बगल के गांव में शादी करब, ताकि रोज माई बाबू का देख सकी, उनका दवा पानी, उनका हाल चाल सब खुद देखी। और सच माँ वो अपनी जिद पर अड़ के रह गई और बगल के गांव में ही शादी करी से, जानियो कि नहीं?
3: हाँ, बगलियम करी से।
2: हाँ,
0: आज वही रीमा सरकारी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका है। सुबह स्कूल जाती है, बच्चों को पढ़ाती है और शाम को अपने माता पिता के पास आ करके उनका हाल भी पूछती है, उनको दवा देती है और उनके साथ बैठती भी है।
1: हमने अपनी आँखों से देखा, उसके माँ बाप उसे भर भर कर आशीर्वाद दे रहे थे। उनकी आँखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, गर्व और प्यार के आंसू थे।
3: और उन्होंने कहा, हमने जिंदगी भर अपने बेटों के लिए सब कुछ किया, लेकिन असली सहारा हमारी बेटी निकली। उनकी आवाज में पछतावा था, अपनी सोच पर, अपने फैसलों पर।
2: देखो ना दीदी, जिन बिटवन की खातिर सब कुछ दे दिया गा, वो सब शहर में बड़े खुश हैं, लेकिन असली सुकून तो बिटिया से मिलत है। बेटी ना हुई होती तो घर खाली खाली लागत, और बेटी साथ अगर है तो बुढ़ापा में सहारा बन जाती।
0: अब सवाल ये नहीं है कि बेटा जरूरी है या बेटी, सवाल ये है कि हम किसे क्या समझते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, बेटा नाम रोशन कर सकता है, लेकिन बेटी जीवन रोशन करती है।

0: आज हम सब यहाँ पर एक परिवार के मामले पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। रामलाल के घर में 5 बेटियाँ हैं और अब वह दूसरी शादी करना चाहता है ताकि उसे बेटा हो सके।
1: प्रधान जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या यह सच है कि हमारे कानून में एक पत्नी के रहते दूसरी शादी की अनुमति नहीं है? तो फिर हम गांव की सभा में ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं जो न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है?
2: और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये न्याय है कि 5-5 बेटी होवे का दोष सिर्फ माँ पर डाल दिया जाए? हमें तो ये बात समझ में नहीं आवत है।
3: क्या किसी ने यह सोचा कि बेटी या बेटा होना उसके हाथ में नहीं है? विज्ञान कहता है यह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो फिर हर बार माँ को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है?
1: एक नारी जो 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में पालती है, उसके दर्द को सहती है, उसे ही दोष देना, क्या ये इंसाफ है या हमारी गलत सोच?
4: और क्या बेटियां होना कोई अभिशाप है? वो 5 बेटियां जो आज उस घर में हैं, क्या वो प्यार नहीं दे सकती? क्या वो अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती? या सिर्फ कि वो बेटियां हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है?
5: लेकिन समाज में तो बेटा जरूरी होता है वंश चलाने के लिए, नाम के लिए।
2: ये तो नाम का वंश होए, नाम तो तब रोशन होए जब घर में इंसानियत बची रहा है। एक बात भाई कि 5-5 बेटियां हुई गई तो मेहरारू का दोष दो और दूसर शादी कर लो। और वो औरत तो इंसान ना हो जो दूसरे का दिल का दर्द ना समझे। इका न्याय नहीं कहा था, इका अत्याचार कहा जात है।
1: पर आज हम ये फैसला लेते हैं तो हम सिर्फ एक औरत के साथ अन्याय नहीं करते बल्कि हम पूरे समाज को ये संदेश देते हैं कि बेटी होना गलत है और ये सोच कभी खत्म नहीं होगी।
3: हमें यह तय करना होगा कि हम परंपरा को मानेंगे या सच्चाई को।
4: और अगर बदलाव यहीं से शुरू नहीं होगा तो कहीं से भी नहीं होगा।

0: आज हमने जो देखा सुना उसने सिर्फ हमारे मन को दुखी नहीं किया बल्कि हमें जिम्मेदार भी कर दिया। अगर हम सिर्फ सुनकर देखकर चले आते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि हम भी उसी गलती का एक हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि बदलाव छोटी छोटी शुरुआत से आती है।
1: जब एक माँ अपनी बेटी को बेटे जितना खाना देती है, जब एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए उतना ही सोचता है, जब एक परिवार बेटी के जन्म पर उतनी ही खुशी मनाता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है।
2: हम हमेशा कहते हैं कि समाज बदलना चाहिए, लेकिन समाज बनता किससे है? हमसे, हमारे घरों से, हमारी सोच से। अगर आज भी हम अपनी बेटियों से कहें कि तुम रसोई संभालो और बेटों से कहें तुम आगे बढ़ो, तो फिर हम किस बात की बराबरी कर रहे हैं?
1: एक पढ़ी लिखी बेटी सिर्फ अपने लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए बदलाव लाती है। वो अपने बच्चों को शिक्षित करती है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाती है और वो अपने माँ बाप का सहारा भी बनती है। इसीलिए बेटी को रोकना नहीं है, उसे उड़ान देना है।
3: देखो बहनी, बेटी का रोके के ना चाहिए, उके सपना ना तोड़े के चाहिए। वो भी चाहत है कि कुछ बन जाए, वो भी चाहत है कि माई और बाबूजी का नाम रोशन करे। जब वो बड़ा हो के उड़ना चाहत है, तब हम ओकर पंख कहे काट दी। अब उका उड़े दियो के रोक ना लगाओ, बेटी के पंखन में उड़ान भरो।
4: हमने हमेशा बेटों को ही सब कुछ समझा, लेकिन आज समझ में आया कि असली सहारा तो बेटी होती है।
5: आज मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी बहन को भी पढ़ाऊंगा और उसे भी आगे बढ़ने का मौका दूंगा।

0: आज माधोपुर में बदलाव की जो लौ जली है उसे बुझने नहीं देना है। जया, किरण दी, हमें रुकना नहीं है, चलिए अब किसी और गांव चलते हैं, किसी और चौपाल पर बैठते हैं, क्योंकि यह संदेश जितना दूर तक जाएगा उतनी ही मासूम जिंदगियां खिल उठेंगी।
1: बेटी है तो भारत है, उससे ही हर आंगन है, उसके सपनों से ही रोशन है ये सारा जीवन। कलम पकड़ेगी, हल चलाएगी, रचेगी नया इतिहास, हर आंगन अब महकेगा, खुशियों का होगा वास। ऊंचाइयों को छुएगी अब, न डरेगी न ये झुकेगी, प्रगति की इस राह पर अब बेटियां ही नहीं रुकेंगी। शिक्षित होगी नारी तो जग में होगा सवेरा, मिट जाएगा अंधकार, होगा खुशियों का बसेरा। बिल्कुल सही समता, हमारा सफर जारी है और जब तक हर घर में बेटी को उसका हक नहीं मिलता, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारी 89.6 FM की टीम का यही मिशन है, क्योंकि समाज तभी बदलता है जब हमारी सोच बदलती है।
2: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM गांव की गूंज, और हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी इन बातों से सहमत होंगे और आज से ही अपने घर की प्यारी सी बेटियों को ढेर सारा प्यार, सम्मान और दुलार अवश्य देंगे।
3: याद रखिएगा, बेटी है तो घर है, बेटी है तो प्यार है, बेटी है तो भविष्य है। नमस्कार।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
3: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वक्त हो चुका है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा, यानी 12 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं यानी आपकी आरजे आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन शो जिसका नाम है ज्ञानश्री लाइव। और जी आज हम एंजॉय कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपर हिट सॉन्ग और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे। देखिए आज है दिन बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार जिसे हम गुरुवार और थर्सडे के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन हम बात करते हैं, एक्चुअली आज हम बात करेंगे ही नहीं, आज हम करेंगे सिर्फ

बस सिर्फ चुगलियाँ चुगलियाँ करेंगे, बातें नहीं करेंगे और कुछ न्यूज़ सुनाएंगे। न्यूज़ किसकी होगी भाई? वो होगी हमारे चहेते सुपरस्टार यानी कि हमारे बॉलीवुड एक्टर्स की, और साथ ही साथ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे उनकी उनके लिए क्या बातें बन रही हैं। इन सभी गॉसिप को आपके साथ शेयर भी हम करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि भाई कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हैं, चाहे अपने घर से, आवास विकास या फिर कहीं भी, इस दुनिया में कहीं भी, आ जाइए जल्दी से चैट बॉक्स में, अपना हाल चाल बताइए और ये भी बताइए कि आप कहाँ से हमारे शो को सुन रहे हैं। चलते हैं आज के कंटेंट की तरफ, आज के विषय की तरफ, जो है बॉलीवुड न्यूज़। भाई आप सब ने एक गाना, अच्छा आप सब में से स्पॉटिफाई यूजर्स तो बहुत होंगे, जियो सावन और न जाने ऐसे कितने म्यूजिक के ऐप हैं जो आपने ज़रूर देखा होगा, और उसमें एक ऐड आ रहा है बहुत दिनों से, वो है चांद मेरा दिल। चांद मेरा दिल, जी हाँ, अनन्या पांडे की वही नई मूवी जो कि कहीं ना कहीं इसके ट्रेलर से ही बहुत ज़्यादा ये फेमस हो चुकी थी, और इसके जो ऐड है कहीं ना कहीं हमें मजबूर कर दिया है इस गाने की ट्यून ने कि हम इसको सुने। वो गाना क्या है वो आप मुझे बताइए। लेकिन चलते हैं इस मूवी की रिलीज और रिव्यू की तरफ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्य और अनन्या पांडे की लेटेस्ट रोमांटिक ड्रामा मूवी चांद मेरा दिल, जो कि 22 मई को थिएटर में रिलीज हुई है। फिल्म में एक कॉलेज लव स्टोरी है, लेकिन एक ट्विस्ट अब तब आता है जब कपल की जो लाइफ में अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी आ जाती है और फिर सिचुएशन शादी तक पहुंच जाती है। अब रिव्यू की बात करें तो मिक्स रिस्पांस मिला है। किसी ने फिल्म को मैच्योर लव स्टोरी बोला है तो किसी ने कंफ्यूज रोमांस। में बताया गया है कि भाई आखिर में ये जेन ज़ी का जो रोमांस सिस्टम होता है वो कैसे होता है। साथ ही साथ TOI ने भी इन्हें 3 स्टार और कहा कि जो इमोशनल टॉपिक है वो कहीं ना कहीं हमें जो है टच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पेसिंग भी इसकी स्लो है। वहीं रेडिफ ने स्टोरी को थोड़ी सी कंफ्यूज बताई है, और हमारा जो फेमस ट्रेड है जिसका नाम है तरण आदर्श ने इस मूवी को 3.5 रेटिंग दी है और बोला कि सेकेंड हाफ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका हो सकता है। साथ ही बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म 6 दिन में अराउंड 15 करोड़ कमा लिया है। अब देखना ये होगा कि भाई वीकेंड में ऑडियंस का प्यार इसे मिलता है या फिर ये प्यार कोई दूसरी मूवी ले जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं रणवीर सिंह की। जी हाँ, हमारे आपके सबके चहेते वही धुरंधर वाले रणवीर सिंह की। भाई रणवीर सिंह पे जो है फॉइज, जिसे हम FWICE कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। देखिए बॉलीवुड में इस वक्त सबसे शॉकिंग कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है रणवीर सिंह को लेकर के। फॉइज ने यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज़ ने रणवीर सिंह के अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव इशू कर दिया है। इसका रीज़न बहुत ही बड़ा है और हम आपको ही बता देते हैं कि भाई खबर है कि रणवीर ने Dawn 3 प्रोजेक्ट को अचानक से छोड़ दिया, और वो भी शूटिंग स्टार्ट होने के कुछ हफ्ते पहले। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने इस वजह से लगभग 45 करोड़ का उनका लॉस हो गया है। फॉइस ने इस LHD जो है इसे जो है 3 बार मीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन रणवीर सिंह की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। और अब बॉलीवुड में इशू को लेकर के काफ़ी डिबेट भी चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोफेशनलिज्म की जो है कहीं ना कहीं कमी है उनके अंदर, और कुछ लोग का कहना ये है कि एक्टर को प्रोजेक्ट छोड़ने का हक है। अब सच क्या है क्या नहीं है वो तो भाई हमें न्यूज़ चैनल वाले ही बताएंगे और हम भी आपको बताएंगे, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को पहले इसके एंड तक आने देते हैं। साथ ही साथ धुरंधर को लेकर के एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है जो आपको जाननी चाहिए, वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, ब्रेक में मैं जा रही हूँ और आपको छोड़ जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हिट सॉन्ग जो कि हमारे रणवीर सिंह का ही है, क्या करूँ ओ लेडीज़ मैं हूँ आदत से मजबूर।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानश्री लाइव। और आज हम एंजॉय कर रहे हैं बॉलीवुड की बहुत ही हॉट न्यूज़ को, और साथ ही साथ कर रहे हैं कुछ गॉसिप जो कि है हमारे चहीते बॉलीवुड स्टार्स की। और भाई देखिए, बातें तो काफ़ी सारी बनती है, स्पेशली तब जब आप बॉलीवुड स्टार हो। वैसे क्या आपको लगता है कि अगर इतनी सारी गॉसिप, इतनी सारी न्यूज़ आपके बारे में बनती तो क्या आप इसको लेकर के ओके हैं, या फिर आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आता? वेल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे बारे में इतनी बात बनती तो मुझे तो भाई बहुत ही गुस्सा आता है कि भाई कुछ सच है कुछ गलत है, लेकिन दुनिया उसको कुछ भी कर लेती है, कुछ भी उसका मतलब निकाल लेती है। वेल, चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। जी हाँ, अभी हम बात कर रहे थे धुरंधर की, और अब हम चलते हैं धुरंधर की एक और न्यूज़ की तरफ। देखिए, धुरंधर तो हम सभी ने देखी, क्या बेहतरीन मूवी है, क्या धमाकेदार एक्शंस हैं। ये इस मूवी ने सभी के दिल को राज कर दिया और आदित्य धर को एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर बना दिया। अब बात कर रहे हैं धुरंधर की मेन न्यूज़ की। देखिए, कंट्रोवर्सी इसकी अलग ही चल रही है, लेकिन एक्टिंग के मामले में रणबीर फिर भी सबका दिल जीते जा रहे हैं। उनकी फिल्म धुरंधर को 3.5 स्टार्स मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी, फिर भी थोड़ी बहुत कमी उस मूवी में थी। देखिए भाई, क्रिटिक्स का क्या है, वो थोड़ी बहुत तो नुक्स निकालती है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ नहीं भी अच्छा लगता है। फिल्म जो है वो कराची माफिया और टेरर ऑपरेशन के बैकग्राउंड पर बेस्ड एक थ्रिलर मूवी है, और स्टोरी में एक इंडियन एजेंट को है दिखाया गया है जो कि पाकिस्तान में जाकर के कराची में वहां पे जाके घुसकर पूरे टेरर नेटवर्क का खात्मा करता है। ऑडियंस को इस एक्शन और इंटेंसिटी जो है इसकी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, और टीवी के लिए एक गुड न्यूज भी है। जी हाँ, टीवी लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि 30 मई को स्टार गोल्ड पर इसका प्रीमियर होने वाला है। तो भाई, जिसके पास भी टीवी है तो भाई 30 मई को अगर आप धुरंधर देखना चाहते हैं अपने टीवी पे, तो सब काम छोड़ छाड़ के 30 मई को अपने टीवी के सामने स्टार गोल्ड ज़रूर लगा लीजिएगा। लेकिन फिल्म जो है इतनी बेहतरीन होने के बाद भी कंट्रोवर्सी से नहीं बच पाई, क्योंकि प्रोडक्शन डिज़ाइनर सैनी एस जौहर पर सेक्शुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगा हुआ है। बॉलीवुड में फिल्म जितनी भी बड़ी होती है, कॉन्ट्रोवर्सीज उतनी ही बड़ी होती है इसके साथ। दोस्तों, अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस अदाकारा की, जिनका नाम है उर्वशी रौतेला। भाई इनको कौन नहीं जानता, इनको सभी जानते हैं। देखिए, ये अपनी एक एआई जनरेटेड इमेज पर बहुत ज़्यादा भड़क गई। एआई की ज़माना है दोस्तों, लेकिन कभी कभी ये डेंजरस भी हो सकता है, ऐसा हम भी कहते हैं, ऐसा बड़े बड़े अधिकारी भी कहते हैं, और आपको खुद भी पता है कि एआई बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जितना हेल्पफुल है उतना ही डेंजरस भी है। उर्वशी रौतेला को जो है एक एआई जनरेटेड एक इमेज उनकी वायरल हुई है, जिसमें जो है ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण के सामने नील डाउन हुआ उन्हें दिखाया जा रहा है, यानी उनके सामने ये घुटने के बल है। इमेज का मैसेज ये था कि ऐश्वर्या राय ग्लोबल स्टारडम में सबसे ऊपर है और उर्वशी उनके जो है सबसे नीचे हैं। इस पर उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ज़ोरदार रिएक्शन दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ स्टॉप दिस टॉक्सिसिटी। उन्होंने बोला कि हर आर्टिस्ट का अपना टैलेंट होता है और अलग एक जर्नी होती है, कंपेरिजन कल्चर बंद होना चाहिए। और ऑनेस्टली ये बात काफ़ी ज़्यादा वैलिड भी है दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया अपीयरेंस जो है वो बहुत अप्रिसिएट एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करता है कि ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। पर याद रखिए कि अगर हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियां अलग अलग हैं, लेकिन सबका रोल कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी सहना गोस्वामी की। सहना गोस्वामी को अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं भाई, इन्हें हम रॉक ऑन गर्ल के नाम से भी जानते हैं और इनकी काफ़ी सारी OTT सीरीज और मूवीज रिलीज हो चुकी हैं। अब एक बोल्ड स्टेटमेंट जिससे इंटरनेट पूरा हिला हुआ है। रॉक ऑन एक्ट्रेस सहना गोस्वामी ने सिद्धार्थ खन्ना के पॉडकास्ट में रिवील किया कि वो अपने ओपन रिलेशनशिप में हैं। उन्होंने कहा कि उनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं और कोई प्राइमरी पार्टनर नहीं है। मिलन सोमान के साथ ब्रेकअप के बाद उनका ये पहला बड़ा और पर्सनल स्टेटमेंट है। सहना ने का कहना है कि हर रिलेशनशिप यूनिक होती है और वो किसी कनेक्शन को कैजुअल नहीं मानती है। सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं इस बात को लेकर कि कुछ लोग उनकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ट्रेडिशनल रिलेशनशिप को बेटर बोल रहे हैं। बॉलीवुड और मॉडर्न रिलेशनशिप का जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें, हमारी आपकी चहेती भूमि पड़नेकर को लेकर के भी एक बहुत बड़ा जो है खबर है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उन पे हुआ है केस फाइल, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, अब क्या केस हुआ है उस सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक में मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको इंजॉय करना है गुरु रंधावा की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बन जा तू मेरी रानी।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: अरे खाएगी क्या।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानस्थी लाइव। और आज है थर्सडे, आज हम एंजॉय कर रहे हैं कुछ बॉलीवुड न्यूज़। अभी हमने काफ़ी सारी न्यूज़ शेयर की, बातें की और अपने फेवरेट स्टार्स के बारे में भी कुछ खबर जानी। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आपको डराने की। जी हाँ, अभी तक मैं आपको डरा ही रही थी, लेकिन भाई डरने की कोई बात नहीं। अभी पहले मैंने बस आपको थोड़ा सा डराने के लिए एक झूठी खबर फैलाई। जी हाँ, झूठी खबर, उसको मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ कि भूमि पड़नेकर पर उत्तर प्रदेश में केस हो गया है। आप सबने ये ज़रूर सोचा होगा कि भूमि पड़नेकर ने आखिर ऐसा क्या किया जो उत्तर प्रदेश में इन पर केस हो गया। लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है, आप थोड़ा सा अपनी बीपी को नॉर्मल करिए, क्योंकि भाई भूमि पड़नेकर ने यूपी के एक केस पर दुख जताया है। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। वो न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। भाई उत्तर प्रदेश के बलिया में 9 साल की बच्ची के साथ हॉरिफाइंग क्राइम हुआ और अक्यूज में माइनर चिल्ड्रन भी बताया जा रहा है। इस पर जो है एक्ट्रेस भूमि पड़नेकर ने इंस्टाग्राम पर इमोशनल नोट भी शेयर किया है। उन्होंने कहा कि ये एक ब्रोकन सोसाइटी की निशानी है। भूमि ने सिर्फ विक्टिम ही नहीं बल्कि एक्यूज्ड बच्चों पर भी सोसाइटी का जो है उनको बताया कि ये विक्टिम है सोसाइटी। और उनका सवाल सबसे बड़ा यही था कि आखिर बच्चे इस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं तो इतनी छोटी एज में ऐसी सोच डेवलप हो रही है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी ही नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए एक वार्निंग भी है। देखिए, हम सब हमारे इंडिया में जो क्राइम रेट है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और इसमें ज़रूरी है कि हम एक जागरूक इंसान है, जागरूक नागरिक की तरह हमारे भारत के साथ और जो लोग विक्टिम हैं उनके लिए कुछ स्टेप ज़रूर उठाएं। ये जो है आप कभी भी कानून अपने हाथ में ना लें, पर जो सही है उसका सपोर्ट ज़रूर करें। उसके बाद हम बात करते हैं सनी देओल की। जी हाँ, हमारे सनी देओल ने वाइफ के साथ फ़ोटोज़ अलाउ कर दी हैं। गाइस, ये मोमेंट जो है वो पेपराजीज के लिए सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक था। सनी देओल जो यूजुअली अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट रखते हैं, उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर्स को अपनी वाइफ पूजा देओल के साथ फ़ोटो लेने दी। पेपराजी योगेश शाह ने मजाक में बोला कि आज सनी सर ने फ़ोटो लेने दी, वरना उनके 2.5 किलो के हाथ के सामने कैमरा उठाना भी मुश्किल हो जाता था। फैंस को ये रेयर ग्लिप्स जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे खुश भी हैं कि हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ चीज़ें जान रहे हैं। उसके बाद चलते हैं भाई सनी देओल के बाद बॉबी देओल पे। जी हाँ, बॉबी देओल जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग सुपरस्टार हैं, बॉबी देओल ने अल्फा की तारीफ की। अभी अल्फा क्या है ये भी हम जानते हैं। देखिए, बॉबी देओल ने अपकमिंग फिल्म अल्फा को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाई है। फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ लीड एक्शन रोल में नजर आएंगी और बॉबी देओल ने कहा है कि ये दोनों फीमेल लीड को हार्डकोर एक्शन करते हुए देखना बॉलीवुड के लिए एक फ्रेश विजुअल भी होगा। उन्होंने आलिया को डेडिकेशन के साथ, उनकी जो डेडिकेशन है, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है, उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। फिल्म 10 जुलाई 2026 को रिलीज होगी और इससे इंडिया की पहली बिग फीमेल लीड एक्शन मूवी भी बोला जा रहा है। हालांकि ये मूवी कैसी होगी कैसी नहीं होगी ये तो हमें देख के ही पता चलेगा। वेल, आपका क्या मानना है कि अगर आलिया भट्ट और शर्वरी साथ नजर आएंगी तो क्या मूवी अच्छी होने वाली है, क्या इसमें हमें एंटरटेनमेंट मिलने वाला है? उसके बाद हम चलते हैं भाई हमारे प्यार के देवता के पास। जी हाँ, इम्तियाज़ अली। भाई इम्तियाज़ अली के जो मूवीज़ होती हैं जिसमें लैला मजनू है और रॉकस्टार मूवी है, कहीं ना कहीं ये एक ऐसी मूवीज़ बनाते हैं जो हमारे दिल में अपना घर बना लेती हैं। और ये काफ़ी सालों, मुझे लगता है कि रॉकस्टार एक पुरानी मूवी है, लैला मजनू एक पुरानी मूवी है, लेकिन इसका क्रेज़ आज भी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने ही एक मूवी बनाई है जो है लव आजकल पार्ट 2। इसको लेकर के इसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। चलिए चलते हैं इस बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ को भी एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, डायरेक्टर इम्तियाज़ अली ने फाइनल एडमिट कर लिया है कि लव आजकल 2 एक यूज़लेस एक्सपेरिमेंट है। अरे भाई, ये क्या था? देखिए, फिल्म में कार्तिक आर्यन और सारा अली खान थे, लेकिन ऑडियंस ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। इम्तियाज़ अली ने कहा कि सीक्वल तभी बनना चाहिए जब स्टोरी नेचुरली कनेक्ट करे। सिर्फ नाम यूज़ करने से ऑडियंस इम्प्रेस नहीं होती है और ऑनेस्टली बॉलीवुड को ये लेसन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। देखिए आजकल जो मूवीज़ है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, हालांकि अगर आप ज़्यादा नहीं बस 20 साल पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी मूवी के पार्ट टू नहीं बनते थे। उसके बाद गोलमाल और धमाल जैसी मूवी जो कॉमेडी कॉमिक मूवी है वो जब आई उसके जब पार्ट बने लगे तो वो चलने लगे, लेकिन उसके बाद हर ही मूवी के अधिकतर हम देखते हैं कि हर मूवी के पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर निकल आते हैं, लेकिन स्टोरी कितनी इम्पॉर्टेंट है मूवी के लिए वो इम्तियाज़ अली ने बताया है। उसके बाद हम बात करते हैं जोया अख्तर की। जी हाँ, जोया अख्तर ने भी बहुत ज़्यादा उन पर भी न्यूज़ और चीज़ें स्टोर जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। जोया अख्तर के ऑफिस में दोस्तों 66 हार्ड डिस्क चोरी हो गई है। ये एक एक्टर के लिए, डायरेक्टर के लिए और जो भी लोग ऐसे काम करते हैं जो कि बॉलीवुड के लिए किसी फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, उनके लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। क्या था उस डिस्क में और क्या न्यूज़ है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद मैं ज़रूर मिलूँगी आपसे, बात हमें एक और बहुत ज़्यादा स्पेशल करनी है हमारे किंग खान को लेकर के, यानी कि हमारे शाहरुख खान को लेकर के। क्या बातें हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले इन्जॉय करेंगे ये बहुत ही प्यारा सा गाना भरे बाजार और इसके बाद शाहरुख खान का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग चेन्नई एक्सप्रेस फ्रॉम द मूवी चेन्नई एक्सप्रेस। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

वेलकम बैक लिसनर्स आफ्टर अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग चिन ताता जो कि है राउडी राठौर मूवी से, जो कि अक्षय कुमार की एक बहुत ही बेहतरीन गाना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट खबर की तरफ, जो कि हम बता रहे थे कि जोया अख्तर की है और शाहरुख खान की। वेल, शाहरुख खान की बाद में सुनेंगे, पहले हम आते हैं जोया अख्तर पे। देखिए, शॉकिंगली जोया अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी टाइगर बेबी की 66 हार्ड डिस्क चोरी हो गई हैं। इसमें अनरिलीज्ड फिल्म और वेब सीरीज भी थी। पुलिस ने एक बिजनेसमैन को अरेस्ट भी किया है और जोया ने कहा कि थैंकफुली सबका बैकअप अवेलेबल था। वो सारी चीज़ें चोरी तो हुई लेकिन उनका बैकअप अभी भी उनके पास ही है। लेकिन उन्होंने उन्हें ये दुख हुआ कि लोग पैसे के लिए क्रिएटिविटी को भी टारगेट करते हैं। लॉस रिपोर्टेडली 13 लाख से भी ज़्यादा का है, है ना। ये चीज़ें आप खुद सोचिए कि आपने बहुत मन लगा के कोई काम किया है, बहुत मेहनत से कोई काम किया है और उसके बाद आपकी मेहनत कोई चोरी कर ले जाए। देखिए, इसीलिए हमें स्मार्ट बनना चाहिए, हर चीज़ का बैकअप हमें ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं SRK यानी कि हमारे किंग खान शाहरुख खान की। देखिए, शाहरुख खान की किंग यानी कि 2026 में एक बहुत बड़ी इससे न्यूज़ आ रही है। किंग खान के फैंस तैयार हो जाइए, क्योंकि शाहरुख खान की नेक्स्ट बिग फिल्म किंग 2026 में रिलीज़ होगी। किंग इस मूवी का नाम है और हमारे किंग खान इसमें लीड रोल कर रहे हैं और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद और फिल्म में दीपिका पादुकोण भी नज़र आएंगी। तो मुझे लगता है ये मूवी पठान की तरह बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है। 2023 में पठान, जवान और धुनकी के बाद SRK का कमबैक ऑलरेडी आइकॉनिक होने वाला है और अब फैंस उनकी नेक्स्ट एक्शन एंटरटेनमेंट का वेट भी कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रणबीर कपूर की। रणबीर कपूर की रामायणा, रणबीर कपूर की मेगा प्रोजेक्ट रामायणा दिवाली 2026 में रिलीज होने वाली है। तो इस दिवाली आपकी दिवाली और भी ज़्यादा हैप्पी होने वाली है। ये एक ह्यूज बजट माइथोलॉजिक एपिक बताई जा रही है। रणबीर ने पूरा 2025 इसी प्रोजेक्ट को दिया है और लव एंड वॉर को भी दिया है। इनकी दो मूवीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली हैं, क्योंकि इसमें इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत छुपी हुई है। फैंस स्पेशली विजुअल्स और VFX को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन एक सेकेंड, ये समय तो हमें इजाज़त दे रहा है। वेल, लेते हैं आपसे विदा। बात हम करेंगे लेकिन कल हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो आप आइए और हमारे चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कल का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। क्योंकि कल हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो क्या होगा वो आपको कल ही पता चलेगा। लेकिन भाई, फिलहाल लेती हूँ आपसे विदा, वक्त हो चुका है हमारे जाने का। आशा करती हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा और आज के प्लेलिस्ट को भी आपने एंजॉय किया होगा। इस भयंकर गर्मी में अपना ध्यान रखना बिल्कुल ना भूलें और अपनों का ध्यान उससे भी ज़्यादा रखें।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभकारी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। आज की कड़ी बहुत खास है क्योंकि आज है 28 मई, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ाव रखते हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए। और आज के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं हम सभी के प्यारे यानी कि सेहत की जागरूकता का प्रचार प्रसार करने वाले हमारे सेहतिया सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में सेहतिया भैया।
1: धन्यवाद आरजे कांछा, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है
0: जी।
1: लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलत फहमियाँ और झिझक मौजूद है।
0: सच कहूँ भैया तो आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता है। लड़कियाँ चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिल पाती। आखिर ऐसा क्यों है भैया?
1: देखो आरजे कांछा, ये एक सामाजिक सोच का मामला है। सालों से मासिक धर्म एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि ये हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो लड़कियाँ सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
0: मतलब ये सिर्फ एक महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी।

0: बिल्कुल, माँ पिता भाई पति शिक्षक सभी की भूमिका होती है कि जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
1: तो भैया अगर हम सीधे तौर पर समझेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब, तो इसका क्या मतलब है?
0: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की साफ सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
1: लेकिन भैया गांवों में या कम साधनों में जहां पे इन संसाधनों की कमी है, ऐसे इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती हैं क्या?
0: यही सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाती हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिलते हैं। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय मिलकर सुविधाएं सुनिश्चित करें।
1: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्योंकि अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी सीधा सीधा पड़ेगा, है ना?
0: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा जैसे आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी, चक्कर, ज़्यादा दर्द या अनियमित पीरियड जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीज़ें अपने रोज़ाना में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें शामिल कर सकते हैं?
0: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता, आधी थाली में सब्जी हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन अनाज जैसे रोटी या चावल, और अगर संभव हो तो दूध या दही, हरे पत्तीदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे अहम बात है कि जंक फूड, ज़्यादा तला भुना और ज़्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए। पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
1: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता बल्कि सही और संतुलित खाना होता है, क्यों भैया?
0: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है वही सबसे अच्छा और सबसे अच्छा है, बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
1: सेहतिया भैया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से ना जुड़े। क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में?
0: हाँ आरजे कांछा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ
1: जी।
0: हमारी ही एक गांव की एक लड़की रीना की
1: जी
0: कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी, पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की है। जब उसे पहली बार पीरियड हुए तो वो घबरा गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया और कहा किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ही ये कि उसने कितनी बार बदलना है। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली और जलन होने लगी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि ये शायद नॉर्मल है। इसी के साथ एक और समस्या थी। रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड के समय उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, चक्कर आते थे और कई बार वो स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की पीरियड क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बातें करते हुए सुन रही थी। शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानी बताई। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने उसे समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है, उसे सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियां दी गई और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी गई। धीरे धीरे रीना अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू किया, समय पर पैड बदलना सीखा और अपने खाने में सुधार किया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसे कमजोरी नहीं होती है और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हमें इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
1: सच में सहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
0: बिल्कुल, और यही हमारा मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता न करे।
1: सहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है?
0: बहुत अच्छा सवाल है आरजे कांछा
1: जी।
0: अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों में भी पोषण की कमी एक गंभीर समस्या है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में, निर्माण कार्य में या दिहाड़ी मजदूरी में, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता है। कई बार वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं। इसका असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं, उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
0: बिल्कुल, और यही बातें हमें विश्व पोषण दिवस के संदेश से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं, बल्कि ये समझना है कि सही पोषण हर उम्र, लिंग और हर वर्ग के लिए जरूरी है। और आज हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, जिसका इस साल का संदेश है टूगेदर फॉर ए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। तो इसका मतलब यही है कि हम मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, और इसमें पोषण एक मजबूत कड़ी है जो दोनों विषयों को जोड़ती है।
1: सेहतिया भैया, आपने एनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था। ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
0: देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, खासकर किशोर लड़कियां और महिलाओं में इसकी दर काफी ज्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होती है। महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो ये कमी और बढ़ जाती है।
1: तो इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही समझा आपने, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीज़ों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल, और अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत हैं। फल जैसे केला, अमरूद, संतरा, ये भी बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए, एक ही चीज रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं।
1: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी ही मजबूत होगी, क्यों भैया?
0: बिल्कुल आरजे कांछा, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, हम जो खाना खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो बीमारी का कारण भी बन सकता है।
1: तो साथियों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है, कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती हैं। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
0: याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही स्वस्थ जीवन का आधार।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले लेंगे हम सब सेहत की शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
2: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
1: मैं आपकी दोस्त यानी कि आरजी आकांक्षा आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी आप सभी से कि अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो के साथ में, सेहत सही लाभ कई में, क्योंकि अगर सेहत है सही तो लाभ तो हो ही जाएंगे कई, एक नए विषय के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।

हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी, तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें।

0: किसी के,
1: क्या करना है जीते?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं,
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: डिलीशियस
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
5: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
6: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
5: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
6: अधिक व्यायाम ना करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
5: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
6: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
5: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
10: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: यानी कि सुन सहेली में। और सुन सहेली में भाई हाजिर हैं आपकी सहेलियाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सहेलियाँ मतलब, सहेलियाँ मतलब आज हमारे साथ हमारी सहेलियों में, हमारे पास आज एक नहीं, हमारे पास आज दो दो सहेलियाँ हैं, उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे और बहुत कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पहले पहले भाई आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने वाले शो में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपकी प्यारी क्यूट सी बहुत ही अच्छी सी आज समता ने आज मॉर्निंग शो किया था मैम ने, और मॉर्निंग में आप सभी ने बहुत सारी मस्ती की, ये भी मैं देख रही हूँ। तो मॉर्निंग की मस्ती तो हो गई, अब आती है बारी सुन सहेली की। बिल्कुल, तो आज मैम तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे साथ हमारी आज दो नई सहेलियाँ हैं। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारी दो दो नई सहेलियों का, और उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है पहली पहली बार आज सुन सहेली में आकर के। तो हेलो संध्या जी, कैसी हैं आप?
1: हेलो अंशिका जी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका सुन सहेली में।
1: थैंक यू।
0: और चलिए अब बारी आती है हमारी दूसरी सहेली की, जो कि हैं सुहानी जी। तो सुहानी जी कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ दीदी, आप बताइए।
0: हाँ मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, और आपके मुंह से इतने प्यार से मतलब दीदी सुनकर के तो मैं और भी अच्छी हो गई हूँ। बिल्कुल, और देखिए हमारी आज सहेलियाँ हमारे साथ हैं लिसनर्स, तो आज इनके साथ सुन सहेली में हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारी नई नई बातें करेंगे और धमाल करेंगे, और दोस्तों वाली जो एक होती है ना, क्या कहते हैं उसे, प्यारी प्यारी बातें, दोस्ती वाली बातें, वो आज हम करेंगे। बहुत कुछ पूछना है इनसे मुझे, और बहुत कुछ मतलब वैसे तो मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इन्हें कुछ बताना भी है और इनसे कुछ पूछना भी है। तो बहुत कुछ पूछना है और बहुत कुछ कहना है, बताना है, लेकिन उससे पहले आप सभी जानते हैं लिसनर्स कि आज हमारा बहुत ही प्यारा सा डे है। तो संध्या जी आप जानती हैं आज हमारा कौन सा दिन है?
1: कौन सा मैम?
0: आज हमारा दिन है थर्सडे, और हमारा थर्सडे होता है हमारी सीनियर सिटीजन्स को लेकर के, यानी कि आज हम बात करते हैं घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर, उनकी केयर कैसी होनी चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, फिजिकल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, घर में उनकी एक क्या पोजीशन है, ये सारी ही बातें हम करते हैं। तो ये सारी ही पॉइंट्स, ये सारी ही बातें आज हम बताएंगे लिसनर्स को, लेकिन उससे पहले आप सभी जानते हैं लिसनर्स, और मैं अपनी दोनों नई नई सहेलियों को भी बता देना चाहती हूँ कि संध्या जी और सुहानी जी, हमारा आज का जो स्टार्टिंग का सेगमेंट होता है वो एक बहुत ही प्यारी सी पोएम होती है। तो चलिए एक प्यारी सी पोएम है, इसको शुरू करते हैं, और मुझे संध्या और सुहानी बताएंगी कि उन्हें ये पोएम कैसी लगी। तो शुरू किया जाए?
1: अब तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत दिनों बाद पोएम सुनने को मिल रहा है,
0: तो ओके
1: मैं बहुत खुश हूँ।
0: तो चलिए शुरू करते हैं लिसनर्स। घर की जो बुनियाद होते हैं, घर की जो बुनियाद होते हैं वो अनमोल बुजुर्ग होते हैं, जिनके साए में सुख मिलता वो शीतल तरवर होते हैं, चेहरे की झुर्रियों में छुपा सदियों का इतिहास है, सदियों का इतिहास है, उनका घर, उनका होना घर के खुशहाल होने का एहसास है, बचपन की उंगली पकड़कर जिसने चलना सिखाया था, बचपन की उंगली पकड़कर जिसने चलना सिखाया था, खुद भूखे सोकर भी जिन्होंने हमको लाड लड़ाया था, आज कांपते हाथों को बस थोड़े से सम्मान की आस है, पैसों से बढ़कर उनके लिए बच्चों का बैठना पास है, वो डांट में छुपी मोहब्बत वो दुआओं का समंदर है, भगवान का रूप है वो जो बसते हमारे घर के अंदर है, तजुर्बे की उस पोटली से वो हर मुश्किल सुलझाते हैं, तजुर्बे की उस पोटली से वो हर मुश्किल सुलझाते हैं, जब साथ, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वो ही राह दिखाते हैं, वक्त रहते संभाल लो, वक्त रहते संभाल लो इनको, ये लौट कर फिर ना आएंगे, इनके जाने के बाद बस यादों के साए रह जाएंगे, करो सेवा दिल से उनकी यही सबसे बड़ा धर्म है, करो सेवा दिल से उनकी यही सबसे बड़ा धर्म है, बुजुर्गों की दुआएं मिलना यही खुशकिस्मती और यही कर्म है, बुजुर्गों की दुआएं मिलना यही खुशकिस्मती और यही कर्म है। तो लिसनर्स आपसे पूछूं, इससे पहले मैं अपनी दोनों सहेलियों से पूछ लेती हूं जो कि काफी शांत होकर के सुन रही थी। तो संध्या जी सबसे पहले आप बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी पोयम?
1: ये पोयम ना, ये सिर्फ एक पोयम नहीं है, ये हमारे लाइफ की पुरानी दादा परदादा दादा परदादा की लाइफ से बिल्कुल रिलेट करती है, एकदम सही चीजें। आपने तो इमोशनल कर दिया।
0: ओह हाँ,
1: सच में बहुत अच्छी है। और हाँ, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें अपने से बड़ों की।
0: बिल्कुल सही कहा आपने संध्या जी, कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इमोशनल तो कहीं ना कहीं जब बात आ जाती है दादी की, नानी की, दादाजी की, दादी जी की, तो हम सभी हो जाते हैं। तो अब
1: और आज आपने ये पोयम सुना के मुझे फिर से अपने नाना नानी दादा दादी की याद दिला
0: दी। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं लिसनर्स सुहानी के पास, जो कि काफी शांत बैठी हुई है। तो थोड़ा हम उनकी आवाज को सुनते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा।
2: बहुत अच्छा लगा, मुझे तो इतना अच्छा लगा कि सोचती काश मेरे भी दादा दादी होते तो कितना अच्छा होता।
0: ओके चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भले ही हमारे साथ ना हो, बट उनकी जो एक यादें होती हैं, जो प्यार होता है, जो पल हमने उनके साथ बिताए हुए होते हैं, वो हमेशा हमारी यादों में उतने ही ज़्यादा जिंदा रहते हैं। मतलब मैं ऐसा मानती हूँ।

0: चलिए कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि वो आशीर्वाद हमेशा रहता है, और फिर वो हो या ना, तो वो आप पर भी बना हुआ है, और वो हमेशा आपको, वो जहाँ भी हैं वहाँ से आपको देख रहे होंगे, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो चलिए लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे हम एक बहुत ही प्यारे से आज के हमारे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के साथ। लेकिन रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताऊंगी, और उससे बताने से पहले एक बात और पूछना चाहूंगी मैं, पहले संध्या जी से और फिर सुहानी से भी मैं पूछूंगी। तो संध्या जी, आप बताएं कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो इस उम्र में मतलब जब 50, 55, 60, 70 हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि अरे आप जवान हैं तो गुस्सा बहुत आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये जो गुस्सा होता है वो किस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्गों को हर्ट करता है, मतलब आपका क्या मानना है?
1: मेरा मानना ये है कि जो ये हमारा गुस्सा होता है, शायद उनको ये लगता है कि अभी हम मैच्योर नहीं, ढंग से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों से गुजर चुके हैं, उन्हें पता है कि इस एज में क्या होता है, कैसे है, बल्कि वो अपनी जगह पे सही होते हैं।
0: जी जी,
1: तो इससे सबसे पहली बात तो अपने पेरेंट्स या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके अकॉर्डिंग चलो तो ज्यादा सही होता है।
0: बिल्कुल
1: सही, मानो उनकी रिस्पेक्ट करो।
0: बिल्कुल
1: और
0: सही।
1: हाँ, मान लो कहीं कहीं उनकी बातें तुम्हें नहीं समझ आती है, तो उन्हें डायरेक्टली मना ना करो।
0: हाँ
1: बोल के, मतलब जरूरी नहीं है कि आर्गुमेंट करके ही उसे सोल्यूशन निकाला जाए, आप साइलेंटली भी चुप रहिए, ना करिए वो बात अलग है, लेकिन तो मतलब उनका रिस्पेक्ट करिए।
0: जी, तो लिसनर्स, आज मैंने गुस्से का पॉइंट अभी क्यों पूछा, ये आपको ये रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ सुनकर पता चल जाएगा, क्योंकि आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ हमें ये बताता है कि जो लोग गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, और जैसे ऐसा कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग अपने गुस्से को, अपनी नेगेटिव एनर्जी को, यानी कि नकारात्मक भावनाओं को और तनाव को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और वो सकारात्मक बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि जो यूथ्स होते हैं, मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा, स्ट्रेस, ये चिड़चिड़ापन, तनाव बहुत ज़्यादा हावी रहता है। इसलिए बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि हमारी लाइफ में मेंटल पीस जो है वो सबसे बड़ी पूंजी है। छोटी मोटी बातों से, छोटी छोटी, जैसे होता है ना कि हमारी लाइफ में छोटी सी भी अगर हम कभी कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमें असफलता मिल जाती है तो हम तुरंत परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि परेशान होने के बजाय हमेशा जीवन की जो खुशियाँ हैं उसमें जीना चाहिए। कभी ये मत देखो कि आपके पास क्या नहीं है, हमेशा ये देखिए कि आपके पास क्या है, और अपने गुस्से को तो मुझे लगता है कि मतलब एक प्यारी सी उसकी अच्छी सी पोटली बांधिए और उसे बांध करके कहीं फेंक दीजिए, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो 90% आपके रिश्तों को, या मैं ये कहूँ कि 99% आपके रिश्तों को ख़राब करने का काम आपका गुस्सा ही करता है। आपने देखा होगा कोई बहुत शांत रहता है, मैं सुहानी से कहना चाहूँगी कि सुहानी, आपने देखा होगा कोई बहुत शांत रहता है जब, तो हम उसके साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई बहुत गुस्सा करता है, बहुत चिल्लाता है, तो उसके आसपास मुझे लगता है कोई नहीं बैठना चाहता है, सबको यही लगता है कि नहीं यार उनके पास कौन जाएगा,
1: ऐसा होता है।
0: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अपने मेंटल पीस को बना कर रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों से खुद को इतना अफेक्ट मत कर लीजिए कि आपकी पूरी लाइफ ही आपको लगे कि अरे अब क्या करेंगे, अब तो कोई वही नहीं है। तो कहीं ना कहीं शांत रहने का ये जो एक लेसन है वो हम हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से सीख सकते हैं और शांत रह सकते हैं। शांत रहने का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब कोई आपसे लड़ने के, मतलब कोई आपको कुछ कह रहा है और आप बिल्कुल शांति से सुन रहे हैं, नहीं, ये मतलब नहीं है। शांति का मतलब बस इतना है कि थोड़ा सा अपने माइंड को कूल रखना है, क्योंकि गुस्सा जो होता है ना, कहते नहीं है कि गुस्सा इंसान की जो अक्ल होती है उसे खा जाता है, तो अपनी अक्ल को थोड़ा सा बचाना है और गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों संध्या जी, गुस्सा करना है कि नहीं करना है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं करना है।
0: बिल्कुल नहीं,
1: अगर वो करना भी है तो कुछ देर के लिए फिर खुद को शांत कर लेना चाहिए।
0: हाँ,
1: क्योंकि उससे नुकसान दूसरों का नहीं बल्कि खुद का होता है।
0: और सुहानी जी कह भी रही है कि भाई गुस्सा हो तो जाता है, हो जाता है फिर क्या करें? हो जाता है तो फिर हो जाने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हो जाने के बाद बस इतना करिए कि आपने गुस्से में किसी को अगर कुछ बोल दिया हो या आपका झगड़ा हो गया हो, तो थोड़ा सा शांत होने के बाद जाएं, उनसे प्यार से माफ़ी मांग लें, उन्हें समझा लें। अगर ऐसी कोई बात है, मतलब आपको लगता है कि वो इंसान गलत है, तो आप उसको प्यार से समझाइए, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा शांत होने के बाद। तो चलिए लिसनर्स, ये बातें तो होती रहेंगी और आज हम अपनी सहेलियों के साथ बहुत सारी बातें भी करते रहेंगे, क्योंकि आज हमारे पास सहेलियों के रूप में संध्या जी और सुहानी जी मौजूद हैं, तो उनके साथ बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन उससे पहले चलते हैं बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। आप करिए इंतजार, बस हम यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं

0: दिनों में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और कहीं ना कहीं जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, मतलब 60 से अबव 70 से अबव, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी वीक भी होती है, और इसी वजह से गर्मियाँ मतलब गर्मी जो होती है वो उन पर ज़्यादा तेज़ी से कहीं ना कहीं रिएक्ट करती है। तो हीट स्ट्रोक आज हम बात करने वाले हैं कि हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन का जो कि क्या प्रभाव पड़ता है हमारे घर के बड़े बुजुर्गों पर, और कैसे ये होता है ये भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बड़े बुजुर्गों के शरीर में जो पसीना बनाने वाली ग्रंथि होती है, यानी कि स्वीट ग्लैंड्स होती हैं, वो गर्मियों में कम सक्रिय हो जाती हैं, जिससे कि उनका जो शरीर होता है वो जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। मतलब कहीं ना कहीं ओवर हीट होने के कारण, ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से ये हीट स्ट्रोक हो जाता है। लेकिन इसके कुछ कारण भी होते हैं, और कहीं ना कहीं इन कारणों में होता है कि पुरानी बीमारियों का गंभीर रूप से कई बार बढ़ जाना, वो ज़्यादा जल्दी जब बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक की समस्या होती है। गर्मी के दिनों में दिल को, शरीर को ठंडा रखने के लिए हमारा जो हार्ट होता है उसे दुगनी तेज़ी से पंप करना पड़ता है, जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता है, और कहीं ना कहीं यही वजह होती है हीट एग्जॉशन की। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कई सारी पॉइंट्स हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि सांस लेने में तकलीफ, यानी कि अस्थमा। अगर आपको अस्थमा है तो भी हीट एग्जॉशन ज़्यादा होता है। तो अब आते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे कि कारण तो हमने जान लिया कि क्यों होता है, लेकिन अब आते हैं उपाय पर कि कैसे हम हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को इससे मतलब सेफ रख सकते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है सेफ रखने के लिए, वो आपको बताएंगी संध्या जी। तो संध्या जी बताइए।
1: ये जो मतलब बुजुर्गों को, क्या मेरा मानना सबको, कि उन्हें मतलब कैसे सेफ रखा जाए। हाँ। गर्मियों में तो ज्यादातर उनको
0: कहीं ना कहीं सभी को नीड होती है एक वो होने।
1: मतलब गर्मियों में ज्यादातर लोगों को छांव में रखना।
0: हाँ।
1: और छाछ, शरबत, नींबू पानी, और सबसे ज्यादा पानी तो सबसे ज्यादा पीनी चाहिए।
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है।
1: आप कुछ वो शब्द, खाना कम खाइए पर पानी सबसे ज्यादा पीजिए।
0: बिल्कुल,
1: ORS घोल लीजिए, छाछ पीजिए, नारियल पानी अगर हो सके, अगर है उतना मतलब व्यवस्था तो आप नारियल पानी पीजिए।
0: जी जी
1: हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि दोपहर 11 बजे से 4 बजे के बीच, अपने जैसे हम लोग एडल्ट हैं तो ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे किसी, लेकिन जो बाबा नाना हैं, दादा हैं, उन्हें जैसे वो उनकी एज हो गई है, तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग के जैसे भी वो हर चीज़ें मतलब एडजस्ट कर पाए तुरंत। तो मतलब ज़्यादा धूप में 11 से 4 बजे तक मोस्टली बहुत ज़्यादा धूप चल रही है, और अभी आपने बताया कि नौतपा चल रहा है, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने वाली
0: बात। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने वाली बात है, और कहीं ना कहीं हमें केयरफुल रहना भी चाहिए। अब चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि हमारा पॉइंट ये है संध्या जी और स्वानी जी दोनों लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात आती है ना कहीं ये हो जाता है कि डेली रूटीन है तो हमें बाहर जाना है, फिर आना है, फिर अपने काम को कहीं ना कहीं करना ही है, तो कुछ ऐसे प्रकॉशंस हो जाती हैं, कुछ ऐसे जिसे हम हमेशा कहते हैं ना, अरे घर के बड़े बुजुर्गों को कौन सा काम है, उन्हें कहाँ बाहर जाना है, कि उन्हें कहाँ वो करना है, उन्हें तो घर में ही रहना है। बट ऐसा तो नहीं होता है, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग घर के ऐसे भी होते हैं जो कि उनको दवाई लाने जाना है बाहर, डॉक्टर को दिखाने जाना है, कहीं ना कहीं दोपहर में निकलना है, किसी दोस्त के साथ कभी कभार आप चले गए तो आपको धूप में ही निकलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाता है कि कपड़े कैसे होने चाहिए। तो चलिए
1: मैं बताती हूँ।
0: हाँ हाँ, आप बताइएगा, ज़रूर बताइएगा संध्या जी। लेकिन फिलहाल सुहानी जो है हमारी, वो बहुत शांत बैठी हैं, और सुन, सहेली में सहेलियाँ जब आती हैं और शांत बैठी रहती हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो पहले उनके, चलिए उनकी कुछ बातों को सुन लेते हैं, और उसके बाद आपकी बातों को भी हम सुनेंगे, क्योंकि वही सहेलियाँ हैं हमारी, तो आप कुछ कहेंगी तो हम तो सुनेंगे ही। लेकिन उससे पहले सुहानी से बात करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो सुहानी आप बताएं कि कपड़े कैसे होने चाहिए।
1: गर्मियों में कपड़े एकदम से ढीले और सूती पहनने।
0: हाँ।
1: और मतलब कि जैसे कलर वाले कपड़ों से बचना चाहिए, जैसे ब्लैक, ब्लू, ये सब कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ज्यादातर हल्के रंग वाले कपड़े पहने जिससे कि गर्मी ज्यादा ना।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, और जैसे कि अभी आपने सुहानी को सुना और उन्होंने बताया लिसनर्स कि हमेशा कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ढीले और सूती, बिल्कुल कॉटन फैब्रिक। हम हमेशा आपको बताते हैं कि गर्मियों में सबसे अच्छा जो फैब्रिक होता है वो कॉटन होता है। आप अगर ये चाहते हैं कि हम कैसे कपड़े पहनें, तो उसमें कॉटन का फैब्रिक सबसे बढ़िया फैब्रिक।

0: होता है। और साथ ही साथ में अगर बात करें कि नहीं पहनने चाहिए तो पॉलिस्टर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ब्लैक, जैसा कि अभी सुहानी ने आपको बताया, कुछ और कलर्स होते हैं जैसे डार्क शेड के, जैसे कि बहुत डार्क रेड, ये नहीं पहनना चाहिए।
1: ये जो लाइट को या हीट को बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब करते
0: हैं। जैसे स्काई ब्लू पहन सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम है। व्हाइट पहन, मतलब व्हाइट तो गर्मियों के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि व्हाइट सबसे बढ़िया, मतलब हाँ बिल्कुल सही,
1: नाम ही पीसफुल से,
0: हाँ वो तो एक अलग ही लुक आता है व्हाइट में। और बाकी आप पिंक ले लीजिए, बेबी पिंक ले लीजिए, इस तरह के कई सारे क्लॉथ्स जो हल्के रंग के हो, लाइट ग्रीन ले लीजिए, तो आप वो सारे पहन सकते हैं। लेकिन थोड़े बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बहुत ज़्यादा वर्क वाले कपड़े भी अवॉइड करने चाहिए, जैसे जिनमें सितारों का, यानी बहुत हैवी वर्क हो।
1: और वो जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको तो अंगोछा, यानी वो जो कॉटन का तौलिया होता है, जी जी उन्हें बिल्कुल ले जाना चाहिए, क्योंकि सर पे ढकने के,
0: हाँ।
1: चलो हम बॉडी को तो कपड़े से ढक लेंगे, पर सर को भी तो ढकना चाहिए।
0: बिल्कुल, सर को ढकना बहुत जरूरी है।
1: गमछा साथ में लेना चाहिए,
0: ये तो
1: उसका यूज हम कहीं एक तो लपेट सकते हैं, अगर कहीं ऐसी जगह मिल गई पेड़ लगा तो हम नीचे डाल भी सकते हैं चीजों के लिए, तो कई चीजों में यूज।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बिहार में तो गमछा का ट्रेंड ही चल रहा है।
0: अरे बिल्कुल,
1: एक बार बिना दुपट्टे के मिल जाएंगी, लेकिन कहो कि लड़के या बड़े बुजुर्ग बिना गमछा के मिले तो शायद इम्पॉसिबल है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुहानी, कि हमारे यूपी का तो ये ट्रेंड है। और अभी आपने जब नाम लिया था गमछे का, तो मैं कहने ही वाली थी कि भाई यूपी वाले हों और गमछा ना हो तो फिर काहे के यूपी वाले, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। और मजाक से थोड़ा हट करके लिसनर्स, ये आपके प्रिकॉशन के लिए बहुत अच्छा भी होता है। जैसे हेलमेट हम लगाते हैं गर्मियों में तो पसीना बहुत हो जाता है, लेकिन अगर आप मतलब उसको अंगोछे को अपने सर पे डाल रहे हैं तो हाँ धूप कम लगती है। आप बच्चे को, छोटे बच्चों को लेकर के निकल रहे हैं, अगर आप साथ में रख रहे हैं गमछे वगैरह, तो आप उन पे डाल सकते हैं। और कॉटन का होता है तो मतलब बहुत रिलीफ रहता है, कहने का सेंस हमारा जो है वो ये है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कि भाई देखिए, शरीर को जितना कपड़ों से और बाहरी चीज़ों से सेफ रखना ज़रूरी है, सेफ रखते हैं हम कि हमें धूप ना लगे, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में भी लें जिससे कि आपका जो शरीर है वो ठंडा रहे कहीं ना कहीं।
1: मैं बताऊँ?
0: बिल्कुल बताइए, नेकी और पूछ पूछ बताइए।
1: आप खाने में जैसे खीरा हुआ,
0: हाँ
1: ये सब,
0: सुहानी को पता था कि मुझे खीरा पसंद है इसलिए खीरे का नाम लिया इन्होंने। जी आगे बढ़ें।
1: पानी अच्छे से रहता है,
0: हाँ।
1: तो शरीर के अंदर कुछ पानी मिलती रहती है, और पानी तो पीते ही रहना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पानी
1: ना हो तब भी पियो, थोड़ा थोड़ा पियो,
0: हाँ।
1: पानी जरूर पियो,
0: पानी जरूर पियो भाई। बहुत ही वो कहते हैं ना, बुलंद और अच्छी सी आवाज़ में सुहानी ने अपील की है कि पानी ज़रूर पीते रहिए। और मैं भी कहना चाहूँगी कि अभी अभी हमने भी पानी पिया था जस्ट ब्रेक में, तो थोड़े थोड़े देर पर पानी पीते रहिए, इससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा, अरे अच्छे अच्छे जा रहे थे चक्कर खा, मतलब बेहोश हो गए, क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो पानी पीते रहे, और खीरा बताया, तरबूज बताया अभी सुहानी ने, वो सारी चीज़ें अपनी डाइट में लेते रहिए।
1: हरी सब्जी तो,
0: हाँ बिल्कुल, हरी सब्जी इम्पोर्टेंट। वैसे आपको हरी सब्जी में क्या पसंद है संध्या जी?
1: मुझे तो जहाँ तक सब कुछ पसंद है, मैं ऐसी लड़की हूँ मुझे सब कुछ पसंद है।
0: ओके, ये तो मुझे पहली बार कोई मिला जिसे सब कुछ पसंद है।
1: सच में मुझे सब्जी, हरी सब्जी,
0: ओके,
1: सब कुछ पसंद है।
0: ओके, तो चलिए भाई सुहानी जी से पूछते हैं कि उन्हें क्या पसंद है।
1: मुझे कद्दू लौकी छोड़ के बाकी सब पसंद है।
0: ओके, यानी कद्दू लौकी छोड़कर बाकी सब पसंद है, चलिए अच्छी बात है। वैसे गर्मियों में लौकी खानी चाहिए क्योंकि लौकी की तासीर ठंडी होती है, लेकिन चलिए आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप और भी कुछ चीज़ें जैसे आपने खीरा बताया, तरबूज बताया, तो वो सारी चीज़ें आप खाएं। मतलब कहने का सेंस सिर्फ इतना है लिसनर्स कि अपने आप को ठंडा रखिए, आई मीन अपने शरीर को ठंडा रखिए।
1: पसंद होना जरूरी नहीं है, अगर वो सेहत के लिए अच्छा है तो उसे खाना चाहिए। मैं भी खा लेती हूं, अब मान गए भैया, बहुत अच्छी लड़की है ये।
0: हाँ ये तो
1: सेहत के लिए कुछ ज्यादा सेंसिटिव लग रही
0: है। नहीं नहीं, देखिए संध्या जी, सेंसिटिव होना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर शरीर स्वस्थ है तो ही मन स्वस्थ है। आप कितना भी अच्छा मतलब अच्छे से रहें, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं मन भी स्वस्थ नहीं रहता है, यही लगता है कि अरे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल सही कहा सुहानी ने कि कुछ चीज़ें आपको ना भी पसंद हो, अगर आपके हेल्थ के लिए वो बेनिफिट रखती हैं तो आपको खाना चाहिए। जैसे कि करेला, करेला बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, लेकिन फिर भी डायबिटिक पेशेंट उसे खाते हैं। तो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। इसी प्यारे से मैसेज के साथ लिसनर्स, चलने से पहले हम चलते हैं चैट बॉक्स में। तो चैट बॉक्स में चलते हैं, और चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ कि मैसेज आया है। ओके, तो सबसे पहले मैसेज आया है नव्या जी का। जो कि हमें गोंडा से सुनती है, उन्होंने बहुत सारे डांस करते हुए इमोजीज भेजी हैं। तो नव्या जी लगता है घर पे डांस कर रही हैं, तो सॉन्ग्स बहुत पसंद आए हैं इन शॉर्ट। ओके, कमल नयन जी आ गए हैं, हेलो कमल नयन जी। और नव्या जी लिख रही है, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? और भाई नव्या जी ने हमारे लिए 3 कप चाय भी भेजी है, तो 3 कप चाय मतलब एक मेरे लिए, एक सुहानी जी के लिए और एक संध्या जी के लिए। तो थैंक यू नव्या जी, लेकिन गर्मी में चाय, चलिए कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं।
1: पर मैम नव्या जी को अगेन थैंक यू, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है।
0: ओके, तो भाई हमारी जो कि न्यू सहेलियां हैं उन्हें चाय बहुत पसंद है, तो थैंक यू नव्या जी। आशुष मिश्रा जी आ चुकी हैं, लिख रही हैं गुड आफ्टरनून दोनों आरजेस को, गुड आफ्टरनून आपको भी। और कैफ मोबाइल गोंडा से लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको भी। मुस्तफ़ा जी लिख रहे हैं, संध्या मैम की आवाज़ स्लो आ रही है। ओके, तो स्लो आ रही है तो अभी हम तेज़ करवा देते हैं, आप परेशान ना हो मुस्तफ़ा जी। और नीना जी लिख रही हैं, हाय, हेलो नीना जी। और प्रीति जी आ गई हैं, जो कि हमें बहराइच से सुनती हैं, हेलो प्रीति जी, कैसी हैं आप? और लिख रही हैं गुड आफ्टरनून दोनों मैम को, गुड आफ्टरनून आपको भी। और साथ में गुलाब भेजे हैं, बहुत सारी इमोजी भेजी है। ओके, और तरबूज
1: बता दीजिए, हम 3 हैं, तो सब लोग मुझे भूल जाए।
0: नहीं नहीं सुहानी, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको कोई नहीं भूल रहा है, ये जस्ट ऐसा है ना कि रोज मैं और मैम रहते हैं, तो 2 लोगों की उनको थोड़ी हैबिट हो गई है। तो आज भाई हम 2 नहीं है, आज हम 3 सहेलियां हैं हमारे, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, मेरे साथ है संध्या जी और सुहानी जी। तो अब से आप 3 लिखें, ओके, खुश सुहानी? चलिए अच्छी बात है, खुश रहना भी चाहिए। और मैं ये बता रही थी कि प्रीति जी ने हमारे तरबूज भी भेजा है और आइसक्रीम भी भेजा है।
1: अरे वाह, थैंक यू
0: तरबूज और आइसक्रीम के लिए। और संध्या जी आइसक्रीम का नाम सुनकर कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। तो चलिए,
1: अरे हमारे लिसनर कम से कम इतना ख्याल रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग।
0: बिल्कुल बहुत बड़ी बात है भाई, हमारे लिसनर्स हमारा ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? हमारे लिसनर्स हमारा ख्याल बहुत ज्यादा रखते हैं सुहानी जी, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि भाई हमारे आरजेस जो है वो इस गर्मी में अब उन्हें आइसक्रीम कहाँ मिले। तो थैंक यू प्रीति जी, आपने हमारे लिए इतना सारा सोचा और इतने प्यारे प्यारे इमोजीज भेजे। तो चलिए लिसनर्स, एक प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, और बस इस सॉन्ग के उस पार यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: सहेली और सुन सहेली में आज जो है वो एक नहीं, आपके साथ है तीन तीन सहेलियां, और चल रही थी हमारी मस्ती ब्रेक से पहले, और ब्रेक के बाद फिर से आ गए हैं मस्ती का पिटारा लेकर। मस्ती के पिटारे के साथ आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे फूल। अब आप सोच रहे होंगे कि प्यारे प्यारे फूल क्यों, तो प्यारे प्यारे फूल इसलिए क्योंकि आज है हमारा बहुत ही प्यारा सा दिन, यानी कि थर्सडे, और थर्सडे को जहाँ हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की, वहीं पर हम बात करते हैं कुछ गार्डनिंग की, कुछ आपको टिप्स देते हैं, कुछ आपके साथ बातें शेयर करते हैं। तो आज भी हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में आपको बताएंगे जो गर्मियों में बहुत आसानी से आप उनको अपने घर पे लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुमार टेलर्स जी आ चुके हैं चैट बॉक्स में, चलते हैं लिसनर्स जो कि गौरा चौकी से हमें सुनते हैं और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून दोनों आरजे मैम को, गुड आफ्टरनून आपको भी, और लिख रहे हैं कमल नयन जी शुभ दोपहरिया मैम, शुभ दोपहरिया कमल नयन जी, और अनुष्का जी लिख रही हैं कि गुड आफ्टरनून दोनों आरजेज मैम को, गुड आफ्टरनून आपको भी, और कैसे हैं आप सभी। तो चलिए लिसनर्स अब चलते हैं और जानते हैं फटाफट से कि गर्मियों में ऐसे कौन से पौधे होते हैं कि जो बहुत ही आसानी से आप उनको लगा सकते हैं और उनकी हमें ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। तो भाई हम सबसे पहले पूछते हैं कि जो हमारी संध्या जी है ना, वो हमें किसी फूल की याद दिलाती हैं। अब आप सोचोगे कौन से फ्लावर की याद दिलाती हैं, तो हमें ये याद दिलाती हैं बहुत ही प्यारा सा होता है जो कि होती है जैस्मिन। तो जैस्मिन जैसी प्यारी प्यारी महक आज हमारे स्टूडियो में भी महक रही है क्योंकि हमारी दोनों सहेलियां प्यारी प्यारी हमारे साथ हैं। तो एक है हमारी संध्या जी जो कि जैस्मिन जैसी खुशबू, और एक है सुहानी जी जो कि बिल्कुल कौन से फ्लावर का नाम दिया जाए, तो चलिए मैं दे देती हूँ, बहुत ही अच्छा सा फ्लावर होता है, मुझे बहुत पसंद है, जो कि होता है गुलाब। तो गुलाब जैसी है, तो भाई मेरा स्टूडियो तो महक रहा है, हमारा स्टूडियो तो महक रहा है, और हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं और जानते हैं कि इन प्यारे प्यारे फूलों के पास कौन से प्यारे प्यारे पौधे हैं जो कि आप अपने घर में लगा सकते हैं, और थोड़ी बहुत मैं भी लगाऊंगी। तो चलिए संध्या जी, सबसे पहले आपसे सवाल है कि वो कौन से ऐसे कोई एक पौधे है जो कि गर्मी में आसानी से आप उनको लगा सकते हैं।
4: ये गुड़हल तो सब लोग जानते होंगे।
3: हाँ,
4: गुड़हल मीन्स हिबिकस, जी इंग्लिश में हिबिकस बोलते हैं, और गुड़हल, और गुड़हल तो मेरे यहाँ भी लगा है, बहुत अच्छा खासा खिलता भी।
3: जी जी,
4: गर्मियों में इस पौधे को लगाने पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। इसमें लाल पीले गुलाबी रंग के बड़े बड़े फूल आते हैं।
3: जी,
4: तो मेरा मानना है कि गुड़हल का फूल ज़रूर लगाइए।
3: गुड़हल का फूल लगाना चाहिए भाई, गुड़हल का फूल तो बहुत ही अच्छा होता है, और गुड़हल की फूल की चाय भी पी जाती है। तो लिसनर्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नव्या जी हमारी हैं और वो पूछ रही हैं कौन कौन मैम, जरा नाम बता दीजिए प्लीज़। तो बिल्कुल इसमें तो कोई वो नहीं नव्या जी, हम आपको नाम बता देते हैं। तो एक है हमारी संध्या जी और दूसरी है हमारी सुहानी जी। तो आई होप कि आपको नाम पता चल गया है, और मेरा नाम तो आप जानती ही हैं।
5: हेलो नव्या जी, कैसे हैं आप? मैं हूँ संध्या।
6: मैं सुहानी, दोनों बहनें ही हैं।
3: ओहो भाई, दोनों बहनें हैं, तो बहनों वाला झगड़ा भी होता है?
5: बिल्कुल, लेकिन यहाँ
6: नहीं करेंगे ना।
3: अच्छा सर, सबके सामने नहीं। हाँ नहीं नहीं, वो तो होता है, तो मतलब कभी वो वाला हुआ है अच्छा वाला?
5: बिल्कुल, पता है ये झगड़ा होना कोई आम बात नहीं, नेचुरली होता है।
3: हाँ,
5: लेकिन ये है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह भी, झगड़ा तो कर लेते हैं लेकिन बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार।
3: बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैंने तो
5: मैं तो कोशिश करती हूँ ये मुझसे कब बोले।
3: हाँ हाँ, मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि भाई भाई बहन हो या बहन बहन हो, उनमें अगर झगड़ा ना होना तो वही झगड़े वाला जो प्यार होता है ना, वो तो मतलब क्या ही कहने।
4: पर मैंने नोटिस किया है कि मुझे छोड़ के अगर मेरी बहन को कोई बाहर वाला कुछ बोल देता है ना, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होता है, सच में बहुत होता है।
3: वो हर्ट होता भी है क्योंकि देखिए हमारे घर के मेंबर्स हैं, मतलब भाई बहन है या कोई भी है, तो हमारा उन पे हक है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उन्हें। लेकिन अगर उसी जगह कोई और कहता है तो वहाँ पे हर्ट होना लाजमी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए अगर सामने वाला कोई गलती भी आप किसी को बताना चाहते हैं कि ये आपकी गलती है, तो वो बताने का तरीका अलग होता है। कभी किसी को कोई ऐसी बात उस वे में मत कहिए कि उसे हर्ट हो जाए। तो चलिए लिसनर्स अब आगे बढ़ते हैं, और सुरेंद्र यादव जी हैं, लिख रहे हैं नौतपा की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, तो नौतपा की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं सुरेंद्र जी। बिल्कुल शुभकामनाओं की जरूरत भी है क्योंकि इतनी गर्मियों में चलने के लिए और फिट रहने के लिए हमें जरूरत है शुभकामनाओं की। तो थैंक यू सुरेंद्र जी। और नव्या जी ने बहुत सारी इमोजी भेजी है, और उन्होंने हंसते वाली इमोजी भेजी है, फ्लावर्स भेजे हैं, जैस्मिन भी भेजा है, क्या क्या भेजा है आपने। तो चलिए अभी संध्या जी ने आपको बता दिया। संध्या सुहानी जी शुभ दोपहरिया दोनों को। तो भाई कमल नयन जी आप दोनों को शुभ दोपहरिया कह रहे हैं।
4: थैंक यू दोनों को, मतलब दोनों की तरफ से थैंक यू।
3: हाँ ये बहन वाला प्यार होता है कि मतलब हमने उनकी तरफ से भी बोल दिया, चलिए अच्छी बात है। तो कमल नयन जी दोनों ने आपको थैंक यू बोला है और शुभ दोपहरिया आपको भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी संध्या जी ने आपको बताया गुड़हेल के बारे में, अब जानते हैं सुहानी जी से कि सुहानी जी आप बताएं कि कोई ऐसा एक फ्लावर जो कि हम गर्मियों में लगा सकते हैं।
6: इसमें सदाबहार भी आता है। इसको लगाने के बाद ज्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है
3: जी,
6: और तेज धूप में इसमें तो बैंगनी, गुलाबी और सफेद रंग के जो फूल खिलते हैं कितने अच्छे लगते हैं।
3: बिल्कुल बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अगर आप इनके बीज डालते हैं, मतलब जैसे कि अभी सुहानी ने आपको बताया कि सदाबहार, तो सदाबहार के आप बीजों से बहुत आसानी से ये उग जाते हैं। तो अगर आप बीज डालेंगे तो ये अच्छे से उगेंगे। और भाई सदाबहार मतलब कहते हैं ना कि सदाबहार का मतलब ये होता है कि वो हर मौसम में और हर सीजन में आपको फूल खिले खिले हुए ही मिलेंगे, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। तो चलिए अब आते हैं तीसरे पे, और तीसरा है हमारा मोगरा। मोगरा यानी कि चमेली, चमेली यानी कि जैस्मिन, जो कि गर्मियों में इसकी जो भीनी भीनी खुशबू होती है ना, वो आपके घर को बहुत ही अच्छे से महकाती है। ओके, और कमल नयन जी लिख रहे हैं नाम बड़ा प्यारा है दोनों का, थैंक यू सो मच कमल नयन जी। तो लिसनर्स अब नाम देखिए, भाई नाम तो प्यारा होना ही है, आप इतनी प्यारी प्यारी हैं, इतनी स्वीट स्वीट है नेचर से, तो नाम तो प्यारा होना बनता ही है। और सुरेंद्र जी भी लिख रहे हैं मोस्ट वेलकम संध्या जी एंड सुहानी जी, तो थैंक यू सुरेंद्र जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं अभी आपको बता दी थी कि मोगरा यानी कि चमेली जो होती है वो इसलिए आसानी से गर्मियों में उग जाती है क्योंकि इसे धूप जो होती है जब इसमें धूप लगती है तो ये बहुत ही आसानी से उग जाते हैं अच्छे से, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल भी होते हैं, और आप इसे अगर कंटिन्यूअसली पानी देते हैं तो ये बहुत अच्छे से बड़ा भी हो जाता है। अब आते हैं हम कि ये तो बात हो गई कि ये जो भी हमने पौधे बताए ये आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, मतलब कम जगहों में ये पौधे आप नहीं लगा सकते। अब आते हैं कुछ ऐसे पौधों पे जो कि इंडोर हो, यानी कि जिन्हें हम आसानी से घर में, और हमारे पास छोटे छोटे अगर पॉट्स हैं, गमले हैं, तो हम उनमें भी लगा सकें। तो सुहानी बहुत चुपचाप बैठी हैं। ये ऐसा होता है ना कि जैसे अब वो सोच रही हैं कि दीदी बोल रही हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ी शांत हो जाती हूँ, शांत होकर सुन लेती हूँ। तो शांत हैं, तो चलिए शांति को हम थोड़ा सा आवाज़ प्यारी से सुनते हैं। जी क्या कहा आपने,
6: भंग करते हैं?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, शांति भंग नहीं करते। देखिए शांति भंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि शांति जो होती है वो बहुत प्यारी सी होती है। यहाँ हम शांति भंग नहीं करेंगे, यहाँ हम आपकी खामोशी को थोड़ा सा तोड़ेंगे और आपकी प्यारी प्यारी आवाज़ को सुनेंगे।
6: नहीं मैं खामोश नहीं हूँ, मैं तो सोच रही हूँ मुझे जो बोलना मेरी दीदी बोल दे तो मैं आराम कर लूँ।
3: अच्छा जी, ये
4: मतलब
3: बात है।
4: ये बात तो गलत है, घर पे भी वही बात।
3: मैं समझ गई हूँ
4: पता है, ये सबसे ज्यादा काम मुझसे करवाती है।
3: जी जी जी, मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ संध्या जी। इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं छोटे होने के फायदे।
4: लेकिन मैम आपको एक बात मैं अवेयर कर दूं कि जब इसकी सैलरी आएगी तो इससे बोल दीजिएगा कि ये सैलरी मुझे दे दे, क्योंकि सारे काम तो मुझसे करवाती हूँ।
3: नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही है भाई कि अगर काम किए हैं तो फिर उसका जो है रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए।
4: बिल्कुल।
3: तो खैर ये तो दो बहनों के बीच की बात है। और बिल्कुल सही कहा सुहानी ने कि भाई जब बड़े बोल रहे हैं तो छोटों को थोड़ा सा आराम तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अब आराम बहुत हो गया, अब काम कर लेते हैं। और चलिए बताइए सुहानी, आपसे हम जानना चाहेंगे कोई ऐसा एक इंडोर प्लांट जो कि हम हमारे घर में कम जगह में भी लगा सकते हैं।
6: एलोवेरा लगा सकते हैं।
3: एलोवेरा? अरे बिल्कुल, एलोवेरा तो बहुत ही मतलब बेहतरीन पौधा होता है।
6: हाँ, तो उसको अंदर करके अंदर लगा सकते हैं, इसमें ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं।
3: जी जी जी,
6: तो एलोवेरा मेरे हिसाब से सही है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने एलोवेरा। और मैं आपको बता दूं लिसनर्स कि मेल हो या फीमेल हो दोनों को ही गर्मियों में सनबर्न बहुत होता है आपके फेस पर या गर्दन पे या हाथों पे। कई बार आपने देखा होगा कि लाल लाल कुछ हिस्सों में लाल लाल चकत्ते जैसे हो जाते हैं गर्मियों में। कहीं ना कहीं वो सूरज की गर्मी की वजह से होती हैं। जब हमारी जो सूरज की पराबैंगनी किरणें होती हैं वो जब हमारी बॉडी उनको एक लेवल के अप जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो ऐसा होता है।
4: यस मैम, ये जो एलोवेरा है ये ऐसे ही नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड मेडिसिन।
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
6: अगर पेट में कोई दिक्कत है तो एलोवेरा हाँ, खाना भी चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जरूर कहना चाहूंगी कि एलोवेरा खाना तो चाहिए बट एक बार आप डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिए एलोवेरा खाने से पहले, क्योंकि वाकई बहुत अच्छा होता है, मतलब गॉड गिफ्टेड होता है जैसे संध्या ने कहा। बट एक बार जरूर है कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है और हर मेडिसिन पर अलग तरह रिएक्ट करती है, इसलिए एक बार डॉक्टर से जरूर पूछ लें। देखिए घरेलू हम आपको जितनी भी चीजें बताते हैं, रेमेडीज बताते हैं, वो सेफ भी होती हैं, लेकिन फिर भी अपनी स्किन के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से एहतियात थोड़ा सा जरूर रखना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है वो है संध्या जी की तरफ कि अभी अभी सुहानी ने बहुत प्यारा सा पौधा बताया जो कि एलोवेरा। अब आप एक बताएं कि कौन सा वो इंडोर प्लांट है जो कि हम लगा सकते हैं।
4: मनी प्लांट का नाम तो सुने होंगे आप लोग।
3: अरे बिल्कुल सुना है मनी प्लांट का नाम।
4: तो बिल्कुल मनी प्लांट की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आप चलो गांव में है तो गांव में तो सबके पास जगह तो मोस्टली ज्यादा ही होती है, पर अगर शहर में भी कोई रह रहा है
3: जी जी,
4: तो अगर उसके पास बालकनी नहीं है फिर भी उसे आप एक बोतल में भी अगर उगाना चाहे तो हाँ। वो बोतल या गमले में आसानी से उग सकते हैं।
3: जी बिल्कुल,
4: और इसे सीधी तेजी धूप ना लगे तो वह बेटर है, क्योंकि इसका जरूरी नहीं है कि बिल्कुल धूप
3: हाँ बिल्कुल धूप में ही रखा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, मनी प्लांट को सीधी धूप की जरूरत ज्यादा नहीं होती है।
4: बिल्कुल,
3: लेकिन एक बात बताना चाहूंगी जैसे सुहानी ने अभी कहा कि आप प्लास्टिक बॉटल में भी लगा सकते हैं, लेकिन पौधों को जहां तक हो सके मनी प्लांट हो या कोई भी पौधा हो उसे कोशिश करिए कि आप गमले में ही लगाएं, मतलब छोटा सा ही पॉट हो लेकिन वो मिट्टी का, क्योंकि प्लास्टिक के बॉटल में जो भी मतलब प्लांट्स होते हैं वो जल्दी सड़ जाते हैं क्योंकि उसमें उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक गलता नहीं है, आपने देखा होगा, तो वो मेल्ट नहीं होता है कभी, तो इसलिए जब भी लगाइए पैरों से कोई अच्छे से पॉट में लगाइए और उसका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखिए।
4: सबसे सुपर है कि मिट्टी के गमले में लगाएं।
3: बिल्कुल सुपर से भी ऊपर वाला है कि मिट्टी के गमले में लगाइए और बहुत ज्यादा जो है पौधों का ख्याल रखिए।
4: हम मनी प्लांट से डेकोरेशन भी हो जाता है घर का।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने,
4: तो हम लोग का क्या दो फायदा है तो
3: और एक तीर से दो शिकार।
4: बिल्कुल,
6: मनी प्लांट मतलब मनी नाम ही आता भी है।
3: अब ये तो बहुत बड़ा राज है भाई कि मनी आती है कि नहीं,
4: ये अभी तक मिस्ट्री बनी है,
3: ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। मतलब मनी प्लांट तो कहा जाता है बट अब मनी आती है या नहीं ये तो भाई अभी हमें नहीं मालूम है,
4: वो तो लगा के देख लो,
3: वो आप लगा के चेक कर सकते हैं। आज आप लगाइएगा सुहानी घर पे और चेक करिएगा कि मनी आती है या नहीं। और कमल नयन जी लिख रहे हैं सदाबहार की पत्तियों से 99% बीमारियां दूर होती है लेकिन सुबह खाली पेट खाने से। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी एक टिप बता दी आपने। और नव्या लिख रही है यस मैम, लेकिन यस मैम किस बात के लिए लिखा है वो तो आप जरूर बताएं नव्या जी। और आप सभी के फीडबैक का हम इंतजार करेंगे लिसनर्स, क्योंकि आज हम तीनों यानी कि आपके तीन तीन सहेलियां आपके साथ हैं। तो हमारे साथ अभी तक आपको कैसा लग रहा है फटाफट से बताइए, और आपके इस फटाफट से फीडबैक का इंतजार रहेगा। बस हम यूं गए और यूं आए, तो चलिए चलते हैं बहुत ही प्यारे से और शॉर्ट वाले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, क्योंकि बस कुछ देर में वापस आएंगे आज के बहुत ही प्यारे से टिप ऑफ द डे के साथ। तो सुनिए और एंजॉय करिए इस प्यारे से सॉन्ग को। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला शो सुन सहेली। और सुन सहेली में अब बारी आती है टिप ऑफ द डे की। टिप ऑफ द डे आज का हमारा क्या होने वाला है ये हम आपको बताते हैं और हमारी सहेलियों को भी बताते हैं। तो आज का हमारा टिप ऑफ द डे ये है कि किस तरीके से भाई गुलाब जल जो है वो इन गर्मियों में हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम आपको बताएंगे टिप ऑफ द डे में कि घर पे आप गुलाब जल कैसे बना सकते हैं। तो एक्साइटेड?
1: यस मैम।
0: ओके, एक ही आवाज क्यों आई? संध्या जी क्या बात है, आपको गुलाब जल पसंद नहीं?
2: नो मैम, बिल्कुल पसंद है। आप बताइए तो।
0: तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुलाब आपको पूरे 2 गुलाब ले लेने हैं और उनकी पंखुड़ियों को अच्छे से आपको तोड़ करके अलग कर लेना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको पानी ले लेना है, गुलाब की पत्तियां ले लेनी है और पानी लेना है। गुलाब की पंखुड़ियों को अच्छी तरीके से पानी से धो लीजिए, उनमें मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक गहरा कंटेनर लेना है, जैसे कि घर में बड़े कंटेनर में आप भगोना भी ले सकते हैं, घर में होता है बड़ा कंटेनर। अब आपको क्या करना है कि आपको उसमें गुलाब की पंखुड़ियों को डाल देना है और गुलाब की पंखुड़ियाँ डालने के बाद पानी डाल देना है। पानी डाल दीजिए और धीमी आंच पर उसे आप उबलने दीजिए। करीबन 15 से 20 मिनट आप इसको अच्छे से उबलने दीजिए। जब वो पूरा उबल जाएगा तो आप देखेंगे कि ढक्कन के ऊपर से भाप उठने लगी। जब भाप उठने लगी है तो इसका मतलब है कि आपका वो अच्छे से हो गया है, उबल गया है। अब आपको क्या करना है कि आपको हटाना है। तो आप ये देखेंगे हटाते वक्त कि वो पूरा पानी जो है वो हल्का सा पिंक हो गया होगा, हल्का सा रेड हो गया होगा। गुलाब का जो एक कलर है पूरा उस पानी में उतर चुका होगा। अब आपको क्या करना है कि आपको इसे बंद कर देना है गैस को और इसको ठंडा कर लेना है। अच्छे से ठंडा कर लेने के बाद आप एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए और स्प्रे बॉटल में इसको भर लीजिए और भर करके फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आप यहाँ से घर जाएं या आपको जब भी लगे कि आपकी फेस पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप ये घर का बनाया हुआ रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि गर्मियों में कहीं ना कहीं रोज़ वाटर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि हमारी सखियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है।
2: बिल्कुल, मेरा मानना है कि गुलाब जल सबसे बेस्ट है।
0: हाँ,
2: क्योंकि इससे स्किन तो कोई डैमेज हो ही नहीं सकती।
0: बिल्कुल, रोज वाटर और साथ ही साथ में रोज वाटर आप जरूर यूज करें। और सुहानी जी आप भी बता दीजिए कि रोज वाटर मतलब आप यूज करती हैं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: ओके,
1: तो रोज मिट्टी में रोज वाटर?
0: हाँ जी जी बिल्कुल, फेस के लिए बहुत अच्छा होता है
1: मेरे ख्याल से, उसको पीना भी चाहिए।
0: हाँ पी भी सकते हैं आप।
2: और हाँ, जरूरत पड़े तो कभी कभी आंखों में भी डाल लीजिए।
0: हाँ आंखों में डाल लीजिए, अगर आंखों में जलन होती है आपको बहुत ज्यादा तो रोज वाटर डाल लीजिए आप। और घर
1: मैं जी, बताऊं, जी, मेरे जी पापा तो चाय में गुलाब पत्ती डालते
2: हैं। हाँ, हाँ, सच में। अभी मैं जी, आप लोग को एक बात बता दूं, मेरे पापा जब हम लोग से काली चाय बनवाते हैं तो उसमें गुलाब की पत्ती और क्या रहता है, अरे कुछ और डाल, जरकुल डलवाते हैं, चाय पत्ती, चीनी जी, तो बहुत लाइट कम डालो, अदरक और एक पता नहीं कौन सा वो लेके आते हैं,
1: जो सांदा
2: कुछ बोलते हैं, लकड़ी टाइप का रहता है, उसको डाल के खूब अच्छे से पक जाए फिर उन्हें छान के दो वो पीते हैं। भाई क्या ही पीते हैं मेरे पापा, हम खुद
0: गुलाब वाली चाय मतलब मैंने भी पी है, यहाँ नहीं पी है बट बाहर पी है मैंने और बहुत अच्छी लगती है गुलाब वाली चाय। लेकिन ये होता है उसमें कि गुलाब मतलब एक सीमित मात्रा में पड़ा हो तो बहुत अच्छी लगती है गुलाब वाली चाय। और आशु जी हमारी लिख रही हैं कि हाँ हमने भर करके रखा है,
2: गुड गर्ल आशु जी।
0: हाँ जी बिल्कुल, हमारी आशु जी बहुत अच्छी हैं। और कमल नयन जी लिख रहे हैं कि शो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन इन दोनों को रोज बुलाया कीजिए, अगर नहीं आएंगी। अच्छा जी तो ठीक है भाई, आप देखिए कमल नयन जी, अब हमने तो कुछ किया नहीं भाई, ऑन एयर था ना, हमारी दोनों सखियों ने सुन लिया है तो अब वो रोज आया करेंगी, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कमल नयन जी, हमने सुन लिया। अच्छा आशु जी लिख रही है हमने तो गुड़हल और गुलाब पीस कर रखा हुआ है। बिल्कुल, गुड़हल और गुलाब दोनों ही सुखा करके अगर पीस लिया जाए तो वो रेमेडीज में बहुत ही अच्छे से काम आता है, फेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ में आंखों के लिए जैसा कि अभी बताया गया। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि रोज वाटर एक है, उसके काम जो है
2: अनेक है,
0: बहुत सारे अनेक हैं। और अनेक काम के साथ हमारा जाने का टाइम हो गया है, यानी कि 257 हो गया है। तो आज के लिए लिसनर्स, मैं यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका आपसे चाहूंगी इजाजत। कल मिलेंगे हमारे ब्यूटीफुल से फ्राइडे में और ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातों के साथ। तब तक पानी पीते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। और जाते जाते हमारे ये दोनों प्यारी प्यारी सखियों से भी हम जान लेते हैं, संध्या जी और सुहानी जी से, कि वो क्या कहना चाहती हैं जाते जाते।
2: सच कहूँ तो आज मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है।
0: ओके।
2: आप लोगों से बातें करके लिसनर भी बहुत अच्छे हैं।
1: जी मेरी में कुछ वो आ रहा है, पढ़िए, मेरा सुनने का मन कर रहा है।
0: क्या सुनने का मन है आपका?
1: देखिए कमेंट बॉक्स में काफी सारे मैसेज आए हैं।
0: जी जी लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास समय,
2: हमारे लिसनर बहुत सपोर्टिव।
0: जी जी बिल्कुल,
2: उनको थैंक यू सो मच।
0: जी जी जी, तो लिसनर्स आप सभी ने सुना और बस इसी बातों के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे क्योंकि फिलहाल हमारा टाइम हो गया है। सो बाय
1: बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं।
6: रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख।
7: गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल।
8: एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12।
9: स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
11: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: श्रोताओं, इस धूप से बहरी दोपहरिया को बनाते हैं थोड़ा सा हरी, क्योंकि वक्त हो चला है आपके अपने शो यानी कि फोन इन फरमाइश कार्यक्रम कॉलेज इन गोंडा का, जो लेके आ गई है आपके होस्ट एंड दोस्त आकांक्षा भाई। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो कैनसली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। और आज की धड़कन को धड़काएंगे, लेकिन आज हमने जो प्लेलिस्ट देखी है, पाई है, प्राप्त की है, गुरुवार के मूड के हिसाब से गुरु और लग रहा है बृहस्पति देव ने थोड़ा सा आपके दिमाग को थोड़ा थोड़ा साइड साइड साइड कर दिया। जो लोग उस जोन तक जाते भी नहीं थे, उन्होंने भी थोड़े थोड़े सैड वर्जन वाली सॉन्ग्स भेजे हैं, बट गाने उम्दा और आला है, तो इसलिए मैं प्ले करना चाहूंगी। बट इस बट यूज करते हुए मैं ये भी बताना चाहूंगी, हमारे इंडिया वाले देव प्रसाद जी का सैड सॉन्ग तो मैं नहीं बजाने वाली, ये तो इस जन्म इम्पॉसिबल है। गाना फिलहाल मेरे बहुत ही पसंदीदा है, सैड वर्जन का सबसे प्यारा सॉन्ग है अगर कहे तो, बट वो नहीं, आपके लिए खास होगा मेरी प्लेलिस्ट का एक सॉन्ग। लेकिन अगर आपको भी अपनी प्लेलिस्ट का कोई सॉन्ग प्ले करवाना है, डेडिकेशन में कोई सॉन्ग है, या किसी अपने के लिए आप कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, या फिर उसको अपने जज्बात बताना चाहते हैं, उकेरना चाहते हैं उसके लिए दिल के जज्बात, हालात खोलना चाहते हैं उसके आगे, तो प्लीज डायल करें अपने स्टूडियो का नंबर, नंबर वही है 6393316429 यानी कि 6393316429। आज की प्लेलिस्ट का पहला गाना यानी कि हमारी पसंद का गाना आप सभी के लिए, थोड़ा सा रोमांटिक वाला, थोड़ा सा प्यारा वाला, थोड़ा सा स्वीट वाला, अनुराधा जी की आवाज और ये गाना, जी हाँ, दाग मूवी से, और आप सभी ने जरूर सुना होगा 90s हिट्स में से एक नगमा। स्टार्ट करते हैं आपके अपने शो को इस गाने से और चलते हैं आज के 3 से 4 के सफर की ओर। स्टे ट्यून्ड गाइस।

हाँ जी प्रिय श्रोताओं, ये नगमा आप सुन रहे हैं आपकी आरजे आकांक्षा की प्लेलिस्ट से और काफी पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी रीना शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, रुड़ गई उत्तराखंड से, और बाकी सभी लिसनर्स ने भी हाजिरी लगा दी है और लगातार आप सभी की कॉल्स भी आ रही है। गाने काफी सारे आए हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे आए हुए हैं, सभी गाने ट्यून किए जाएंगे। आपका फरमाइशी सेशन चल रहा है 3 से 4 का। जी हाँ, आपने ट्यून करके रखो रेडियो 96.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल बहुत ही उम्दा वाला सॉन्ग, एंजॉय करते रहिए।

भाई हमारे पंडित जी का कहना है कुछ भी नहीं हुआ है तब वो तावीज बनवाओ। हाँ जी, आप ही से बनवाएंगे, परेशान ना होइए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आई डिमांड की ओर, और ये डिमांड आई हुई हमारे पास में हमारे प्यारे लिसनर यानी कि सुनील कुशवाहा जी की ओर से। फिर हम नेक्स्ट डिमांड लेंगे अपनी देवी प्रसाद जी की, फिर होंगी हमारी रेणु तिवारी जी, और देन हमारे मिस्टर ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी। फिर आप सभी की बारी आती रहेगी, अपने अपने सॉन्ग्स को एंजॉय करते रहिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। ये गाना मैं पहली दफा सुनने जा रही हूँ, तो आप भी एंजॉय कर लीजिए हमारे सुनील कुशवाहा जी की डिमांड पे ये वाला गाना। और बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक दे

जी श्रोताओं, ये है देवी जी का सॉन्ग हमारी प्लेलिस्ट से। भाई इन्होंने एक सैड सॉन्ग की डिमांड की थी, गाना बड़ा प्यारा था, लेकिन हम इन्हें सैड सॉन्ग नहीं सुनाने वाले, जाना तो कतई नहीं।

भाई मुझे चैट बॉक्स पढ़ के बड़ा मजा आ रहा है और सबने पूछ रखा है भैया मेरा नंबर कब है, मेरा नंबर कब है। तो मेरे हिसाब से तो आप सभी का नंबर वन है, और अगर मैं नंबर वन पे सभी को वाकई यकीन मानिए लंच कराने बैठा दिया मैंने, मैं खिचड़ी बना दूंगी, आप लोग को हजम नहीं होने वाली। खिचड़ी मेरी फेवरेट है, आप नहीं हजम कर पाएंगे। एक ही बार में सारे का मिक्सिंग अगर मैंने बजा दिया, एक तरफ ये गाना एक तरफ ये गाना, मतलब लगातार चार के पांच पैनल इकट्ठा, तो आपको हजम होगा? आप खुद से सोचिए। थोड़ा थोड़ा सब्र करिए, अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए। फिलहाल ये गाना हमारी प्ले लिस्ट से हमारे प्यारे देवी प्रसाद जी के लिए है।

श्रोताओं, लगातार आपकी कॉल्स भी आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। और अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की। भाई एक कॉल मैं रखती नहीं, दूसरी कॉल आ जाती है, मैं लिंक कब लूं, मैं सोच में पड़ जाती हूं। लेकिन बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में। और ये डिमांड है हमारी प्यारी रेनू जी की। रेनू जी के बाद होंगे हमारे अजय मिश्रा जी, मिश्रा ऑप्टिकल से, फिर होंगे हमारे प्रबल मिश्रा जी, पंडित जी, देन हम देखते हैं नेक्स्ट कौन है हमारी प्ले लिस्ट में। लेकिन उससे पहले बड़ा ही शानदार सनगमा रेनू जी की डिमांड पे एंजॉय करिए 3 से 4 के सफर में। मैं आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे कांक्षा, और आप शो सुन रहे हैं फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलेज इन गोंडा।

हाँ जी श्रोता, और अब दिल थोड़ा सा थाम लीजिएगा। हाई बीट का सॉन्ग आ रहा है आप सभी के लिए, और जब दिल मुश्किल कर देता है जीना तो फिर वो क्या कहलाता है। सुनिए आज अमित शाह जी की इस प्यारी सी डिमांड के साथ। हाय, क्या म्यूजिक है।

जी, तो भाई ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग अभी आपने एंजॉय कर लिया है हमारे अजय मिश्रा जी की डिमांड पे, जो हमें सुनते हैं मिश्रा ऑप्टिकल से। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड किसी और की डिमांड प्रवीण मिश्रा जी पंडित जी की है। इनको आज पुन्ना से एक प्यारा सा रैप सुनना है। चलिए हम भी हो जाते हैं रैप को सुनने वाले इनके इस गाने के साथ में, और फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर के अपने प्यारे अमित कुमार जी की। देन दो और डिस्को वाले सॉन्ग है, जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिएगा 3 से 4 के सफर में आपके अपने फेवरेट शो फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून।

क्या बात है भाई, बिल्कुल सच बात कही है कि वक्त हाल बदल देते हैं, इसलिए वक्त के साथ में लोग अगर आप बदल रहे हैं तो आप भी बदल जाइए। अपने दिल पर मत लीजिए कोई भी जज्बात, तब तक ही हावी होने दीजिए जब तक वो आपके लिए फायदेमंद है, आपके दिल के हाल को बर्बाद नहीं कर रहा। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड हमारे अमित कुमार जी की, इसलिए सुन लेते इनकी डिमांड पे ये प्यारा सा नगमा फिर आएंगे आई एम अ डिस्को, हाँ जी डांसर के साथ में, जो की डिमांड होगी हमारी क्षमा जी और राम नरेश तिवारी जी की। वैसे भाई क्षमा जी पता है आप सभी को बैठी हुई है, बस गाना बजेगा और वो डिस्को डांस करेंगी और हम भी थोड़ा थोड़ा नाचने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए हमारे अमित जी की डिमांड पे।

हे भगवान क्या बात है, ऐसे गाने हो ना तो इंसान मरने से पहले कहेगा सारे काम निपटा लेते हैं, वरना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छूट गया तो फिर अगर मर गया तो फिर कौन देखने आएगा। ऐसे वैसे बड़ी वाली सच्चाई है, जिंदगी बस इतनी ही है कि एक बार आंख बंद हुई तो उस पार कुछ भी नहीं है, एक स्वप्न की तरह है, और जब आपकी आंखें उस लोक में खुलेगी तो आपको लगेगा कि आप एक सपना ही देख रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे राम नरेश तिवारी जी की ओर से, हमारी प्यारी सी क्यूटी पाई यानी कि क्षमा जी के लिए। 3 से 4 के सफर को आप एंजॉय कर रहे हैं अपने फोनी फरमाइशी कॉलर ट्यून यानी कार्यक्रम यानी कॉलर ट्यून गुंडा को।

0: डिस्को डांस के बाद में नेक्स्ट सॉन्ग हम लेंगे, देन आएंगे हम अपने चैट बॉक्स वासियों से मुलाकात करने के लिए। भाई काफी देर से आप सभी लगातार एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है और गाने भी एक से बढ़कर एक हैं और आज की प्लेलिस्ट उम्दा नहीं आला है भाई, एक से एक नगमे जो निकल के आ रहे हैं आप सबकी ओर से और कॉल्स भी लगातार आ रही। मैं तो दो पल का लिंक भी नहीं ले पा रही, क्या बात है। थैंक यू, एंजॉय करिए।
1: दोस्तों मेरी ये जिंदगी गीतों की अमानत है।

भाई क्या ही बोले अब हम, हमारे प्यार प्यार लिसनर्स इतने प्यारे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। कुछ तो बाय बोल देते हैं फिर बोलते हैं गुड मॉर्निंग, पहले गुड आफ्टरनून फिर बाय फिर गुड मॉर्निंग फिर अभी थोड़ी देर बाद बाय कहेंगे फिर कहेंगे गुड इवनिंग। हाउ मतलब कितना दिमाग आप लोग के पास आता कहाँ से। फिलहाल मेरे पास आया हुआ एक नगमा, वो मैं ट्यून करने वाली हूँ हमारे प्यारे लवली सिंह जी की डिमांड पे, और लवली सिंह जी के साथ साथ में ये नगमा है हमारे शिवाकांत शुक्ला जी की ओर से, जो हमें सुन रहे हैं माधोपुर गुड़वा घाट से। माधोपुर गुड़वा घाट से सुनने वाले प्यारे लिसनर शिवाकांत जी शुक्ला और प्यारे हमारे लवली सिंह जी की ओर से ये दलेर मेहंदी वाला गाना आप सभी ज़रूर सुनिएगा, खास करके हमारी जितनी फीमेल्स लिसनर हैं उन सभी के लिए, हम भी उसमें इंक्लूडेड हैं। आइए एंजॉय करते हैं 3 से 4 के सफर में ये प्यारा सा नगमा आया हुआ लवली सिंह जी की ओर से और हमारे शिवाकांत शुक्ला जी यानी माधोपुर वाले शिवाकांत जी की ओर से। एंजॉय द ट्रैक।

अभी आपने ये सॉन्ग लवली सिंह जी और हमारे प्यारे लिसनर जिनका नाम है शिवाकांत शुक्ला जी की डिमांड पे सुना, एंजॉय किया। और अभी हम चलते हैं चैट बॉक्स की ओर, और चैट बॉक्स में हमें दिख रहे हैं मैं प्यारे लिसनर। चलिए हाजिरी दर्ज कराते हैं कि कौन कौन उपस्थित है। तो है हमारे प्रबल मिश्रा जी, पंडित जी, और हमारी मंगू जी दिख रही है। भाई हैप्पी बर्थडे बहनी। अच्छा जी, आज हमारे नीना जी का बर्थडे है। चलिए एक गाना आपके नाम अभी हम डेडिकेट करते हैं। भाई हमारे चंगू जी का आज बर्थडे। पहले तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आज भाई ईद भी है, आप सभी को ईद मुबारक पुनः से। कल भी मैंने विश किया था और आज भी मैं विश करती हूँ, और खुद आप सभी पर अपनी रहमत बरसाए, बस इतनी सी दुआ है उससे। और इसके बाद है नव्या जी गोंडा से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके बाद नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो कमल नयन जी हैं, सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, और नेक्स्ट आप सभी ने काफी हार्ट इमोजीज दी हैं। संतोष भैया भी हमारे साथ में बने हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें दिख रहे हैं चैट बॉक्स में ढेर सारे हार्ट इमोजीज। भैया इतनी में ढूंढना पड़ता है कि एक मैसेज मेरे को। मिश्रा ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सविता दुबे जी भी आ गई भाई हरकापुर से। राम कृष्ण नंदन मिश्रा जी भी हैं हमारे साथ में बने हुए, और ये हमें सुनते हैं इलाहाबाद से, आपका भी मोस्ट वाला वेलकम है। और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और नेक्स्ट मैसेज की तरफ अगर मैं बढ़ रही हूँ तो आप सभी ने काफ़ी एंजॉय किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक लगातार मिलते रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की तरफ, और ये डिमांड है किसकी ये बता देते हैं। ये डिमांड है हमारे पास में हमारे प्यारे लिसनर, नाम है जिनका भोलेनाथ जी, जो हमें सुनते हैं शंकरपुरवा से। चलिए इनकी पसंद का ये गाना, और इस गाने के उस पार आते हैं हम अपनी प्यारी, जी हाँ, चंगू जी के लिए एक डेडिकेशन वाला सॉन्ग लेके आएंगे, जो कि होगा एहसान जी की डिमांड पे। उनका कहना है किशोरदा का कोई भी नगमा अपनी पसंद का, तो हम ये सॉन्ग डेडिकेट करेंगे जो नेक्स्ट प्ले करेंगे अपनी नीना जी को। आज उनका जन्मदिन है, ढेर सारी बधाइयां। उससे पहले ये गाना एंजॉय करिए, फिर आते हैं नेक्स्ट सॉन्ग के साथ।

जी हाँ दोस्तों, और शरबती आंखें, रेशमी जुल्फें, भाई तारीफ तो काफी हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास आई हुई है एहसान जी की ओर से। और एहसान जी के इस सॉन्ग को हम डेडिकेट कर रहे हैं अपनी प्यारी नीना जी को। एक बार फिर से आपको हैप्पी वाला बर्थडे नीना जी, और स्पेशली फॉर यू दिस लवली वाला सॉन्ग। एंजॉय करिए।

0: क्या
1: भाई? इनका नाम है चंगू जी हमने रखा है, और मंगू जी हमारी प्यारी नेहा जी। एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपका बहुत यादगार हो, बस इतनी सी दुआ है, और पूरी जिंदगी आप बहुत खुश रहें। जैसे आप स्वीट सी है ना, आपके क्या ही बोले भाई, रसगुल्ले के साथ में। थैंक यू सो मच उसके लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। भाई थोड़ा सा हम हो रहे हैं भावुक, तो अपनी भावनाओं को रोकते हैं और बढ़ते हैं पूनम जी की डिमांड की ओर। जी हाँ, ये डिमांड होगी हमारे पूनम तिवारी जी की ओर से, और उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग होगा हमारे कमल नयन जी का, और देन होंगे हमारे सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से। अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहे और 3 से 4 के सफर को एंजॉय करते रहे विथ योर आरजे आकांक्षा।

0: उठ गए।
1: हाँ जी, और लगातार कॉल आ रही है। भाई हम कॉल उठाएं या फिर आप लोगों के गाने प्ले करें, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें याद है कि हमें गाना पहले प्ले करना है, इसलिए आ गए हैं कमल नयन जी की डिमांड के साथ में। एंजॉय करिए भाई, इनका ये सिग्नेचर वाला सॉन्ग है और हमको बड़ा पसंद है। तो चलिए चलते हैं नैनीताल की ओर आज के सफर के इस नेक्स्ट सॉन्ग के साथ।

आज ही मोहब्बत में कौन कौन नाचता है वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर बता देंगे तो हम घर पे जाके डांट भी खाएंगे। वैसे मन कर रहा है बता दे। चलिए सुन लीजिए, मोहब्बत में नाचते हैं भौजी के भैया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले गाने की ओर, और ये गाने की डिमांड की गई सुरेंद्र यादव जी की ओर से, गौरा चौकी से। और हमारे प्यारे लिसनर हैं कुमार जी, जो कि हमें सुनते हैं गौरा चौकी से। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। बड़े दिनों बाद ये सॉन्ग आप सभी की खिदमत में।

गाना क्या सॉन्ग है भाई, मजा आ गया सुन के। और रेनू रीना शर्मा जी का भी रुड़की उत्तराखंड से फीडबैक आ चुका है भाई, काफी पसंद किया इन्होंने इस नगमे को। अब हम बढ़ेंगे उस डिमांड की ओर जो कि भाई डेडिकेशन में आया हुआ है, और ये डिमांड है हमारे राजू सलमानी जी और रॉबिन हुड जी की ओर से। और ओके के पोते श्री मोहम्मद अश्वर जी इस गाने को सुनना चाहते हैं, तो चलिए भाई अश्वर जी के लिए प्यारा सा गाना एंजॉय करिए।

नेक्स्ट डिमांड होगी हमारे रमेश कुमार जी की, देन होंगी हमारे साथ में हमारे अविरल त्रिपाठी जी और लड्डू सिंह जी। भाई लड्डू सिंह जी हमें सुन रहे हैं रानीपुरवा से, और देन होंगी हमारी अनन्या मिश्रा जी।

वैसे मामा अपने भांजों से बड़ा प्यार करते हैं और हर एक चाचा अपने भतीजे से, हर भाई अपनी बहन से, हर मम्मी पापा अपने बच्चों से। इसी तरह से ये रिश्ते बड़े खूबसूरत बनते हैं जब उसमें मोहब्बत और प्यार की बात आती है। वैसे राजू सलमानी जी, आपको आज के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ में आपके पोते जी के लिए आपने प्यारा सा नगमा बजवाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, जो की है हमारे रमेश कुमार जी की डिमांड, भाई महाराष्ट्र से, चिता चिता चिता चिता चिंता ता। और ये गाना हमारे मुस्तफा जी के लिए सऊदी अरेबिया से।

दोस्तों, मैं इस गाने में ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने क्या इसकी जो फिल्माया गया है, जो एक्शन है, वो आप लोग कर पाते हैं या नहीं। चिंता वो मेज पे जो करते हैं, प्लीज बताइएगा, मेंशन जरूर करिएगा। और जिस जिसके पास गाड़ी है उन सभी के लिए गाना है भाई।

मार्टिरा साहब आपको भी जय माता दी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल गाना चल रहा है हमारे रमेश जी की डिमांड पे फ्रॉम महाराष्ट्र। एंजॉय करते रहिए, बड़ा ही प्यारा सा गाना है भाई। मेरा तो नाचने का मन कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा मेरा मेज पे चिंता चिता चिता करने का मन कर रहा है। कौन कौन कर पाता है प्लीज बताइए।

गलती सभी कर लेते, हम नहीं कर पाते, हमें भी सीखना है, हमें भी कोई सिखाइए ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं लड्डू सिंह जी की डिमांड की ओर। लड्डू सिंह जी को खिलाते हैं ये गाने का लड्डू, आप भी खाइए साथ में। और नहीं, आगे नहीं बोलेंगे, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एंजॉय करिए इस ट्रैक को। देन आते हैं हम नेक्स्ट डिमांड लेकर के अपनी खुशी जी का, और आज की लास्ट डिमांड होगी हमारी निशा जी की।

अविरल त्रिपाठी जी और साथ ही साथ में हमारी लड्डू सिंह जी की डिमांड पे आपने एंजॉय किया ये गाना जो हमें सुनते हैं रानीपुरा गुंडा से। और आज की नेक्स्ट डिमांड लेते हैं हम अनन्या मिश्रा जी की जो हमें सुनती हैं अम्बेडकर चौराहे से। देन आएंगे आज की लास्ट डिमांड लेकर के निशा जी की, क्योंकि निशा जी जा रही हैं एक महीने की छुट्टी पे। उन्होंने हमसे कहा मैम जी आज हमारा गाना जरूर से प्ले कर दीजिएगा, चाहे लास्ट ही करिएगा। और जिन जिनका सॉन्ग रह जाएगा वो हैं कौन, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये गाना एंजॉय करें।

आज ये सॉन्ग आप एंजॉय करें, अनन्या मिश्रा जी की डिमांड पे, जो हमें सुनती है अम्बेडकर चौराहे से। और आज जिन जिन के सॉन्ग रह जाएंगे उनके नाम हैं अभिनव पांडे जी, रीत लाल जी फ्रॉम अलाहाबाद, और मुमताज अंसारी साहब हैं, और नेक्स्ट हमारे बीच में है जिनका सॉन्ग छूटेगा वो है खुशी जी, और खुशी जी के बाद में है हमारी प्यारी स्नेहा जी। तो इतने डिमांड्स आज भी मेरे पास है, मुझे लगा था आज मैं लगभग सभी के गाने प्ले कर पाऊंगी, एक भी डिमांड नहीं छूटेगी। इतनी मशक्कत करने के बाद भी 5 गाने रह जाने वाले हैं। फिलहाल एंजॉय करिए इस ट्रैक को, और जो कि है हमारी निशा जी की डिमांड, क्योंकि जाने वाली है, इन्होंने कहा भाई जाते आते ही सही लेकिन हमारा गाना प्ले कर दीजिएगा। चलिए अब चलेगा, अभी वक्त हो गया है, आप सभी से लेती हूँ मैं विदा, मिलते हैं कल नहीं परसों, क्योंकि कल है हमारा वीक ऑफ। कल आप एंजॉय करिएगा पूरे 2 घंटे के शो को विथ योर फेवरेट आरजे उन्नति। बाय बाय, टेक केयर।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे।

कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला फेस बेबी, शरीफ हूँ।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
3: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
10: गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गॉडली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गॉडली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: डिलीशियस
0: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
0: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स, एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
6: मैप है
7: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, लो गाऊं ऐसा गाना दिल्ली को पार कर दूं।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: सभी किसान भाई बहनों को हमारे कार्यक्रम जो सुन रहे हैं उनको सबको हमारा प्यारा भरा नमस्कार।
1: और आज एक खास दिन भी है, उसकी भी बधाई दे ही दे लगे हाथ।
0: जी बिल्कुल, आज हम लोग मना रहे हैं ईद उल अजहा, यानी आज के दिन लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और आपस में आपसी ये सौहार्द का त्यौहार है। लोग एक दूसरे को गले मिलकर और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। यही अपने जो भारत की और अपने यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब है आपस में सिखाती है कि आपस में हम लोग मिलकर रहें।
1: बिल्कुल से। तो आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब हम चलते हैं उस ओर जो आज का हमारा विषय है, लेकिन उससे पहले जो आज के हमारे एक्सपर्ट महोदय हैं बहुत ही आला शख्सियत रखते हैं अपने आप में, और इनको इनसे रूबरू आपसे कराएं, इनकी आवाज़ से आपको परिचित कराएं, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि सर हमारे राज्यपाल पुरस्कार से 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट हैं और साथ ही साथ में इन्होंने यूपी कैट यानी कि UPCATET की परीक्षा में पहली स्थान की प्राप्ति की है। तो चलिए उस ओर आपको ले चलते हैं हमारे एक्सपर्ट महोदय की ओर, और ज़्यादा मतलब भूमिका ना बनाते हुए बताते हैं कौन है हमारे बीच में। हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर करुणेश दुबे जी, जो कि LBS में हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: सभी किसान भाइयों को नमस्कार और थैंक यू मैम कि जो है इतने इम्पोर्टेंट विषय पे आपने हमको यहाँ पे बुलाया।
1: जी सर, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने परिचय में कुछ और बताएं हमें, क्योंकि जब ऐसी योग्यता हमारे बीच में होती है तो उसमें जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। तो प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं, फिर विषय के ऊपर आगे बढ़ेंगे।
2: हमारा नाम डॉक्टर करुणेश कुमार दुबे है, यहीं पास के ही आपके शहर के कॉलेज श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैं अभी जो है 2 साल से करीब टीचिंग में हूँ।
1: जी।
2: और मेरा विषय एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड वेटनरी साइंस है। वो मैं बच्चों को बताता मतलब ये पढ़ाता रहता हूँ। और जैसे मेरा एक पशुपालन के टीचर होने के नाते मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें हैं वो किसानों तक भी सीधे तौर से जाएं, और ये आपका प्लेटफार्म मैंने चुना, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम शुरुआत इससे करते हैं कि हमारे कंट्री की जो जनसंख्या है उस समय हम दुनिया में सबसे अग्रणी देशों में हैं। इतने बड़ी जनसंख्या को, इतने बड़े युवाओं को, इतने करीब 65% हमारे देश में युवा हैं, तो उनको सभी को हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं ले जा सकते।
1: जी।
2: तो उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि सभी को जो है खुद में अपना एक रोजगार सृजन का मौका मिले। अगर मैं गोंडा की ही बात करूं तो आप यहां से भी अगर हम पलायन देखें तो हमारे बहुत सारे युवा वो आए दिन जो है अपना घर छोड़ के बाहर मजबूर हैं कि उनको बाहर ही नौकरी तलाश में घर छोड़ना पड़ता है।
1: जी जी।
2: ये इतना बड़ा चैलेंज है कि हम अपने पूरे लाइफ जो है बाहर ही रह जाते हैं अपने पारिवारिक पोषण के लिए। तो जो पीछे चला गया मैं उस ओर ना देख करके वहां से सिर्फ इतिहास से थोड़ा सा हम सीख लेकर के जो आने वाले युवाओं हैं, युवा हैं, मैं इनको कहना चाहूँगा कि ये जो ऐसा आज का हमारा टॉपिक है कि मुर्गी पालन एक सफल बिजनेस मॉडल है, ये अगर आज का युवा वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है या किसान है या कम जोत का किसान है जिसके पास भूमिहीन है, वो भी लीज पर लेकर के जमीन किसी भी तरीके से मतलब अपना छोटा से छोटा कम इन्वेस्टमेंट में ये मुर्गी पालन का काम शुरू कर सकता है और वो एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पे आने वाले 2-4-10 सालों में एक मैं ये मानता हूँ कि अगर एक आदमी अपने बिजनेस में इसमें शुरुआती इन्वेस्टमेंट अगर वो 50,000 रुपये से करता है तो आने वाले 5 सालों में उसकी नेटवर्थ एक साल की आप मान के चलिए कि 25 लाख के आसपास हो सकती है।
1: जी।
2: तो मैं इसी पर पूरे इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए
1: उपस्थित हैं आज हमारे इसमें। सर आप कुछ और बताएं, उससे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आपने मतलब अपनी लाइफ में एज अ करियर इसी विषय को क्यों चुना?
2: मुझे ये लगता है कि जैसे हर समाज का एक तात्कालिक जरूरत होती है।
1: जी।
2: मैं आज देखता हूँ कि हमारा एक्सपोर्ट जो है बहुत कम है और इम्पोर्ट जो है हमारा बढ़ता जा रहा है,
1: बेशक,
2: तो उस कंडीशन में जो है हमारी जो रुपए है वो हमारी मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा है।
1: बिल्कुल।
2: हम अपने को किस ओर ले जाएं कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। मैं जिस विषय पर बात करने के लिए बैठा हूँ, आज उत्तर प्रदेश की ये जो पॉपुलेशन है ये खुद ही एग का एक जो अंडे का

0: कंज्यूमिंग है, जो मतलब हम उपभोग कर रहे हैं, हम अपनी अपनी जरूरत का अंडा 30% अंडा हम दूसरे राज्यों से, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उससे हम परचेज करते हैं। मतलब आज उत्तर प्रदेश इतना युवाओं का प्रदेश होने के बावजूद हम 30% अपने अंडा की जरूरत, अंडे जो उपभोग कर रहे हैं वो दूसरे राज्यों पर निर्भर है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा युवा कम से कम सबसे पहले आत्मनिर्भर बने। ये 30% का जो इम्पोर्ट कर रहे हैं अदर स्टेट से, ये तो रुके। और दूसरी चीज, एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ हमारी बेरोजगारी है, दूसरी तरफ हम आत्मनिर्भर नहीं है, यानी हम दूसरे पे डिपेंडेंट है। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आने वाले आप देखेंगे कि हेल्थ इश्यूज, और हेल्थ इश्यूज भी एक, अगर हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो हमारी स्वयं की जो प्रोटीन की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, वो वाया पोल्ट्री यानी कि मीट के तौर पे, अंडे के तौर पे वो हमको उपलब्ध होती होगी। तो हमारा हेल्थ भी अच्छा बनेगा और हमें रोजगार सृजन का भी मौका मिलेगा। और ये जो हम दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं, इससे हमारा स्वावलंबन भी बढ़ेगा, हम डिपेंडेंट दूसरे पर नहीं होंगे।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, और कहीं ना कहीं ये जागरूकता का पॉइंट आपने रखा है हमारे किसान भाइयों के और जवानों के बीच में। फिलहाल हम कोई और सवाल अतिरिक्त आपसे पूछे, उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे इरफान जी आपसे कुछ प्रश्न रखें।
2: जी, आपने बहुत अच्छा जानकारी दी कि जो आज की जो युवा है, आज की जो जनरेशन है, अगर इसको अगर व्यवसाय को शुरू करें तो इससे अच्छा आमदनी और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब सर हम जानना चाहेंगे सर, तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है सर?
0: देखिए, आपने सबसे अच्छा और पहला सवाल एकदम शुरुआत से ही किया है। हमारा जो ये बिजनेस मॉडल है, ये मतलब ये जो कुक्कुट पालन है या इसको मुर्गी पालन कहते हैं, तो इसके लिए सबसे जितना अच्छा हमारा शेड का मैनेजमेंट होगा, जितना अच्छा प्रबंधन होगा, उतने ज़्यादा ही मतलब बीमारियां, उतने कम से कम बीमारियां होंगी और हमको मुनाफा उस ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो यानी कि तकनीकी प्रबंधन में हम शेड का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शेड की जो असेंबलिंग कर रहे हैं, हमें उसी समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं, मान लीजिए हम शेड बनाने जा रहे हैं, तो हम शेड बनाते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हम शेड बना रहे हैं उसकी जो दिशा हो वो पूर्व और पश्चिम हो, ताकि जो सूर्य का प्रकाश है उसका एक्सपोजर यानी कि कम से कम धूप उन मुर्गियों को लगे। और पूर्व और पश्चिम करने का फायदा, किसान भाई आप ये देखेंगे कि सूर्य जब निकलता है तो सबसे निचली सतह पर होता है, और शेड तो जो सूर्य के सुबह निकलने समय जब हमारे शेड का जो डायरेक्शन होता है, जब पूर्व पश्चिम होता है, तो सूर्य की किरणें हमारे पूरे शेड में जाती हैं, और उस समय चूंकि सुबह का मौसम होता है तो विटामिन डी भी होती है, और जो ड्रेनेज सिस्टम है या जहाँ पे सूक्ष्म जीवों का एक्सपोजर है वो है, तो सनलाइट से भी वो एक डिसइंफेक्टेंट का काम करती हैं। और यही सेम प्रोसीजर सनसेट के टाइम फिर सूर्य अपने निचली अवस्था में होता है, तब उसकी सूर्य की किरणें फिर से वो पश्चिम दिशा से, फिर एक तरफ सुबह में हमारा पूर्व की तरफ से सूर्य की किरणें गई थी, और शाम को फिर जब सनसेट का टाइम होगा, सूर्य अस्त के समय का होगा, तो उस समय पश्चिम से सूर्य की किरणें आती हैं, यानी कि पूरा का पूरा सेट हमारा प्राकृतिक रूप से डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन में सूर्य ये दिशा का हमें पूर्व और पश्चिम रखना है। दूसरी चीज, हमें जो उसके शेड का स्लोप होता है, जो उसकी हम एक तरीके से ओवरहैंगिंग या वरौनी बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, उस वरौनी की दिशा जो मतलब उत्तर और दक्षिण हो गई है, तो उसकी लंबाई 6 फुट उत्तर की तरफ और 6 से 7 फुट दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। और जो उसका बॉटम सरफेस है, यानी हम ऐसे गांव की भाषा में गए हैं कि जो बीच का पोल होगा, यानी जहाँ बनेर हम बोलते हैं, बनेरी, तो वो जो है 10 से 12 फुट की होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ रखना है कि पूर्व से पश्चिम हमारा शेड होना चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि उसकी जो लंबाई है, उस शेड की चौड़ाई कभी भी हमें 25 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, ताकि नहीं तो फिर वो वेंटिलेशन की समस्या आती है और सफोकेशन होता है मुर्गियों को सांस लेने की, और ब्रोंकाइटिस इस टाइप की तमाम बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें ये दिशा पूर्व पश्चिम रखनी है और उसकी चौड़ाई 25 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी ज़मीन है, तो फिर हमें उसे इन्वायरमेंटली कंट्रोल मतलब एग्जास्ट फैन लगा करके और वेंटिलेशन को मेंटेन करना होगा।
2: जी, आपने बहुत अच्छा सर ये आपने बात ये कि मतलब जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है इस समय, तो जो पोल्ट्री फार्म किए हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं सर, वो इस समय जो उन्होंने छा रखा है, तो उसमें क्या क्या वो बात का ध्यान रखें सर?
0: उसमें सबसे पहली चीज़ें हैं कि गर्मी को, जैसे हम कहें कि हीट शॉक से अगर उनको बचाना है, गर्मी के थपेड़े एक तरीके से कह लें, लू से बचाना है, तो सबसे पहले तो एक हमको जो है जूट का, मतलब जूट का बोरा जो कर्टन है, पर्दा लगाना होगा शेड के दोनों तरफ से, हमें उन्हें पर्दा लगा देना है ताकि डायरेक्ट जो है वो गर्म हवाएं उन मुर्गियों को, कुक्कुट को हमारे सीधे तौर से ना लगें। और अगर हम टिन शेड का अपना जो शेड बनाए हैं पोल्ट्री फार्म का, अगर वो टिन शेड का है तो उस पर हम एक फर्माकोल का एक सीट आने लगी है वो डाल सकते हैं, या गांव में हमारे किसानों के पास जो है पुआल है
2: जी,
0: वो उसको रख सकते हैं। या अभी जैसे मान लीजिए कि सरसों कटी है तो जो तिलेठी है, जो मस्टर्ड का रेसिड्यू है उस क्रॉप का, तो वो तिलेठी या कुछ इस तरीके से पुआल उस रख के उसके वो, ये चीजें क्या है कि टिन सेट के ऊपर डालने से वो इंसुलेटर का काम करती हैं, सूर्य सीधे उस टिन को गर्म नहीं कर पाता है
2: जी।
0: तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऊपर से पुआल या ये फर्माकोल का एक सीट डाल सकते हैं, दूसरी चीजें ये है कि हमें पर्दा लगाना है। और आजकल एक नई व्यवस्था आ गई है कि हम उसी सेट में स्प्रिंकलर लगा देते हैं तो वो हमारी ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन रखता है, और जैसे कूलर का ठंडक होती है वो स्प्रिंकलर से हमको ठंडक हमारे मुर्गियों को मिलती रहती है। ये हीट वेव से ये बचाना है
2: जी।
0: और दूसरा चीज है कि हीट वेव में कभी भी किसान भाई दोपहर के समय उनको जब भी फीडिंग करवाएं, सुबह 8 बजे से पहले फीडिंग करवा लें, शाम को फिर वो जो है 4:30-5 बजे के बाद फीडिंग करवाएं, बीच का समय में फीडिंग नहीं करवाना है, लेकिन उनके ड्रिंकर में पानी की ताजी व्यवस्था पूरे दिन जो है कंटिन्यूस बनी रहनी चाहिए। लगातार पानी, हम पानी हमें पूरे दिन देना है लेकिन हमें फीड जो है वो सुबह 8 से पहले खिला देना है और 4:30-5 के बाद शाम में देना है
2: जी। जी आपने सर बहुत अच्छा किया सर पानी की बात की। तो अक्सर करके क्या होता है जो हमारे कुछ ऐसे जो व्यवसायी किए हैं या जो हमारे किसान भाई बहन हैं अपने गाय भैंस को ही बासी पानी कभी कभी पिला देते हैं, तो ये सर कितना सही है?
0: देखिए हम बासी पानी का मतलब ये होता है कि एक तो जो हमारा सतही जल है, जो भूमिगत जल है, अगर वो तुरंत का तुरंत जैसे आता है तो हमारे ऊपर का टेम्परेचर यानी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और भूगर्भ का टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हमें जानवरों का या हम स्वयं अगर अपने ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, मनुष्यों का, तो जो हमारे शरीर का तापमान है उस तापमान से या तो 8 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान ज़्यादा हो या 8 डिग्री सेल्सियस कम हो, इससे ज़्यादा के वेरिएशन पे, इससे ज़्यादा की विभिन्नता के केस में वो पानी जानवरों के लिए भी अच्छा नहीं होता है और हमारे स्वयं के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें तुरंत का ताज़ा पानी अगर हम उसको उपलब्ध करा रहे हैं तो ये सबसे अच्छा होगा
2: जी। सर अब आते हैं सर अगले सवाल पर और जानते हैं सर व्यापार और अर्थशास्त्र और सरकारी नीतियाँ क्या हैं। सर
0: हम जो है इसके व्यापार की बात करें तो किसान भाइयों को चूंकि ये बिजनेस है हमें शुरू से इसका आइडिया देना है। एक मान लीजिए कि आप शुरुआत में 1,000 बर्ड्स का एक पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि 1,000, हम व्यापार की बात करें तो 1,000 बर्ड्स का पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए हमको 1,000 वर्ग फीट जमीन की ज़रूरत होगी और हमारी हम जमीन का ऐसा चुनाव करें जिसकी लंबाई 55 से 60 फीट की हो और चौड़ाई जो है 25 फीट के आसपास की हो। तो अगर ऐसी ज़मीन देख करके तो ज़मीन का चुनाव करना है। 1,000 बर्ड से अगर हम शुरू करते हैं, आजकल क्या है कि कई सारी कंपनियां जैसे सुगना हो गई, वेंकीज हो गई, आईबी ग्रुप की ये सब कंपनियां हैं, तो वो आप सिर्फ पोल्ट्री फार्म का कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, ये जो मैंने जो पॉपुलर कंपनियां हैं अपने यहाँ, फिर से किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा, सुगना है, बैंकीज है और आईबी ग्रुप की कंपनियां हैं, ये किसानों से सीधे जो है एमओयू कर लेती हैं, इनका आपस में एक मतलब उसको हम बोलेंगे कि एक समझौता ज्ञापन हो जाता है और ये आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे कि आपको सिर्फ ज़मीन उपलब्ध कराना है, लेबर उपलब्ध कराना है, पानी उपलब्ध कराना है, बिजली उपलब्ध कराना है, बाकी जिस कंपनी के साथ आपका एमओयू होगा वो आपको बर्ड्स उपलब्ध कराएंगे यानी कि चूजे उपलब्ध कराएंगे, आपको दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं, वो जो है पोल्ट्री फीड उपलब्ध कराते हैं और जितने भी टाइप के वैक्सीन उसमें लगते हैं वो सारे उपलब्ध करवाते हैं। फिर जो है आपको मान लीजिए हम लेयर की बात सॉरी अगर हम ब्रॉयलर की बात करते हैं जो मांस वाली उत्पादन की है, तो फिर वो वही आपकी जैसे उन्होंने ही आपको बच्चे उपलब्ध कराए, वही आपको 6 सप्ताह के बाद सारे बर्ड्स वो खुद कंपनी खरीद लेती है, यानी वो आपको बर्ड्स भी उपलब्ध करा रहे हैं, फीडर, मतलब सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराने के बाद जो आपने प्रोडक्शन दिया यानी जो आपने उसका वजन बढ़ाया अपने फार्म में ला करके, उसको वो 6 सप्ताह के बाद आपसे खरीद लेगी। तो आपको एक कोई आपको इन्वेस्ट भी इन्वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट में आपकी जमीन हो गया, आपका शेड होगा, आपका बिजली और पानी होगा, और आपको अपने पास से कुछ नहीं लगाना है। ये मतलब उसके व्यापार की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम मुनाफे की बात करें तो एक एक केजी मान लीजिए एक ब्रॉयलर की बात करें तो एक ब्रॉयलर में आपको 12 से 15 रुपए का फ़ायदा ये 42 दिन में मिल जाता है। तो अगर हम उसी को 1000 बर्ड्स हैं और उस पर इंसेंटिव भी, जैसे मॉर्टिलिटी अगर आपके फार्म पे नहीं हुई है तो आपको उसमें जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में भी कंपनी आपको देती है।
1: मतलब कंपनी हमें हमारा साथ भी देती है और साथ ही साथ में हमारा मुनाफा भी कराती है, हमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और जैसा आपने बताया कि 1000 बर्ड्स पे एक अगर ब्रॉयलर की बात करें तो आपको 15 रुपए का मुनाफा होता है।
0: हाँ, पर केजी पे।
1: जी, तो अच्छा खासा मुनाफा भी दिख रहा है। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि देसी मुर्गी पालन और ब्रॉयलर फार्मिंग में ज़्यादा मुनाफा किस में होता है?
0: देखिए, दोनों का अपने जो है अपने प्रकृति पर जो है असर होगा। मान लीजिए कि हमारे पास, जैसे हमने बताया कि हम 1000 बर्ड्स का अगर कार्य करना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट 1000 वर्ग फीट की ज़मीन होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसे किसानों के लिए, ऐसे छोटे परिवारों के लिए बता रहा हूँ कि जिनके पास 5000 रुपये भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो वो अपना शुरुआत में सिर्फ 10 जो है कुक्कुट से 10 मुर्गी से अपना काम शुरू करें, वो बैकयार्ड पोल्ट्री शुरू करें। तो उसमें क्या है कि वो वहाँ का ये फायदा है कि जो मतलब आपको कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, आप जिस घर में रहते हैं वहीं कोने में कहीं एक चारपाई जितना जगह उनके लिए कोई कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, वो लकड़ी से कर दीजिए, मिट्टी से कर दीजिए, कैसे भी उसमें अपना 1.5 से 2 फुट ऊंचा और 10x10 का जो है, चूँकि एक मुर्गी के लिए 1.5 से 2 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए
1: जी।
0: तो 8x10 का एक आप जगह उसको दे दीजिए, आराम से 10 मुर्गियों के लिए वो जगह पर्याप्त होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इसे हम जो है पोल्ट्री साइंस में बैकयार्ड पोल्ट्री कहते हैं। यानी कि जिनके पास फार्म कंस्ट्रक्शन की जगह नहीं है, वो अपने घर पे रह करके ये काम कर सकते हैं। लेकिन नस्लों का भेद आ जाता है। अगर हम बैकयार्ड पोल्ट्री करते हैं तो उसमें बनराजा, वनप्रिया और कैरी निर्भीक ये सब नस्लें रखनी पड़ती हैं। ये अंडा तो कम देती हैं लेकिन इनका मीट ज़्यादा अच्छा होता है, और इनकी इनको देसी मुर्गी मान करके इनका कास्ट, इनका प्राइम कास्ट में बिकती हैं। यानी कि इनका वजन, सॉरी इसका जो कीमत होती है, वो मार्केट में आपको ज़्यादा मिलती है।
1: ओके, मतलब देसी मुर्गी एक तो घर में हमने उत्पादन भी कर लिया और साथ ही साथ में हमको मार्केट का जो रेट है वो बाकी से, मतलब ब्रॉयलर फार्मिंग से अधिक मिलता है। तो अभी सर एक और सवाल है मेरे पास में कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी? ये तो आपने घर के लिए बता दिया कि हम अपने घर में ऐसे पालन करके, देसी मुर्गी पालन करके और कमाई कर सकते हैं। अभी आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की ओर।
0: ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे हमारा सबसे जो आजकल पॉपुलर है वो कड़कनाथ है, मध्य प्रदेश का है, इसे काला मानसी के नाम से भी जो है जानते हैं, जो एक खिलाड़ी हैं उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो टीम के अपने कप्तान रह चुके हैं, तो वो इस मीट को प्रेफर भी करते हैं कड़कनाथ को, एमएस धोनी करके
1: जी।
0: तो कि हम जो है इसका मीट खाते हैं इसलिए हम अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ये कड़कनाथ जो है ये हमारे इस समय कड़कनाथ, असील और बनराजा, ये तीन ऐसी जो है नस्लें हैं जिसे हम देसी मुर्गी के तौर पर रख रहे हैं, और इनका मीट बड़ा ही अच्छा होता है। और कोई भी चीज़ जो हमारे घर के हमारे परिवेश में पलती है वो कभी भी हार्मफुल नहीं होती है, वो हमारे शरीर को उत्तरोत्तर वृद्धि ही पहुंचाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो है कड़कनाथ, असील, वनराजा और ये ग्राम प्रिया
1: जी,
0: ये देसी मुर्गी के लिए है। अगर हम वही ब्रॉयलर ब्रॉयलर की बात करें तो ब्रॉयलर में ये व्हाइट लेग हार्न और BV300 और ISC ब्राउन, ये तीन नस्लें हैं जो हम ब्रॉयलर मीट के लिए यूज, सॉरी एग एग पर्पज के लिए, जो इसके पहले हमने बताया था
1: वो मीट के लिए था।
0: हाँ। वो उसमें जो है अंडे की उत्पादन क्षमता कम होती है, 150 से 200 ही होती है। लेकिन जो ये व्हाइट लेग हार्न है, BV300 और ISC ब्राउन है, ये 300 से लेके 320 अंडे ये प्रति वर्ष देने की क्षमता होती है। तो ये दोनों अंतर है मैम।
1: ओके अभी सर आपने बहुत ही अच्छे से और एकदम से बेसिक लेवल पे जाके डिस्क्राइब कर दिया कि कौन कौन सी प्रजातियाँ जो चाहे वो देसी पालन के लिए कहें बेसिक लेवल पे आके अपने घर में उत्पादन के लिए या फिर कोई ग्रामीण भाई हमारे अगर अंडे का उत्पादन ज़्यादा चाहते हैं मीट के बजाय तो वो कौन कौन सी प्रजाति को मतलब का पालन कर सकते हैं। अभी सर एक सवाल और है मेरे पास में कि ऑर्गेनिक या फ्री रेंज पोल्ट्री जो होती है उसका हमारे भारत में भविष्य कितना है?
0: अभी जो है अभी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 16, 17, 18 अप्रैल ये 3 दिन जो है पोल्ट्री कॉन्क्लेव के तौर पे आयोजित किया गया था और उसमें जो है करीब 19,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए, मतलब पूरे देश भर के उद्योगपति आए। तो वहाँ पे ये जो फ्री रेंज सिस्टम, जो फ्री रेंज पोल्ट्री केज या फ्री केज केज फ्री पोल्ट्री या फ्री रेंज सिस्टम उसी को बोलते हैं
1: जी जी।
0: तो इसका जो मार्केट है ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम फ्री रेंज का मतलब जैसे फ्री शब्द से हो गया, इसमें मुर्गियां स्ट्रेस में नहीं रहती हैं, वो किसी दबाव में नहीं रहती हैं क्योंकि हम उसे उन्हें किसी केज में नहीं पालते हैं। जब किसी भी व्यक्ति का पालन पोषण जो है फ्री होगा, मतलब
1: मानसिक तौर पे
0: हाँ, जैसे तुलसी बाबा ने कहा है कि पराधीन सपनों सुख नाही, तो सुखी ही नहीं है जो, तो उसके मीट का भी प्रोडक्शन, उसके अंडे का भी प्रोडक्शन वो उस पॉजिटिव एनर्जी को लेके नहीं जाएगा। तो जो फ्री रेंज है जितने भी इलिट वर्ग हैं, जो भी अभिजात वर्ग हैं समाज के, वो अब उनकी दूसरी बड़ी जरूरत है हेल्थ, वो दीर्घायु होना चाहते हैं और ये फ्री रेंज सिस्टम में जो भी हम पोल्ट्री का प्रोडक्शन करते हैं उसके अंडे की गुणवत्ता और उसकी मीट की गुणवत्ता हमको एक एंटी एजिंग की तरफ ले जाती है, मतलब हमें दीर्घायु बनाती है क्योंकि वो स्ट्रेस फ्री रेयरिंग सिस्टम में होती है, मतलब तनावपूर्ण पालन में होती है तो उसका फायदा हमारे बॉडी को मिलता है। इसका एक बहुत अच्छा मार्केट है और इस पे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए भी सोच रही है।
1: और ऑर्गेनिक का क्या क्षेत्र है?
0: ऑर्गेनिक भी, जैसे ऑर्गेनिक हम इसको इसलिए बोलते हैं कि जब फ्री रेंज सिस्टम में इसका पालन होता है
1: जी।
0: तो जैसे अभी आम का सीजन था तो हम आम के, मतलब आम में कोई भी जो बोरर एक कीट होता है, तने को छेद देता है
1: जी।
0: या जो उसके फ्रूट हैं जो निकलते हैं उसके फूल आम के ऊपर जो आने वाले उसको चाट लेते हैं, तो जब हम ये फ्री रेंज रियरिंग के पोल्ट्री को हम अगर आम के बगीचे में रखते हैं
1: जी।
0: तो उसका फायदा ये होगा कि इन कीटों को वो एक्सकैवेंजर बोलते हैं, मतलब उसको चुग लेती है, उन कीटों को चुग लेती है, उनके प्यूपा लार्वा को खा लेती है, तो उनके कीटाणुओं के जो हमारे आम की फसल या हमारी खेत के फसलों के लिए विरोधी कीट हैं
1: वो
0: उनके उनके प्यूपा लार्वा को खा करके और उनकी संतति के विकास को रोक देती है। एक तरफ तो वो रोक दे रही है, तो जो हार्मफुल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करना था आमों के बगीचे में या हमारे फसलों में वो नहीं यूज हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि जो हम अभी हम फीड की बात करें तो 32 से 40 रुपए पर केजी का फीड एक जो है फीड कराते हैं
1: जी।
0: तो हमें ये फीड भी बच रहा है और ये नेचुरल तरीके से वो अपना फीड खुद ही सिलेक्ट करके खा रही हैं तो, और उससे जो मीट का प्रोडक्शन होगा, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी एक बहुत बड़ा जो है रिसोर्स के तौर पे उभरा है
1: और काफी सुंदर। इस तरह से प्रकृति भी हमारी सुरक्षित है, हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है और हमारी जो मीट प्रोडक्शन है उसमें भी पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म हमें दिख रही है। काफी अच्छी जानकारी रही सर, बड़ा अच्छा लगा। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने जैसे बताया कि 1000 बर्ड्स के लिए कितनी जमीन हमें लेनी चाहिए, तो क्या ये जमीन शहर के लिए भी सेम है और गांव के लिए भी सेम है या फिर अलग अलग है?
0: इसमें एक चीज हमको ये देखना है कि हम जहां भी पोल्ट्री का रियरिंग करते हैं, मुर्गी पालन जहां भी करते हैं
1: जी,
0: तो इनके बीट की वजह से और इनका जो एक्सहेलेशन होता है, जो ये सांस छोड़ती हैं, तो ज्यादातर चूंकि इनको हम प्रोटीनियस फीड देते हैं तो प्रोटीन को सीधे हम नाइट्रोजन से जोड़ के और फिर अमोनिया में उसको हम मानते हैं, साइंस में हमें कहते हैं कि यहाँ से अमोनिया की बदबू आती है, यूरिन लाइक बदबू आती है
1: जी जी।
0: तो इसलिए हम इसको जब भी हम कहीं भी फील्ड का चुनाव करें तो हम पब्लिक प्लेस से कम 500 मीटर की दूरी पर करें, हमारा टारगेट ये हो। लेकिन हम यह इस बात का भी ध्यान रखें कि हम मार्केट के अप्रोच में हमेशा ही पोल्ट्री फार्म मार्केट के अप्रोच में खोलें। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसी ज़मीन नहीं मिल रही है और कोई ऐसी ज़मीन है जो पब्लिक प्लेस के पास ही है, तो हम क्या करेंगे कि जो उसका लिटर होगा, जो उसका बिछावन होगा, उसकी गुड़ाई बार बार करते रहेंगे, यानी कि उसके मॉइस्चर को भी देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि उसका मॉइस्चर 30% से ज़्यादा ना होने पावे, और उसके बिछावन को बदलते रहते हैं। तो अगर हम उसके बिछावन को बार बार बदल रहे हैं, दूसरी चीज़ उसकी हम बार बार गुड़ाई कर रहे हैं, तो उसे हम पब्लिक के भी अप्रोच है यानी कि 100-200 मीटर के रेंज में भी हम ये कार्य कर सकते हैं।
1: जी, अभी सर एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है आपसे बात करते हुए कि जो हम चुनाव कर रहे हैं ज़मीन का, क्या वो छायादार होना चाहिए या फिर धूप आए चलेगा, या फिर आसपास में अगर जैसे तालाब की भी आवश्यकता है, या फिर मतलब किस तरह का ज़मीन हो?
0: हम यहाँ पे जब ज़मीन का चुनाव करते हैं तो हमारा ये प्रयास हो कि अगर हम उससे जितना ज़्यादा नेचुरल के तरफ ले जा सकते हैं हम ले जाएं। जैसे आपका कोई भी सागौन का बगीचा है या बरगद है या अमरूद का बाग है, तो ऐसी जगह पे अगर हम पोल्ट्री फार्म करते हैं तो इन प्लांटों के आच्छादन, वृक्षों के आच्छादन से एक तो वहाँ का टेम्परेचर जो है उन पक्षियों के बर्ड्स के अनुकूल रहता है। दूसरी चीज़ रहती है कि हम एक इसको इंटीग्रेटिंग फार्मिंग के तौर पे भी कर सकते हैं कि जो लेबर आपकी रखवाली फार्म की कर रहा है वही आपके आम के बगीचों की भी कर रहा है और अमरूद के बगीचों की भी कर रहा है।
1: जी।
0: तो हमको ये जैसे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा कि अगर वो बगीचे में ये इसका पालन किया जाए।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारी रही और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था तो मुझे काफी संतुष्टि मिली। अभी श्रोताओं हम चलेंगे एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। काफी सारी जानकारी और बड़ी ही प्यारी प्यारी डीप में जाके सर ने हमको दी और आज के एक्सपर्ट के तौर पे हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर करुणेश दुबे जी, और आज का विषय तो आप लोग बखूबी जान ही गए हैं कि मुर्गी पालन। फिर से आएंगे आप सभी के बीच में दोबारा अपने प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
5: जी हाँ श्रोताओं, पुनः से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है आपकी अपनी आरजी आकांक्षा। जी हाँ, गौधुली स्पेशल खेत खलिहान में, और आज का विषय है मुर्गी पालन। और उसके लिए हमारे बीच में बतौर एक्सपर्ट हैं, राज्यपाल से 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट का सम्मान प्राप्त किए हुए और साथ ही साथ में ऑल यूपी के कैडेट के पहले रैंक के विजेता, यानी कि हमारे डॉक्टर करुणेश दुबे जी। चलिए चलते हैं, इनसे बाकी सवालों पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो सर, अभी तक हमने आपसे बहुत कुछ जाना। जी सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ब्रॉयलर मुर्गियों का आदर्श वजन कितना, मतलब कितने दिनों में होना चाहिए?
6: ब्रॉयलर, देखिए हमारी जो कैटेगरी होती है मुर्गियों की, उनको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एक तो ब्रीडर, एक होता है ब्रॉयलर और एक होता है लेयर, यानी कि लेयर पोल्ट्री, ब्रॉयलर पोल्ट्री और ब्रीडर पोल्ट्री। तो ब्रीडर पोल्ट्री को तो हम संततियों के विकास के लिए रखते हैं, जिनसे हमको लेयर भी मिलता है और ब्रॉयलर भी मिलता है। लेयर का मतलब ऐसी मुर्गियां जो अंडा देने के लिए हम रखते हैं। तो जो लेयर के, जितने लेयर ब्रीड जो हैं, जो अंडे उत्पादन के लिए हम रखते हैं, तो चूँकि उनका पहला स्टेज होता है कि वो एक ब्रूडर फेज में होती हैं, फिर उसके बाद ग्रोअर फेज में होती हैं, उसके बाद फिर वो लेयर में जाती हैं। यानी कि कोई भी मुर्गी जो होती है वो 20 सप्ताह के बाद अंडे देना शुरू करती है, और अपने 42वें सप्ताह तक जाते जाते वो अपने पूरे जीवन काल का 2/3 एग वो दे चुकी होती है। और सबसे ज़्यादा अंडे का वजन उसके 42वें सप्ताह में मुर्गी का होता है, और मुर्गी का स्वयं का वजन यानी कि 2.5 से 1.5 से 2 किलो, और कुछ जैसे वो नस्ल पे डिपेंड करता है कि वो 2 से 2.5 kg का भी हो सकता है, लेकिन किसी भी मुर्गी का सबसे ज़्यादा जो वजन होता है वो 42 सप्ताह पे होता है। लेकिन यहाँ हम अंडे देने वाली मुर्गियों की बात कर रहे हैं, और 72 सप्ताह तक जाते जाते कोई भी जो अंडा देने वाली मुर्गी है उसका जो प्रोडक्टिव लाइफ होता है वो ख़त्म हो जाता है।
5: जी।
6: हम बिजनेस के पर्पज़ से 72 सप्ताह की मुर्गी जब हो जाती है तो उसे कलिंग कर देते हैं, उसको मीट के लिए फिर बेच देते हैं। ये तो हो गया अंडा उत्पादन के वजन की बात।
5: जी जी।
6: अगर वही चीज़ अगर हम ब्रॉयलर मीट में है, जिसे हम ब्रॉयलर ब्रीड में है, जो हम मीट के लिए पालते हैं, तो मीट वाली मुर्गियों को हम सिर्फ 6 सप्ताह बाद उनको बेच देते हैं, और उस 6 सप्ताह में उनका आदर्श वजन 1.5 to 2.8 kg, मतलब 1.5 से 3 किलो के बीच में उनका वजन हो जाता है। और यह वजन सिर्फ जो है 42 दिन में प्राप्त हो जाता है। 42 दिन के बाद अगर हम मुर्गियों को रख रहे हैं तो हमें उसमें अच्छा मुनाफा नहीं, उनका वजन तो बढ़ेगा लेकिन बड़ा ही स्लाइटली इंक्रीज होता है। उसका हमें जो FCR होता है, फीड कंजप्शन रेशियो, उसके जितना हम फीड खिला रहे हैं उतना वजन नहीं बढ़ता है, तो इसीलिए हम 42 सप्ताह में ही मुर्गियों को बेच देते हैं मीट वाली को।
5: तो इस तरह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर हम ब्रॉयलर मुर्गियों का मतलब उत्पादन कर रहे हैं और वजन की बात कर रहे हैं तो अभी हम बढ़ेंगे। सर, एक सवाल आपने अभी मतलब एक बात बोली कि लेयर फार्मिंग, तो लेयर फार्मिंग में जो अंडा उत्पादन है वो कम होने का कारण क्या है?
6: लेयर फार्मिंग यानी कि अंडा उत्पादन के लिए जो हम मुर्गियों का पालन करते हैं तो उनमें अंडा कम होने के कई कारण, मान लीजिए कि आपके पोल्ट्री फार्म के बगल में कोई तेज आवाज हो गई, कोई क्रैकर्स या कोई पटाखे फोड़ दिया, तो इस तरीके से उनमें जो है एक थ्रेटिंग आ जाती, एक मतलब उनको डर उनके मन में आ जाता है और मुर्गियां स्ट्रेस में हो जाती हैं। तो मान लीजिए कि जैसे हमारा एवरेज ये होता है, एक वैज्ञानिक एवरेज ये है कि 1000 बर्ड्स अगर आपने लेयर की पाली है तो आपको प्रतिदिन 900 अंडे प्राप्त होते हैं। 1000 मुर्गियों से आपको प्रतिदिन 900 अंडे प्राप्त होंगे। एक अंडे आराम से 6 से 7 रुपए में बिक जाते हैं
2: जी।
6: तो आप 900 और गुड़े अगर 6 भी करें तो करीब 5400 का हमारा एक दिन का अंडा उत्पादन 1000 बर्ड्स का हो जाता है
2: जी।
6: लेकिन वहीं अगर कोई सॉक्स, मान लीजिए कि ट्रैक्टर चल गया हमारे पोल्ट्री फार्म के बगल में, थ्रेसिंग किसी ने करवा दी या किसी और कोई भी ऐसे मशीनरी चल गई जिसकी आवाज़ से मुर्गियां स्ट्रेस में आ गई, तो वो आपका कम से कम 20-30% लॉस हो जाता है। ये तो हुआ कि कोई इस तरीके का जो है आकस्मिक कोई परेशानी हो गई तो अंडा उत्पादन गिर जाता है। दूसरी चीज़ की अगर एक न्यूकास्टल डिजीज है, मुर्गियों का जो है एक रानीखेत बीमारी हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ से भी अंडे का उत्पादन कम हो जाता है। एक ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है, इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस। तो लेकिन हम जब समय समय पे जिस भी कंपनी से हमारा MOU होता है उनका वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, वो वैक्सीनेट करते रहते हैं और हमें फिर कुछ सिक्योरिटीज का ध्यान रखना होता है, फिर ऐसी कोई समस्याएं नहीं आती हैं
2: जी। और अब मैं एक और सवाल आपसे करूँगी कि मतलब अभी आपने बताया हमने ज़मीन का भी चयन कर लिया, तो मुझे अभी इस चर्चा से ये मतलब महसूस हो रहा है कि क्या हमें अपनी मुर्गियों का पालन ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ पे माहौल शांत हो, या क्योंकि हमारी मुर्गियाँ बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हैं।
6: हाँ, हमारी मुर्गियाँ बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हैं, तो उसके लिए जैसे हम अगर हमको आइडिया है कि हमें जैसे जैसे कहने का सेंस है कि मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में लाइट की कटौती खूब होती है
2: जी,
6: तो हम कैसे भी करके 24 घंटे पूरे टाइम हम अपने जो चिक्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उन्हें 24 घंटे लाइट नहीं प्रोवाइड करेंगे। पहले दिन से फर्स्ट ओल्ड चिक है, पहले ही दिन का बच्चा है, हमको कंपनी प्रोवाइड करवाया है, तो हम उसे 23 घंटे की ही लाइट उपलब्ध कराएंगे। पहले ही दिन हम उसे 1 घंटे की लाइट नहीं देंगे, मतलब 1 घंटे का प्रकाश नहीं रखेंगे, ताकि उन बच्चों को आदत हो जाए कि लाइट कभी भी जा सकती है। तो अगर पहले दिन की आदत होती है तो हमेशा बनी रहती है, तो उससे उनके उत्पादन में, उनके वजन के वृद्धि में कोई समस्या नहीं आती है।
2: मतलब इनको आदतन तौर पे माहौल की आदत डालने की आवश्यकता है।
6: हाँ, और मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन छूट रहा था कि अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके पास कभी भी कोई ट्रक आ सकती है, थ्रेसिंग हो सकती है, कोई भी आवाज आ सकती है, तो हम अपने फार्म पे थोड़े समय के लिए एक छोटा सा, एक स्लो मीडियम में थोड़ा सा म्यूजिक बजा के थोड़ी देर बजा के शांत कर लें, उसके लिए वो हैबिचुअल हो जाए, उनकी आदत हो जाए, तो कभी भी उसका एडवर्स इफेक्ट, उसका विपरीत प्रभाव नहीं आएगा।
2: ये बहुत जरूरी सवाल भी था कहीं ना कहीं। बहुत बहुत थैंक यू सर। और अब हम एक सवाल और आपसे करते हैं कि फार्मिंग की जो लाइव मॉनिटरी है वो कितनी उपयोगी है हमारे फार्मिंग के लिए।
6: फार्मिंग की लाइव मॉनिटरिंग भी जो है बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए कि आपने, आप स्वयं जो है, चूँकि आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, सपोज दैट आप या किसी कारण से आप रोज अपने जो है फार्मिंग की देखभाल नहीं कर पाते हैं और आप अपने यहाँ लेबर को पाल करके और अपना सारा कार्य उनसे करवाते हैं
2: जी।
6: तो आपके फार्म पर लेबर है और जिस कंपनी से आपका MOU हुआ है वहाँ के सुपरवाइजर उसकी विजिट करते रहते हैं। तो अगर आप स्वयं से लाइव मॉनिटरिंग करते हैं तो जो वहाँ पे जिस भी श्रमिक को आपने रखा है उसके दिमाग में ये होता है पहली चीज की तो कि हमारा मालिक देख रहा है, तो वो कार्य जैसे कि उसमें समस्या क्या होती है कि मुर्गियाँ तो कुछ बता नहीं पाएंगी, तो वो पूरा फीड नहीं देते हैं, या पानी पड़ा हुआ है तो कल का पानी पड़ा हुआ है, ताज़ा पानी नहीं चेंज, पानी को नहीं उन्होंने मतलब ताज़ा पानी की सप्लाई नहीं दी है, फीडर किसी में है किसी में, फीडर में दाना ही नहीं है
2: जी।
6: तो वो एक तो मतलब मानसिक तौर से रहता है कि हाँ कोई देख रहा है, तो वो, और दूसरी चीज़ है कि हम कहीं भी बैठ करके अपने फार्म की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक दिन भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो ये हमारा पूरा का पूरा बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, इसलिए लाइव मॉनिटरिंग बहुत ही जरूरी है
2: जी।
6: लेकिन ये उस केस में है जब आप अपने फार्म की रोज विजिट नहीं कर पा रहे हैं।
2: CCTV कैमरा इस पे कितना इफेक्टिव होगा।
6: हाँ, मैं सीसीटीवी कैमरे को ही उसी को माध्यम बना के कह रहा था। सीसीटीवी कैमरा बहुत ही बड़ा रोल है, और ये अच्छा होता है कि जब आपके फार्म पे सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं तो उसका एक्सेस जो कंपनी है, अगर हम उसको अलाउ कर दें कि उसके एक्सेस को जिस कंपनी से हमारा एमयू है अगर हम उसको भी दे देते हैं, तो हम एक आइडियल पोल्ट्री फार्म के रूप में देखे जाते हैं, और हमको हमारी सिबिल स्कोर और अच्छा बढ़ जाता है और बर्ड्स हमको और ज़्यादा मिल जाते हैं कंपनी से।
5: जी, और अब मैं बाकी के सवाल चाहूंगी कि हमारे इरफान शाह जी करें, क्योंकि बड़े देर से ये चुप हैं और इनकी आवाज नहीं आती है, तो हमको लगता है कि हम इनके साथ कुछ ज्यादती कर रहे हैं। क्यों सर?
1: क्योंकि मैम ने, आपने तो काफी सवाल भी कर लिया और सर ने बहुत अच्छी जानकारी भी दे दी। आशा करते हैं कि जो हमारे किसान भाई बहन इस समय खेत खलिहान कार्यक्रम में पोल्ट्री फार्म व्यवसाय और उसका उत्पादन कैसे लें और उस व्यवसाय को करके कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाएं, इस विषय पर जानकारी वो सुन रहे थे। आशा करते हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आइए अब जानकारी लेते हैं। सर, जानना चाहेंगे जोखिम और भविष्य की राह, जो एंटीबायोटिक की जो है वो सच क्या है? सर
6: देखिए, एक किसानों में या उपभोक्ताओं में एक ट्रेंड बन गया है
1: जी,
6: कि हम जो पोल्ट्री फार्म वाले होते हैं वो एंटीबायोटिक खूब खिलाते हैं
1: जी।
6: तो जो एंटीबायोटिक का रेसिड्यू है, जब उसे हम अंडे के रूप में लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, या हम उसके मांस को खाते हैं, उसके मीट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो एंटीबायोटिक उस बर्ड्स को वहाँ फार्म पे खिलाया गया था, उसके शरीर में उसका अवशेष बचा रह जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो है निर्भर करता है कि जो पोल्ट्री फार्म का ऑनर है, मालिक है, वो क्या एंटीबायोटिक, कैसी एंटीबायोटिक और कितने डोज में यूज कर रहा है
1: जी।
6: तो जोखिम तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम कहीं भी, इसीलिए जो कंपनी होती है वो अपने सुपरवाइजर रखती है और उन्हें एक निर्धारित डोज में ही एंटीबायोटिक देती है, तो कहीं ऐसा कोई नेक्सस नहीं है कि हार्मफुल इफेक्ट, क्योंकि कंपनी, अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक दे ही नहीं सकते, क्योंकि कंपनी का जो सुपरवाइजर है वो वेल एजुकेटेड है और उसी की देख रेख में जो है वो खिलाया जाता है
1: जी।
6: तो इसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
1: लेकिन सर, अगर इसकी बात हो रही तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ऐसे दवा या कुछ ऐसी चीज़ नहीं खिलाना चाहिए बिना सलाह के, मतलब?
6: हाँ, बिना सलाह के आपको कुछ भी खिलाना ही नहीं है। उसमें जैसे वैज्ञानिक दाना प्रबंधन के 5 नियम हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन अच्छा होना चाहिए, चूँकि जो एग का जो आउटर सरफेस होता है वो टोटल एकदम शुद्ध रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की सप्लाई अगर अच्छी नहीं करेंगे तो उसकी जो एग सेल होगी, जो अंडे की कवच होगी, वो मुलायम हो जाती है, जो सख्त होने की बजाय वो मुलायम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि टॉक्सिन बाइंडर का भी हम फार्म पे उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए कि थोड़ी सी भी नमी अगर लग गई हमारे जो पोल्ट्री फीड का, जो पोल्ट्री ग्रेन है या जो मुर्गियों का दाना है, थोड़ा सा भी नमी आ गई तो उसमें एक अफ्लाटॉक्सिन का नाम का फंगस बढ़ जाता है, तो वो फंगस यानी मॉल्ड जो होगा वो उस पूरे चारे को खराब करेगा, और मुर्गी जब उसको खाएगी तो उसके भी हेल्थ इश्यूज बनेगा। वो तो हम वहाँ पे टॉक्सिन बाइंडर का यूज करके उसके लिए बचाव करते हैं। और दाना खिलाने का सही समय हमने आपको बता ही दिया था कि हमें ठंडे मौसम सुबह में और शाम में खिलाना है फीडर की। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना होती है, जैसे जैसे मुर्गियों का उम्र बढ़ती जाती है, हम जो फीडर है और ड्रिंकर है, यानी जिसमें हम जिस पॉट में, जिस बर्तन में दाना खिलाते हैं या जिस ड्रिंकर में पानी पिलाते हैं, उसकी ऊंचाई मुर्गी के ऊंचाई के साथ साथ हमें बढ़ाते रहना चाहिए
1: जी।
6: जी,
1: अब सर जानना चाहेंगे, सर गर्मी का मौसम चल रहा है और इस समय सर हीट वेव स्ट्रोक जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो इस समय सर जो किसान भाई बहन जो पोल्ट्री फार्म किए हैं और व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें कि जिससे उनकी जो मुर्गी है वो सुरक्षित रखे, क्योंकि अभी इधर गर्मी का सीज़न जब चलता है तो बहुत सारी मुर्गी जो हैं वो मर जाती हैं।
6: देखिए, इसमें एक बहुत सही क्वेश्चन है आपका कि हमको कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन जो एक्सट्रीम वेदर, जो जैसे कि ज़्यादा टेम्परेचर, पता चला कि 38 से 40 42 डिग्री, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अभी एशिया का सबसे गर्म प्रदेश में हमारा उत्तर प्रदेश रहा और उत्तर प्रदेश का बांदा जिला जो है 48 डिग्री टेम्परेचर पे चला गया।
1: सर, बिल्कुल।
6: तो इस कंडीशन में किसान भाइयों को हमें गर्मियों से बचने के लिए बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें हम आपसे पहले भी चर्चा शायद हो गई है कि हम जूट के बोरे का या मोटे किसी पर्दे का अपने शेड के दोनों तरफ जो मतलब ओवर हैंगिंग है या जो दोनों किनारे होते हैं, तो वहाँ पे हम उसको टांग देंगे। कि डायरेक्ट जो है धूप के धूप से ब्लेंडर जो हवाएं हैं यानी लू है वो सीधे मुर्गियों को ना लगे उस जूट के बोरे से, और जूट के बोरे को हम पानी से जो है थोड़ा ठंडा रखें और स्प्रिंकलर का यूज करें और साफ पानी की जो है व्यवस्था पीने के ड्रिंकर में हमेशा पानी को बदलते रहें, उन्हें ठंडे पानी की जो है व्यवस्था रहे। दूसरा चीज है कि हम उनके वेंटिलेशन का ध्यान, अगर आपके शेड की चौड़ाई ज्यादा है तो हम एग्जॉस्ट फैन का यूज करें।
1: जी सर, अब आते हैं एक सवाल है सर, हमारे किसान भाई बहन जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को उनके मन में एक सवाल होगा सर, क्या सरकार द्वारा इस पर कोई सब्सिडी भी है?
6: हाँ, इस पर सब्सिडी जो है एक राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM के तहत जो है जिसमें आपको 25 से 50% तक की सब्सिडी मिल जाती है
1: जी।
6: और एक जो है इसके अलावा यानी कि एक NLM आपको सब्सिडी देता है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, उसमें आपको 25 से 50% तक की सब्सिडी है। दूसरी जो है गवर्नमेंट की स्कीम नाबार्ड की तरफ से आपको मिलती है, लेकिन इन दोनों स्कीम्स को लेने के लिए आपके पास कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं। जैसे आप किसी पोल्ट्री ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त हो, उस ट्रेनिंग सेंटर की मैं बात करूं तो बरेली में हमारे यहाँ कैरी है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पक्षी का जो है वो अनुसंधान केंद्र है, आप वहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जो है तमिलनाडु में हमारा इसका रिसर्च सेंटर है, किसी आपके अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो प्रशिक्षण का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपको कैसे योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो पहली शर्त तो ये है कि आप प्रशिक्षण लिए हों, उसका सर्टिफिकेट हो। दूसरी चीज़ है, जिस लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस लोन का 10% मार्जिन मनी आपके खाते में हो। तीसरी चीज़ ये है कि आप कितने बर्ड्स का पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहे हैं, उसका एक प्रपोजल आपके पास होना चाहिए, और वो प्रपोजल किसी भी कुक्कुट विशेषज्ञ द्वारा बनवाया हो गया हो या CA द्वारा बनवाया गया हो, ताकि आप बैंक मैनेजर को ये आश्वस्त करा सकें कि हम इतने बढ़ से और ये इस जो है तरीके से हम ये लोन दोबारा से आपका रीपे कर देंगे। नाबार्ड का स्कीम इतनी अच्छी है कि वो सीधे सब्सिडी आपके खाते में देती है, तो ये हमें नाबार्ड और NLM की जो सहायता है इसमें सबसे अच्छा शेड्यूल कास्ट को मतलब ये फायदा है कि उनको 45% तक की जो है छूट की अनुदान की व्यवस्था NLM और नाबार्ड के द्वारा मिल जाती है
1: जी।
6: तो लेकिन उसका पहली शर्त है कि आप प्रशिक्षित हों, प्रशिक्षित होने के साथ साथ 10% मार्जिन मनी आपके खाते में होनी चाहिए
1: जी।
6: और आपके मान लीजिए कि आपके पास फार्म की जमीन स्वयं की नहीं है, तो अगर आपने किसी की लीज पर भी जमीन ली है और 10 से 12 साल के लिए पट्टा करवाया है, तो उस कागज पे भी बैंक आपको लोन दे देगा
1: जी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके पास जमीन नहीं है
6: हाँ।
1: तो आप भी कर सकते हैं रीच लेके, मतलब उधार
6: हाँ,
1: लेके
6: हाँ,
1: तो आप
6: पट्टे की जमीन पे भी आप जो है वहां से भी आप लोन आपको मिल सकता है
1: जी। आप सर जानना चाहेंगे कि सर, क्योंकि समय तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अब जानना चाहेंगे सर चलते चलते हमारे किसान भाई बहनों को क्या आह्वान करना चाहते हैं इस रेडियो ज्ञान असली के माध्यम से?
6: मैं ये कहना चाहूँगा कि जो युवा हैं वो जो है इस अपने भविष्य का सृजन स्वयं करें, और जब भी व्यक्ति स्वयं सोचेगा कि मैं अपने भविष्य का सृजन स्वयं करूं, और हमेशा व्यक्ति के मन में राष्ट्रप्रेम होना चाहिए कि हम एक राष्ट्र का भी विकास कैसे कर, राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब हम अपने परिवार का विकास, अपने गांव का विकास करेंगे, और अपने गांव का और राष्ट्र का विकास या अपने गांव का विकास, स्वयं का विकास सबसे पहले स्वावलंबन की भावना आने से ही हो सकता है, और स्वावलंबी बनने के लिए ये एक कदम बहुत अच्छा है। किसान भाइयों को अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपना फोन नंबर भी
1: जी बिल्कुल हम चाहेंगे कि अपना टेलीफोन नंबर दूरभाष नंबर जरूर आप शेयर कर दें।
6: आप किसान भाई नोट कर लें मेरा मोबाइल नंबर, आप कभी भी जो है हमको फ़ोन कर सकते हैं, और मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा में यहीं अध्यापन के कार्य में रत हूँ, तो आप सीधे वहाँ भी संपर्क जो है हमारे विभागाध्यक्ष से मिल करके, और आप सीधे तौर से आप वहाँ से भी मिल सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा है 76070-67-423। एक बार किसान भाई दोबारा से फ़ोन नंबर सुन लें, 76070-67-423। डॉक्टर करुणेश कुमार दुबे, आप कभी भी जो है किसी भी कार्य दिवस में आकर श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में 2 बजे के बाद आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
1: जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और पोल्ट्री व्यवसाय और उसका प्रबंधन कैसे करें और उस विषय पर जानकारी देने के लिए सर आपको रेडियो ज्ञानस्थली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप दोस्तों और
6: धन्यवाद
1: सर आपको भी। और हमारे किसान भाई बहन अभी सुन रहे थे खेत खलिहान कार्यक्रम में पोल्ट्री व्यवसाय एवं उसका प्रबंधन कैसे करें इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर करुणेश कुमार दुबे सर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर LBS डिग्री कॉलेज गोंडा से। तो सर आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्त इरफान शाह को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए ज्ञानश्री रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
6: जी नमस्कार।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: दिलवा के चाहत हमर

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ

0: वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहां योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहां एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

और ब्याह के बाद गौना भी हो गया, लेकिन लोकगीतों की एक खासियत है, लोकगीत वही कहते हैं जो आम आदमी सोचता है, जो भोले आदमी सोचते हैं।

0: सैया मिले लड़कियाँ मैं का करूँ, सैया मिले लड़कियाँ मैं का करूँ। और ऐसे में अगर सैया नज़र चुरावे तो मैं का करूँ। पर आजकल जमाना कुछ और हो गया है, सैया मिले इंस्टाग्राम चलैया मैं का करूँ, सैया मिले मोबाइल चलैया मैं का करूँ। तो ये समस्या लेके आज आरजे बीना आप सभी के साथ मौजूद हैं शाम भोजपुरिया माँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम गोंडा मैसेज मसाला माँ आरजे बीना वाला माँ। कहा थे कि जब जागो तबे सवेरा है, लेकिन हमें तो लागत है कि जब आप सोच लियो कुछ बड़ा करे के तबे सवेरा है। केहू साथ दी केहू छलत रही। अब सवेरा होए से हर चीज़ तो सही नहीं हो सकत, लेकिन हाँ कहते कि केहू साथ दे केहू छलत रही, केहू खुश होई तो केहू जलत रही। ई जिंदगी है यही लेखा चलत रही, दुख सुख ता आवत जात रही, कबो हसाई तो कबो रवावत रही, कबो दिन चढ़ी तो कबो शाम ढली। ई जिंदगी हा एकर लेखा ऐसने चलत रही। जे अपने आप का आपन समझ के भी पराया हुई, बहुत कुछ जिंदगी मा फिर नया हुई, केहू धधाई केहू हाथ मिलत रही। ई जिंदगी हा यही लेखा चलत रही। अनहरियां बा ता अजोरो हुई, ई रतिया मा एक दिन भोरो हुई, केहू सोहाई केहू आँख में हलत रही। ई जिंदगी हा एकर लेखा यूं ही चलत रही। और इसने इहा आपके रेडियो 89.6 FM इहा गोंडा शहर के धड़कन इहू के धड़कन ऐसे सदियों चलत रही। तो आप सभी के स्वागत है आर के श्रीवास्तव जी गोंडा शहर से, मोहम्मद अनवर जी शुभ संध्या आपके भी स्वागत है, धर्मेंद्र मोहन आवाज़ विकास से आपके भी स्वागत, सब श्रोता मतलब रेडियो श्रोता के आर जे बिना स्वागत करती हैं। आप सभी इनका बता दी कि भाई आज देखत देखत मौसम के जो रुख है बदलत नज़र आवत है, नवतपा भले चलत है लेकिन हमें तो तपन बिल्कुल नहीं महसूस भे आज, और हल्की हल्की पुरवैया वाली जो हवा चलती गोंडा शहर में एका महसूस करे के बाद लगत है ना कि कितनो अनुकूल परिस्थिति ना रहे, पर ईश्वर जो है ना वो कोई भी स्थिति कोई भी दिन कोई भी तारीख माँ आपके लिए कुछ भी बदल सकत है, बस वो ईश्वर है। तो आप सभी से जानना चाहते कि आप सभी के का हाल है और आज के शाम के तैयारी चाय से भय या नहीं, अगर भय है तो फिर आगे बात के तैयारी भी शुरू कर लें। कहे कि बातन बातन में ये बात तो एकदम याद आ चुकी है कि हम सभी का आज के शाम ना सिर्फ भोजपुरी गाना अपने पसंद के सुने के बल्कि आज के शाम हमें सबका यादगार भी बनावे के। अरे अब पूछो थे न काहे, अब एक रे पीछे कभी इतिहास आपका बताए दे कि आज के दिन काहे खास मनाए के। शुभ संध्या बंटी गुर्जर जी और रवा के का हाल है। वैसे तो आपका अवधि और भोजपुरी भाषा ना आवत हुई, पर हाँ आपको हिंदी भाषा में बता दे कि आज भोजपुरी शाम है और ये भोजपुरी शाम में हम सब अवधी अंदाज में और भोजपुरी अंदाज में यानी कि यूपी बिहार के स्टाइल में बात करी थे और भोजपुरी गाना सुनी थे, और यही से हमारे सबके संस्कृति का दूर दूर तक लोगन का सुने के मौका मिला था। तो चलो एगो और बढ़िया सा धमाकेदार गाना सुनाए दी आप सभी का, और आप सभी का बताए दी ये काहे आज के शाम का खास और मतलब यादगार बना रखे। तो अभी सोचे कुछ देर, लेकिन सोच पे विराम नहीं लगे चाहिए, सोच माँ बॉनविटा के जो हम कहते हैं ना शक्ति बढ़ाए के एक आगे बढ़ावे के चाहिए। तो चलो जल्दी से सुना जाए एक बढ़िया सा गाना हमरे सबके भोजपुरी इंडस्ट्री से।
1: डिड गानो मोबाइल।

के बाद ईद मनाई जाती, लेकिन आज है खास त्यौहार बकरीद। तो सभन का, हमरे सभन देशवासियन का बकरीद के बहुत बहुत शुभकामना। और आज सुबह के नमाज सदा करे के बाद माँ बकरीद के जो त्यौहार है वो धूम धड़ाके से मनावा जात है, और बाजार माँ रौनक अलग तरह के दिखात है। वैसे आप सभन का बताई कि आज के खास मौका जो है वो सिर्फ एक के लिए नहीं है, सबके लिए खास है। कहे कि बकरीद एगो बड़ा त्यौहार माना जाता, और एकरे पीछे के कहानी ये गाना के बाद बताई।

सबन के वापस से स्वागत है। और आज आप सबन का बताई कि आज बहुत ही बड़ा त्यौहार है, जैसे कि आप सबन का बताया आज बकरीद है और आज खुशियन के दिनवा है आए। गली गली मुस्कान समाए, चमकत अंगना महकत रोटी, मिलत सबय का प्रेम के थाती, नन्हा मुन्ना पहिरे कुर्ता, अम्मी बनावत सेवई मीठा, अब्बू बोले मोहब्बत बाँटा, रूठल दिलन का गले लगावा, मस्जिद माँ उठी दुआ के धुन, अमन चैन के भरगे गगन, न बैर रहे न मनमा दूरी, इहे त बकरीद के मुराद है पूरी। सभे संग मिलके हसत हैं, एक दूजे के घरवा जात हैं, ईद कहे इंसान बना, नेकी के जगमा रोशनी करा, गरीबन का भी याद करा, आओ थोड़ा आपन प्यार याद करा। बकरीद के असली बात यह है, मोहब्बत कुर्बानी और जज्बात यह है। आज जिसन की आप सबन का पता है बकरीद है और ईद मुबारक आप सबन का। और आज के दिन के जो उन कहानी है वो आप सबन का बतावा चाहिए थे कि देखा हर त्यौहार के पीछे कोनो ना कोनो कहानी ज़रूर होती, और आज भी वह कहानी के साथ हैं हम आप सबन के बीच में। हर त्यौहार एक दूसरे से मिले के मौका दियत है, हर त्यौहार ई बतावत है कि कैसे हमारे सबके इतिहास में अलग अलग लोग कुर्बानी दे के अपने अपने समाज का बचाएं। आज के त्यौहार का ईद अल अजहा यानी कि बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। ई जो पर्व है ई अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास, आज्ञाकारिता, सर्वोच्च आत्मत्याग के एक जीवंत प्रतीक है। यूं तो कहा जाए तो एकर शुरुआत भरी 1500 साल पहले, लेकिन बकरीद त्यौहार से जुड़ी अगर हम सब आगमन के बात करी तो लगभग 4000 पहले नहीं अरब माँ एकर जो कहा था ना शुरुआत शुरू हो गई, यानी कि ई त्यौहार मनावे के। एक पीछे के कहानी भी अलग अलग जगह अलग अलग बताई जाती है, लेकिन जो बहुत प्रसिद्ध कहानी हम आप सबका बतावा चाहिए थे कि बकरीद हमारे सबके देश के एगो प्रमुख त्यौहार माना जाता है। अल्लाह के प्रति विश्वास, आत्मत्याग, एक जो समर्पण के भावना है वो दिखाई जाती। बकरीद के दिन सब समुदाय खास तौर पे मुस्लिम समुदाय के लोग नया कपड़ा पहनते हैं, मस्जिद जाते हैं, ईदगाह में विशेष नमाज अदा करते हैं। इसके पीछे के जो कहानी है वो का समझें कि एक दूसरे से मिले के वो मौका होते हैं। बहुत दिन बाद भी लोग ये त्यौहार मनावे आवत हैं, जे साल भर पे नहीं मिले होते लेकिन त्यौहार पे मिल लिए थे और एक दूसरे का मुबारकबाद दिए थे। नमाज के बाद जो आर्थिक रूप से लोग सक्षम होते हैं, लोगों के मदद कर सकते हैं, वह बकरी का कुर्बानी दिए थे और एक जो मांस होते हैं ओका गरीबन माँ और रिश्तेदारों में बांट दिए थे। सिर्फ तीसरा हिस्सा जो होते हैं ओका खुद रखते हैं। ये समाज के तबका त्यौहार खुशियन और दावतन के लिए मनावा जाता है। आपका जानकर हैरानी हुई कि बकरीद की शुरुआत आए वाले जो कहा जाता है ना कि जो समय है और जो बीत चुका समय है ये दोनों ही समय का मिला लिया जाए तो इहू से कई साल पहले भरी। और इतिहास के अगर पन्ना पढ़ा जाए या पलटा जाए तो कहते हैं कि बकरीद या ईद उल अजहा के शुरुआत पैगंबर हजरत इब्राहिम के दौर में आज से लगभग 4000 साल पहले भरी। ये त्यौहार मुख्य रूप से अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास के है। तो जब विश्वास के बात होती तो हम सब विश्वास के कहानियाँ सुना जाता है, फिर भी विश्वास के जो डोर है उसका असलियत में समझ नहीं पावा जाता। तो ये बात पे हमेशा ध्यान रखिए कि हमें सबका त्यौहार तो हर मनावे चाहिए, लेकिन त्यौहार मनावे से ज़्यादा ये बात पे हमें सबका जोर दिया चाहिए कि त्यौहार कहाँ का चाहत है।
अगर त्योहार के नियत समझ लिया जाए ना, तो आस पास में बहुत सारी नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाए। जो पॉजिटिविटी सिर्फ त्योहार आए पे आवत थी, वो पूरे साल बनी रहे। क्या है कि हमने सबके का आदत होती कि मतलब जब त्योहार आवत है तब हम सब पूरे दिल के रंजिश भुरावा जाते हैं, लेकिन जैसे त्योहार गए फिर वापस अपने काम में और जो दिल में जो भावना रहती फिर से जागृत हो जाते। ना सिर्फ त्योहार में वो भावना जो हमेशा त्योहार में आपके जागृत थी, यानी कि प्रेम के भावना, समर्पण के भावना, खुशी के भावना, सब कुछ भूल के जिंदगी जिए के भावना, वो हमेशा से जगा के रखनी चाहिए। अनुष्का शुभ संध्या। बिल्कुल, हम तो मस्त और स्वस्थ बानी। आप बताइए आपके क्या हाल है। थोड़ा थोड़ा कम ही समझ में आवत रहो बानी। बंटी जी क्या बात है, आपके तो अंदाज बड़ा खास है। आशु गुड इवनिंग और रवा चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एगो खास गाने के बारे में और बनारस से निकले एगो गीत के बारे में बात, जो ने के आजकल बड़ा चर्चा है, बड़ा चर्चा है, लेकिन गीत आज के ना हुए, बड़ा पुराना गीत है। फिलहाल दो पंक्ति आप सबका सुनाए दी थे, और बाद में आप सबका अच्छा लगी कि हाँ आरजे बिना ये गीत सुनाए दी, तो एक बाद आप सबके जो ने भावना है वो और अच्छी हो जाएगी। और एक पीछे के जो कहानी है वो आप सबन का ज्यादा समझ में आए जाएगी। वैसे ही गाना हम अपने भोजपुरिया शाम में कई बार प्ले किए ने, लेकिन आज हम सुनाए के एक साथ के जो कहानी है वो सुनावा चाहिए थे, तो ध्यान से सुनिए। आप सबन का पता है कि बहुत सारे ऐसा बॉलीवुड गाना गाए वाले सिंगर हैं, जिनकर जो है इतिहास, या कहा जाए कि जिनके जो कहा जाता ना कि संगीत के जगत में प्रख्यात प्रसिद्धि है, वो प्रसिद्धि की उसे कम नहीं हो सकती। और यह बात का समझावत हुए हम आप सबन का रेखा भारद्वाज के गाना के बारे में बात करना चाहते हैं, जो उनकी कोक स्टूडियो से रिलीज भवा है। वैसे तो हमारे सबके भोजपुरी भाषा के गाना है, तो ओकर कहानी और साथ में होगी दोनों सुनावा चाहते हैं। पहले तो ये गाना हमारे आवाज में सुने और बतावे कि ये गाना है कैसन। वैसे तो हमें ज्यादा आवत नहीं, पर हाँ प्रयास आप सबन के लिए हम जरूर करब कि ये गाना आप सबन का कैसन ला। ठीक है,

अब तो ये गाना सुन के सबको पता चल गई हुई कि अरे ये तो बड़ा प्रसिद्ध गाना है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमो। और एक पीछे के कहानी भी बहुत सारे लोग आधी ती ही सुन ले हुई है। पहले तो आप सबन का हम ये गीत के बारे में बतावा चाहिए थे, एक बारे में इतिहास भी बतावा चाहिए थे। और आप सबन का ये बात पे बड़ा गर्व हुई कि हम सब अपने संस्कृति का भूले के प्रयास फुल कीन जात है, लेकिन सच बताई ना कि हमारे सबके जो न संस्कृति है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्कृति मानी जाती। काहे कि हर जगह एक अलग कहानी, एक अलग प्रेम के दुनिया बसे थी। और आज वह प्रेम के दुनिया के बात करे वाली है हम आपसे कि अक्सर हमें सबका ये सुने का मिलत है कि भोजपुरी गाना अश्लील होता है, भोजपुरी गाना डबल मीनिंग वाला होता है। लेकिन हाँ, ई माँ डबल मीनिंग तो है, लेकिन ये गाना ई बतावत है कि केकरे प्यार माँ कितनी कुर्बानी है। तो आज आप सबन का बताया दी कि वो गाना जोने का कोक स्टूडियो जब रिलीज किया तो पूरे दुनिया में गावा जाए लग, लेकिन आज के कई साल पहले जब ये गावा गए तो एक कोई शायद सुनेस भी नहीं। तो आप सबन का बताइए कि आजकल हर जगह, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोनो सोशल मीडिया जगह है, जहाँ जहाँ आप सबके अकाउंट बना वो हर जगह दिख जाए, लेकिन आप सब इनका क्या पता है कि सजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सोन के लबल में। कचौड़ी गली बनारस के एगो प्रसिद्ध गली है और वह गली में एगो तबाय फरहाद रही और उन्हीं के प्यार के ई एगो छोटा सा कतरा है ई गाना। पूर्वांचल यानी कि बनारस के क्षेत्र में लोक दादरा शैली का ई गाना है और एका कजरी गीतों कहा जाता है। ये गीत बनारस घराने के गायकी का प्रभाव माना जाता है। आपका बताइए कि संगीत के क्षेत्र में भी बनारस काफ़ी आगे है, जितना कि आपका हुआ घूमे में मजावत है। ये गीत के कड़ी जोड़त है एगो एंग्लो बर्मी वार के युद्ध में 1824 और 1826 के दौरान ई कहानी के जो कहा था ना दृश्य दिखावा गए। ई जंग जो है अंग्रेज भारत के कई इलाका के मजदूर सैनिक और आम जो आदमी हैं उन्हें सका बुलाए के सेना से अपने अपने सेना के माध्यम से लड़ाई। अगर भल पूछा जाए तो ये लड़ाई अंग्रेजन के लिए हमारे देश के बहुत सारे जवान लड़िंदा, मतलब अंग्रेज के तरफ से। और यह युद्ध में बहुत पुरुष भेजा गए रहे रंगून। युद्ध पर भेजे के वजह से वहाँ लड़ाई में सबके जो पत्नी लोग रही सब अपने पति का इंतजार करते रहे के गए। अब पत्नी के जो दर्द रहा वो तो गली में दिखत रहा, लेकिन वही बनारस के एगो तवायफ रही वो तो पत्नी ना रही, लेकिन हाँ केहू से प्रेम तो जरूर करत रही। और वही तवायफ के प्रेमी भी एगो क्रांतिकारी बन के हुआ से लड़े गए रहे और उन्हीं के प्रेमी के लिए ये कहानी है। आप सब उनका बताइए कि कई साल पहले एक जमाना रहा जब गायकी के लिए वैसे कोई सिंगर नहीं होते रहे, देश के तवायफ लोग जो होते रही वही सब गाना गावत रही, मतलब गायकी का अच्छी नजर से नहीं देखा जाता रहा, संगीत का अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, संगीत यानी कि मनोरंजन, और मनोरंजन तो सिर्फ तवायफ कह सकती थी। शब्द कड़वा है लेकिन ये सच है, इतिहास कहे तो उही तवायफ के लिखा ये गाना। उनके नाम हम आपका थोड़ी देर में बताए, कहे कि आप भी सोचें कि तवायफ के नाम का रहा। और आप सब उनका बताइए कि वो तवायफ ई गाना के एक एक पंक्ति में अपने दर्द का छलकाई। उन्हें जब पता चला कि उनके प्रेमी के हुआ मौत हो चुकी है तो वे कहीं कि जितने भी जो लड़े वाले जवान रहे उन्हें सका सबसे पहले मिर्जापुर लेके गवा गए, मिर्जापुर ले जाए के हुआ उन्हें सका रखा गया और मिर्जापुर से जो जहाज से उन्हें सका रंगून लड़े के लिए ले गवा गए। तो यह मिर्जापुर से गए जहाजिया, तो मिर्जापुर से जहाज सब लड़का लोगन का लेके गए रही लड़ाई के लिए। तो मिर्जापुर भैले गुलजार हो, कचौड़ी के लिए सुन के लो बलमा, जितने भी बलमा रहे उन सब के लिए वह गाना लिख दी
कि सब चला गए, कचौड़ी के लिए सोन हो गए और हुआ जाए कि मिर्जापुर का सब गुलजार कह दें। तो चला असली माई गाना सुन लिया जाए। हमारे आवाज़ में तो आपका सुन के इतना मज़ा ना आवा हुई, लेकिन हाँ ये गाना कोक स्टूडियो की पेशकश है। और आप सबन का बताए दी कि रेखा भारद्वाज हिंदी माध्यम के बड़ा गाना गाई हैं, लेकिन ये गाना सुने के बाद आपका लगी कि हमारे सबके भाषा में जो स्वीटनेस है वो हर सिंगर के आवाज़ में छलके जाए।

0: on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe.
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन।

0: बिल के मूल बकाए में 25% तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय चरण 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 में सरचार्ज में 100% छूट के अतिरिक्त 31 मार्च 2025 तक के विद्युत बिल के मूल बकाए में 20% तक की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार तीसरे चरण 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक में पंजीकरण कराने पर सरचार्ज में 100% छूट के अलावा 31 मार्च 2025 तक के विद्युत बिल के मूल बकाए में 15% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी विद्युत उपकेंद्र, कैंप, जनसेवा केंद्र व ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ₹2,000 देकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद बकाया भुगतान के लिए 3 विकल्प यानी एक मुश्त या फिर मासिक किश्त 750 व 500 रूपए होंगे। साथ ही योजना में विद्युत चोरी के मामलों में भी निर्धारण धनराशि में क्रमशः 50, 45 व 40% की छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कैंप में संपर्क करें।
1: मैं राधेश्याम भास्कर, अधिशासी अभियंता विद्युत कोंडा, समस्त सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं से यह अपील करता हूं कि माह दिसंबर 2025 के प्रथम दिन से लागू होने वाली विद्युत बिल राहत योजना के प्रथम चरण में ही 100% पंजीकरण कराकर सबसे अधिक छूट का लाभ प्राप्त करें एवं अपने बकाए बिजली बिल से छुटकारा पाएं, ताकि आपको बिना किसी व्यवधान के विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती रहे। योजना में पंजीकरण नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं का अथवा पंजीकरण कराने के उपरांत पैसा न जमा करने वाले उपभोक्ताओं से बकाए विद्युत बिल की प्रतिपूर्ति नियमानुसार करी जाएगी, जिसमें आपको पूर्ण बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ेगा। अतः आपसे अपील है कि इस आकर्षक योजना का लाभ उठाएं और 100% रजिस्ट्रेशन कराएं। योजना में पंजीकरण नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं अथवा पंजीकरण कराकर छूट का लाभ न प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से पूर्ण बकाए की धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी एवं उनको छूट से वंचित कर दिया जाएगा। अतः आपसे अपील है कि इस छूट का पूर्ण लाभ उठाएं और लाभान्वित होएं। धन्यवाद।
0: आप भी लाभ उठाइए बिजली बिल राहत योजना का और ये जिम्मेदार नागरिक।
2: सो वापस से आरजी बीना आए गए बानी आप सबन के लगे अपने दिल के बात करें। तो भाई सबन के स्वागत है और आप सबन का पता है समय हो ही चुका है आप सबके फरमाइशी भोजपुरी गाना सुने गए। तो फिलहाल देखिए किकर किकर फरमाइश का आए ही। शुभ संध्या धर्मेंद्र मोहन जी और रितिन सिंह, शुभ संध्या का हाल है। रोजले शुभ संध्या। मनी शर्मा हो जिकरे नाम में ही पैसा है तो इंसान सोचो कितना खुश हुई। तो चला अपनी अपनी फरमाइश करे के समय हो चुका। फिलहाल बहुत सारे लिसनर दिखाई नहीं दिए थे जिकि भोजपुरी अंदाज में बड़ा खास है, जिकर शायरी बड़ी खास होती भोजपुरी में। फिलहाल आप सबन के शायरी में तो अभी थोड़ा सा मतलब विलंब मालूम पड़त है, लेकिन हमें अपने आवाज़ में एक शायरी पढ़े में बिल्कुल भी मतलब हिचक नहीं है, काहे कि बहुत सारे हमारे लिसनर लोग हैं जिका भोजपुरी शायरी लिखे के बड़ा शौक है और वह हमें इंस्टाग्राम पे भेज देते, तो उनके सबके शायरी पढ़े के समय है फिलहाल। तो चला आप सबन के लिए उनके शायरी पढ़ दी जल्दी से, ठीक है? ध्यान से सुनिए। दिल थाम के कि कहा थे कि तोरा खातिर चांद तारा तोड़ देती, तोरा खातिर चांद तारा तोड़ देती, बाकी मम्मी कहली कि पहले अपन कमरा साफ करा तब जाए के तोड़ा, नहीं तो हम सब कुछ तोड़ देती। तो ये है आजकल के मॉडर्न जमाने के लड़का लोग, जो चांद तारा तोड़े के वादा तो करते हैं लेकिन तोड़े के लिए तैयार तो बिल्कुल नहीं है। और कहते हैं कि तोहरा नैनन में इतना जादू बा, तोरा नैनन मा इतना जादू बा कि देखते ही दिल घायल हो जाला, तोरा नैनन मा इतना जादू बा कि देखते ही दिल घायल हो जाला, बाकी जब मोबाइल मा बैलेंस खत्म हो जाला तो वह दिल कंगाल हो जाला। आहा, दिल के दर्द बिल्कुल ये मैसेज मा यानी कि इनके जो उनका था ना शायरी मा छलकत है। रोवा हंसी तो बड़ा जान ले बाबा, आहा क्योंकि तारीफ करे को इतना खतरनाक अंदाज में तो बिल्कुल कह सकते हैं। रोवा हंसी तो बड़ा जान ले बाबा, दिलवा के डायरेक्ट घायल करेला, बाकी जब ऑनलाइन रह के रिप्लाई ना आवे ता खून खौलाई के दिखाई देला, मतलब जब रिप्लाई आवत है तब तो हंसी अच्छी लागत है, लेकिन वह रिप्लाई जब नहीं आवत है तब करेजा छलनी हो जात है, ऐसा मालूम पड़त है। तो चला आगे बढ़त बढ़त एगो भोजपुरी गाना सुन लें जाए और

सबका बताई दी कि अभी राजू के फरमाइश के गाना हम सब सुने जाए थे, बहुत ही प्यारा सा गाना है। फिलहाल हम ये गाना सुन के बड़ी हैरान भैरन जब ये गाना हम सुने। ये हमें बताएं कि बारिश बन जाना एकर भोजपुरी वर्जन है, तो सुन के बताएं कि कैसन है गाना।

ई बताई कि बारिश बन जईहा ई गाना भोजपुरी वर्जन में सुने के बाद कितना मजा आवा। फिलहाल अब बारी है श्री देवी जी के फरमाइश के गाना, उन्हें सैड सॉन्ग सुने रहा तो एक सैड सॉन्ग जिसका सुने के बाद हमें बड़ा अच्छा लागत है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तो सुना जाए गुलरी के फुलवा, एक सुन के बताई कैसन है। ऐसे सैड सॉन्ग अभी तो हमारे प्लेलिस्ट में आए रहा, फिलहाल बताई हैं कि कैसन है।

दीक्षा की फरमाइश पे ये प्यारा सा गाना आप लोग के लिए। तो फिलहाल आप सुन रहे हैं दीक्षा की फरमाइश का गाना बलमुआ हो, और इसके बाद हम सुनेंगे गाना धरबंगिया भौजी, और ये फरमाइश है हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की।

शुभ संध्या नागेश्वर जी, अनुष्का, इम्तियाज अहमद जी, शुभ संध्या, और आप सभी का अगेन बकरीद के बहुत बहुत शुभकामना। और गम्मा हंसे वाले का रुलावा ना जाला, लहरन पे पानी मिलावा ना जाला, और होए वाले खुद से अपने होई जात हैं, केहू के कही के अपन बनावा ना जाला।

शौक तो बहुत सारे लड़का लोगन के रहते है। अगर केहू के बड़ा भाई होते और भाई के अगर साली होते तो सबका ही उम्मीद रहते कि हमरो दाल कहूँ गल जात तो ठीक रहा। चला अनुष्का के फरमाइश के सुना जाए गाना टोना लाग जाए। आहा क्या बात है।

अब बारी है सरकारी दुल्हा के, जिकर फरमाइश है निशा जी के। चला एंजॉय करा जाए निशा के फरमाइश के गाना सरकारी दुल्हा।

0: तो दहेज के गाना सुने के बाद अब देखा के का दहेज चाहिए कि ना चाहिए। फिलहाल अगला गाना सुने के बारी हो चुकी है और अगला गाना के फरमाइश है नागेश्वर जी के। चला सुना जाए कौन गाना रवा के सुने के बाद। फिलहाल नागेश्वर जी से पहले फरमाइश क्यों के आए हैं। हाँ हाँ भाई, चला सुना जाए गाना के फरमाइश है इम्तियाज़ जी के। चला सुना जाए सबसे पहले, तो चला सुना जाए कौन गाना के ये फरमाइश के हैं। दहेज में लगाए बेचारे डंडा। तो चला सुना जाए ये गाना इम्तियाज के फरमाइश के।
1: भोजपुरी में घिस रहा है।

गाना सुने के बाद अब आज जैसन की हर तरह के गाना सुने का मिलत है, ना सिर्फ भोजपुरी बल्कि भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड में भोजपुरी के रंग भी देखे का मिलते हैं। अब गाना सुने के बारी है ऊ जेका सुने के बाद सबके धड़कन कही कि का सुने के मिलगा, तो चला मुमताज़ अंसारी जी के फरमाइश के गाना सुना जाए, दर्द कितना प्रीतिया में होला।

नागेश्वर जी के गाना भाई हरियाणवी है, तो हरियाणवी गाना के आज फरमाइश नहीं होते, तो भोजपुरी गाना के ज़रूर फरमाइश करें नागेश्वर जी अगर सुने कोई। तो अगला गाना सुना जाए पिया के गांव फिल्म से, बड़ी प्यारी फिल्म है और यह फिल्म का गाना आप सबन के लिए। बॉलीवुड से जब भोजपुरी फिल्म बने थे तो बहुत ही अलग होती, तो आँख में सुरतिया तोहरी माथे पे विपतिया, और ये गाना है पिया के गांव 1985 के फिल्म, और जेकर फरमाइश है शशि जी के, शशि जी अपने पसंद के गाना ज़रूर सुने।

शुभ संध्या जुगल किशोर जी, और का हाल है। और अब चलत चलत आखिरी गाना बजावे के भी समय हो चुका है, और जैसे कि शाम ढलत है तो जाए के एगो पैगाम मिल जाता है, लेकिन जब देखा जाए कि जाए की घड़ी नज़दीक आवत है तो मन कहता है कि कुछ देर और रुक जाए। तो चला एगो गाना आप सभी का सुनाई दी, जो उन गाना है नागेश्वर जी के पसंद के, वे सुना चाहते हैं अब भोजपुरी गाना, दिलवा माँ घर तू बनाए के उड़ जाई वो ए मैना।

0: और ये के साथ आरजे विनता दिए इजाजत। और भाई चलत चलत दुई लाइन अब गाना बजावे का पड़े, लेकिन नहीं अब तो खत्म हो चुका है आप सबन के फरमाइश और भोजपुरी फरमाइश के बाद अब आप सब सुने अपने पसंद के गाना गीत आपके नाम से अपने आरजे सिंपल के संगे। तो कल फिर मिला जाए आप सबन के साथ बॉलीवुडिया अंदाज माँ और करे बहुत सारी बात, लेकिन तब तक के लिए सुनत रहा बजावत रहा आपन फेवरेट
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।

आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। सो नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना डोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका है, जज्बात आपके हैं, गीत आपका है, ये रेडियो 89.6 एफएम आपका है और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है। सो आज पब्लिक क्या कह रही है, आखिर आज सबके दिलों में कौन से जज्बात उमड़ रहे हैं और आखिर क्या हलचल हो रही है, वो मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन इसके पहले स्वागत करते हैं इम्तियाज अहमद का गोंडा से, नागेश्वर धाकर, जुगल किशोर वर्मा जीएमपी से, अनुष्का श्रावस्ती से, आयुष तिवारी गोंडा से और इतना ही नहीं, सुरेश कुमार जी चौक से, निपर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, शशि सिंह जी गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से आप सभी का स्वागत है, रितिन सिंह, मनीष शर्मा, स्टे ट्यून्ड और एंजॉय करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। सो फरमाइश हमारे पास में पहली पहली पहली है जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से, और जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे आए हैं। सो एंजॉय करेंगे लता जी और किशोर कुमार की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा जग्गू दादा की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी और अक्सर कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। Stay tuned.

जब इश्क प्यार मोहब्बत हो जाता है तो जिससे इश्क प्यार मोहब्बत होता है उसके चेहरे से तो वैसे भी नजर नहीं हटती है कुछ दिनों तक। नज़ारे देखने का मन नहीं करता है और फिर कुछ दिनों बाद बाहर के नज़ारे सबको सुहावने लगने लगते हैं और फिर चेहरे से नज़र इस तरह हटने लगती है कि क्या ही बताऊं। मैं जस्ट मजाक कर रही हूं दोस्तों, बस मुझे गाने की टांग खींचनी थी। हर एक केस में ऐसा नहीं होता है, किसी किसी के लिए तो ऐसा भी होता है कि वो जिंदगी भर एक ही चेहरे को अपना मान लेता है और सच में उसी चेहरे से उसकी नज़र नहीं हटती, लेकिन वो चेहरा लकी वन होता है, यू नो ना। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले स्वागत है आपका निशा पटेल नगर गोंडा से। अगली फरमाइश है अनुष्का की श्रावस्ती से, उनको सुनना है गाना लखा बंजारा। सो एंजॉय करते हैं ये देहाती सुपर डूप

प्यारे से आज वसुंधरा गले में बाहें डाल करके बोली, ए लखा दूर न जा मेरे पास आ। और क्या बोली है नाच के,

ओहो हमने एंजॉय किया है ये देहाती सुपर डुपर डुपर डुपर हिट गाना लखा ले चल अपनी नागरिया लखा। ओह माय गॉड हमने एंजॉय किया है अनुष्का की फरमाइश पर ये गाना जो कि है श्रावस्ती से। अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की। नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई। आए हाय किसकी नजर झुकी झुकी कमाल कर गई है। नागेश्वर धाकड़ मीन्स नागू बाबा। सो नागू बाबा की फरमाइश पर एंजॉय करते हैं अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में राजा मूवी का ये गाना हमारे नागू बाबा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। आई लव दिस सॉन्ग।

फिर से मैंने भी सोचा था, बीच में मुझे एक सोच ऐसी हुई थी दोस्तों कि मैं भी यही सोचूं, लेकिन फिर मेरी गलती थी, सिर्फ गलती थी। जरा फिर से कहना, कभी नहीं कहना।

किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में हमारे नागू बाबा मींस नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाली डिमांड की तरफ, लेकिन इसके पहले मुमताज अंसारी जी गोंडा से आपका स्वागत है, चांदनी गोंडा से आपका स्वागत है, नव्या गोंडा से स्टे ट्यून एंड वेलकम। उसी के साथ में मुस्तफा जी सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से आप दोनों का भी स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल। मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, मुकेश यादव गोंडा से स्टे ट्यून्ड। और अगली तो फरमाइश हमारे पास में थी दोस्तों आयुष तिवारी की गोंडा से, लेकिन आयुष तिवारी को गोंडा से सुनना था गाना कि पिया जी के मुस्की हमरा लागे रा बेजोड़े सखी। तो अगर आपको पिया जी के मुस्की बेजोड़ लगता है ना, तो आपको ये गाना गोंडा मैसेज मसाला में 6 बजे से लेके 7:45 के अंदर सुन लेना था। अब तो 7:45 के बाद में आपका भोजपुरी या गाना तो नहीं बजने वाला। तो आयुष तिवारी फ्रॉम गोंडा, आप भोजपुरी गाने की जगह पंजाबी, हरियाणवी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती किसी भी गाने की आप डिमांड कर सकते हैं और आपकी फरमाइश को जल्दी से जल्दी प्ले किया जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हाउ स्वीट नो। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से, और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना किसी और के नाम की मेहंदी हाथों में ना अपने रचना आए हाय। सो एंजॉय करते हैं अगम कुमार निगम का फिर बेवफाई का ये वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारी निशा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

कभी किसी और से प्यार न करना। अगम कुमार निगम का ये गाना हमें एंजॉय किया है निशा की फरमाइश पर, जो की है पटेल नगर गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले मेरे एक ज्ञानी लिस्नर का कहना है, बहुत ज्ञान है इसके पास में। इनका कहना है कि कोई भी चीज अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे वक्त और बचपन, और पास आई हुई चीज मेरे हिसाब से आपकी अपनी अर्जिस आर्जिस सिंपल के हिसाब से अगर आपके पास जान भी आ जाए ना, तो आपको उसमें भी दाग नजर आने लगते हैं। इसीलिए तो जब वो चांद फिर से आपसे दूर चला जाता है, फिर आपके लिए वो वैल्यूएबल हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब चिड़िया को तो अपना काम करना था, उसने तो अपना काम कर लिया, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। चिड़िया के बारे में तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। सो फिलहाल चले एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है मुकेश यादव की गोंडा से, और मुकेश यादव को गोंडा से सुनना है गाना आशिकी में तेरी। सो एंजॉय करते हैं ये हिमेश रेशमिया और ओ माय गॉड रानू मंडल का ये गाना मुकेश यादव की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सुमित मिश्रा और धर्मेंद्र मोहन, आवास विकास गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

हमने एंजॉय किया है मुकेश यादव की फरमाइश पे ये गाना, और मुकेश यादव हैं गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन अभी मेरे एक लिसनर ने कुछ कहा था, उस पर मैंने कुछ टिप्पणी की थी, और जो मैंने टिप्पणी की थी उस टिप्पणी पर भी मेरे एक लिसनर ने टिप्पणी की है, तो उस टिप्पणी को मैं आप सभी के सामने पेश करना चाहूँगी। लिसनर का हमारे कहना है कि मेहनत से कमाई हुई चीज़ की वैल्यू रहती है, और मुक्त मीन्स मुक्त नहीं है, मुफ्त होता है, मुफ्त में मिली हुई चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती है। इसलिए किसी को चांद हम उतार कर दे दे तो भी उसको उसमें दाग नजर आएगा। नहीं, यहाँ भी मैं शायद आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, सॉरी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा कि जब हम चांद फ्री में लाके कोई उसे उतार के दे देगा तब उसके पास में उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, तब उसको उसमें दाग नजर आएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कई केसेस मैंने अपने आंखों के सामने देखे हैं कि लोग इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से भाई चांद ले लाने की कोशिश करते हैं। इतनी शिद्दत तो किसी और चीज में कभी नहीं की होगी, और कहीं किया होता भाई ISPCS की तैयारी की होती, क्रैक कर लिया होता है ना। लेकिन नहीं, चांद लेके आना था अपने पास, क्योंकि वो दूर से चांद इतना चमक रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, उसको इतना प्यारा लग रहा था, उसको इतना प्यार आ रहा था उस पे। लेकिन जब वो चांद इतनी शिद्दत के बाद में, इतनी मेहनत के बाद में अपने पास लेके आता है, अपने करीब लेके आता है, तो कुछ दिन तक तो उसे सेटिस्फेक्शन रहता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है उसे पाने के लिए। लेकिन एट लास्ट कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि वो चांद जो दूर था वो पास आ चुका है, तो पास से उसको उसकी बारीकियां दिखने लग जाती हैं, और जब वो बारीकियों पर ध्यान देने लगता है तो ऑटोमेटिक वो बारीकियां ही तो दाग है ना। सो दाग नजर आ गए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि दाग अच्छे होते हैं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना सुनी से सजा दूं मैं। सो एंजॉय करते हैं लता जी की आवाज में ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। और दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी कि अभी जो मैंने टिप्पणी की है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जैसा हम देखते हैं वैसा हम सोचते हैं। स्टे ट्यून्ड।

और सुने से सजा दो। हमने एंजॉय किया है लता जी की आवाज में ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, लेकिन उसके पहले हमारे लिसनर का कहना है कि ओ ओ ओ अब समझ आया, मैं आसमान के चांद की बात कर रहा था और आप जमीन के चांद की बात कर रही हैं, लेकिन अभी भी आपको नहीं समझ में आया। वो क्या है ना, मैं यही सही कहती हूँ और मेरी मम्मी भी सही, मतलब मैं ही सही कहती हूँ कि मेरी बातें किसी को नहीं समझ में आती है। नहीं, आसमान का चांद हो चाहे जमीन का चांद हो, बात तो चांद की हो रही है ना, बात तो चांद के दाग की हो रही है ना। आसमान वाले चांद में भी दाग है जो दूर से नहीं दिखता करीब से दिखेगा, और जमीन के चांद पे भी दाग है जो दूर से नहीं दिखेगा आपको करीब से दिखेगा, है ना। जब आप देखना चाहोगे तभी दिखेगा। सो चांद चाहे आसमान का हो चाहे जमीन का, चांद चांद होता है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है चांदनी की, और चांदनी को सुनना है गोंडा से गाना। जिंदगी में कदे कोई आए ना रब्बा, और आए जे कदे तो फिर जाए ना रब्बा। देने ऐसी जे बाद च हंजू, पहला कोई हसाए ना रब्बा। कुछ ऐसा ही गाना है बी प्राक का। एंजॉय करेंगे बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा, आए जे कदे ता फिर जाए ना रब्बा, और देने ऐसी जे मैनू बाद च हंजू ता पहला कोई हंसाए ना रब्बा। और अक्सर यही करते हैं लोग, है ना। पहले तो इतनी खुशियों की दुनिया दिखा देंगे, इतनी खुशियों की महफिलें सजा देंगे, इतना सब कुछ कर देंगे, और फिर इसके बाद में ऐसा होता है। अब मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी, लेकिन आज पता नहीं क्यों आप लोग मेरा मूड चेंज नहीं होने दे रहे हो। फिर चैट बॉक्स में कोई टिप्पणी आई है और इसमें मनीष शर्मा को टैग किया गया है, तो अगर मनीष शर्मा हमारे लिसनर हैं खुनासा गोंडा से, वेलकम इन योर शो। और मनीष शर्मा को अगर वकील बनाया ही गया है तो चलिए मनीष शर्मा का भी हम वोट ले ही लेंगे इस पे कि उनकी सहमति क्या है। अब हमारे लिसनर का फिर से कहना है कि इनका कहना है कि हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, हम दोनों का नजरिया अलग हो चांद को देखने का। आपकी नजर में चांद में दाग दिख रहा है क्योंकि आप सिर्फ अंदर देख रहे हो, लेकिन मैं मेरी नजर से चांद की बाहरी परत को देख रहा हूँ जो बहुत ही चमकदार दिख रही है। ठीक उसी प्रकार हम इंसान को देखते हैं तो कुछ लोगों की नजर में उसकी अच्छाइयाँ दिखती हैं क्योंकि वो अच्छा यही देख रहा है, और कुछ लोगों को बुराइयाँ दिखती हैं क्योंकि वो सिर्फ बुराइयाँ ही देख रहा है। अगर इंसान उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों देखे तो शायद उसे इंसान की अच्छी तरह समझ हो जाए, अच्छा बुरा दोनों हो। मैं इस पे फिर कहना चाहूंगी, नागेश्वर धाकर जी, अगर पूरी की पूरी दुनिया ऐसा सोचती जैसा आप स्पेसिफिकली आप एक इंडिविजुअल एक सिंगल इंसान सोच रहे हैं, अगर ऐसी सोच पूरी दुनिया की होती, इतनी अच्छी सोच कि अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा इंसान में, मैं भी यही सोचती हूँ। मैं लोगों को यही लेक्चर देती हूँ कि क्या है कि कोई बात नहीं, इंसान अगर 1% बुरा है तो उसके अंदर 10% अच्छाइयाँ भी तो है ना, तो उस बुरे को साइड में रख के उसके 10% हमें अच्छाइयों को देखना चाहिए। मैं भी कहती हूँ, लेकिन कहने की बातें होती हैं, लोग इतने अच्छे नहीं होते। अगर आप इतने अच्छे होते, हम इतने अच्छे होते, सबके सब इतने अच्छे होते, तो फिर ये जो गाना बना है ना कि जिंदगी में कदे कोई आए ना रब्बा, ऐसे गाने बनते ही नहीं अगर जिंदगी में दर्द होता ही नहीं दूसरों की वजह से। अरे अपना दर्द सबको दिखता है, दुनिया देखो सब पता चलेगा कि कौन चांद को अंदर से देखता है, कौन चांद को बाहर से देखता है। Stay tuned. ये फरमाइश है सुरेंद्र यादव की, गौरा चौकी से। एंजॉय कर

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सनंगमा बाबू मूवी का, हमारे सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो की है गौरा चौकी से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से आपका स्वागत है, वो भी दिल से। वही मोहम्मद मुशीफ जी बाराबंकी से आपका भी तहे हुए दिल से स्वागत और इस्तकबाल है। स्टे ट्यून्ड नव्या फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड और एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन भाई ये बाज क्यों नहीं आ रहा है? देखिए आपके और मेरे ओपिनियन, मुझे ऐसा लग रहा है कि नए मिक्स एंड मैच होने वाले हैं। और अगर इतना ही क्यूरोसिटी है कि भाई अदालत लगाई ही जाए तो क्यों ना, वेलकम इन योर शो, आइए किसी दिन आपको मैं बुलाती हूँ। वेलकम है, मोस्ट वेलकम है नागेश्वर धाकर जी, आइए और साथ में बैठ के फिर उसके बाद में हम डिबेट करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। वैसे चैट बॉक्स में आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिख रहे हैं, फिर मैं यहाँ से जवाब दे रही हूँ, फिर मजा नहीं आ रहा है ना ऐसे आमने सामने, मजा आएगा? मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में। इनका कहना है कि वही तो, लोग मेरी तरह नहीं सोचते हैं। आज के दौर में कोई भी इंसान किसी से रिश्ता जोड़ता है तो सिर्फ अच्छाइयां देखता है और गिनता है, और वही इंसान अगर रिश्ता तोड़ता है तो उसको सिर्फ बुराइयां ही दिखती है, जबकि रिश्ता बनने के समय भी उसमें अच्छाइयां बुराइयां ये दोनों थी। आय हाय माय लॉर्ड। आजकल ना रिश्ता अकॉर्डिंग टू योर अर्जेंट सिंपल, प्लीज आप लोग भी चैट बॉक्स में वोट करो, आप लोग के वोट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अकॉर्डिंग टू योर अर्जेंट सिंपल मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल चाहे रिश्ता हो, चाहे लोग हो, चाहे अच्छाइयां हो, चाहे बुराइयां हो, ये सब कुछ भी नहीं देखा जाता है ना रिश्तों में ना लोगों में। आजकल लोग और रिश्ता सब कुछ सिर्फ स्वार्थ डिसाइड करता है। आजकल लोग अच्छाइयां बुराइयां नहीं देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप बताइए तो, आए हाय। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में मुस्तफा जी की और उनको सुनना है गाना ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा कि अब तो हम हुए परदेसी, तेरा यहाँ कोई नहीं। स्टे ट्यून्ड। नो अच्छा नो बुरा, ओनली स्वार्थ, ओनली सेल्फिशनेस, यू नो।

सो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगले फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन पर। मिलते हैं सीधे 9 बजे, एंजॉय करते हैं मोहित की फरमाइशों के हिमालय नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीट वेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटी हूँ मैं तो भरी महफिल से। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी मुमताज अंसारी जी की गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी? अगली फरमाइश है मनीष शर्मा की खुरासा गोंडा से, और मनीष शर्मा को खुरासा गोंडा से सुनना है गाना, तुझसे मोहब्बत हो गई अल्लाह माफ करे। अच्छा जी, मोहब्बत हो गई है उनसे, तो मोहब्बत आपको उनसे हुई है तो अल्लाह क्यों माफ करे, आप खुद ही खुद को माफ कर लो, क्योंकि मोहब्बत अगर किसी से हो ना तो माफी अगर किसी से मांगनी चाहिए आपको तो अपने आप से ही सिर्फ और सिर्फ माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बच्चा सब मोह माया है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मनीष शर्मा की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM का बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट फरमाइशी आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड।

देर हो गई, अल्लाह माफ करे। हमने एंजॉय किया देसी बॉयज का ये गाना, हमारे देसी बॉय मनीष शर्मा की फरमाइश पे जो की है खोरासा गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। ये तो फरमाइश थी मनीष शर्मा की, अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है लता जी और सुरेश जी की आवाज में हिना मूवी का नगमा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर।

मूवी का ये गाना हमने एंजॉय किया है दोस्तों, धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर जो की है आवाज विकास कोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से। मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना मैं आज बोलता हूँ मैं तुझको पूछता हूँ। सो एंजॉय करते हैं दो मत वाले मूवी का ये वाला गाना सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर जो की है बाराबंकी से। स्टे ट्यून्ड।

सो मोहम्मद मुशीर जी की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया है ये गाना, और मोहम्मद मुशीर जी हैं बाराबंकी से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है राकेश वर्मा के बेटे कृष्णा वर्मा की, उनको सुनना है गाना पिंक लिप्स। सो एंजॉय करते हैं कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड।

सो कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर हमने इंजॉय किया है ये वाला गाना। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है शशि सिंह जी की और उनको सुनना है गाना तुम्हारे प्यार में हम बेकरार होके चले, शिकार करने को आए शिकार होके चले। सो एंजॉय करते हैं शशि सिंह जी की फरमाइश पर ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

शिकार करने को आए शिकार हो के चले। हमने एंजॉय किया है शशि सिंह जी की फरमाइश पर ये वाला गाना, और इसी गाने से मुझे चंद लाइनें याद आती हैं परवीन शाकिर जी की। अगर आप लोग कहिए तो जरूर आप लोग के सामने पेश करना चाहूंगी। सो परवीन शाकिर जी का कहना है कि बात तो तब है जब तुम्हें मुझसे भी बढ़कर कोई चाहे, वरना तुम जिसके हो गए हो वो तो जमाने भर का था। तरस आ रहा है मुझे अपनी सादा दिली पर, वो शख्स मेरा ना हुआ जिसे मैंने दुआओं में मांगा था। कैसे कहूँ कि छोड़ दिया उसने मुझे, कैसे कहूँ कि छोड़ दिया उसने मुझे, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। सो ये कहना था परवीन शाकिर जी का, और इसी के साथ में दोस्तों लेना चाहूंगी अलविदा। सो हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है, जानते हैं किसकी? हाँ नहीं जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहूंगी। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की सोनार गली गोंडा से, और निब्बर जी को एंजॉय करना है ये दर्द भरा नगमा। सो एंजॉय करते हैं निब्बर जी की फरमाइश पर ये वाला गाना, और इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। सो अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना, और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना बिल्कुल नहीं भूलने का है, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आपके लिए, और आपकी तरफ से बेतहाशा बे इंतहा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराल रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
5: और जेंट्स के लिए
6: स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
12: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
13: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
14: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
15: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या आप सभी को। ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद, शाम का सलाम कबूल करें आप। और जिसने ये पंक्ति कही, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, बहुत आसान लफ्जियात में, बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही बड़ी बात कह देने का हुनर जिस शख्स के पास था, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। आप सभी उनके नाम से परिचित हैं। उनका नाम है पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र। आज के ही दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दोपहर में 12:15 पर इस गम की दुनिया को छोड़कर 91 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ले ली। डिमेंशिया नामक बीमारी से पीड़ित और एक ऐसे कलमकार, एक ऐसे फनकार जिनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होता है। हम में से सभी लोगों ने उनकी कोई न कोई पंक्तियां अपनी लाइफ में, जो हम बातचीत करते हैं तो आप कोट कर देते हैं, और शायद हमें नहीं पता होता कि ये पंक्तियां लिखी किसने हैं। उन्होंने लिखा कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं। इबादत मतलब पूजा। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूं। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। एक ऐसा शख्स जिसने अपने दुश्मन को भी कभी दुश्मन नहीं माना। उन्होंने कहा कि वो दुश्मन हमको कुछ सिखा कर जा रहा है। मुशायदों की दुनिया का एक ऐसा चमकता हुआ सितारा कि जब वो मंच पर आते थे तो लोगों को लगता था कि आज जो माएँ अपने बच्चों के साथ आई हैं, पिता के साथ बच्चे आए हैं, बशीर बद्र की शायरी से कुछ न कुछ लेकर जाएंगे। और हम सभी ने, अगर आप साहित्य में थोड़ी सी रुचि रखते हो तो उनकी लिखी हुई बातें कहीं ना कहीं आपने, हो सकता है, किसी मौके पर बोली हो। मन थोड़ा उदास है क्योंकि मेरे बहुत ही प्यारे शायर का निधन हुआ। एक बार पुनः आप सभी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ये एक ऐसा मौका आया कि समझ में नहीं आता कि मुबारकबाद दूं या श्रद्धांजलि अर्पित करूं। एक और मन हर्षित है कि आज बहुत बड़ा त्योहार है, और दूसरी ओर इस बात का मलाल भी है कि हम जिनसे बहुत कुछ सीख सकते थे, अभी जिनकी शायरी हमको बहुत कुछ सिखाती है, वो आज के ही दिन इस दुनिया से विदा हुए। मुबारक दिन है, अल्लाह उन्हें जन्नत अता करे। और अब तो सिर्फ यही कह सकता है कि आत्मा की शांति मिले। जी, हम चूंकि थोड़ा बहुत लिखते हैं, कवि हैं, तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। और आज दुख इस बात का है कि आईना टूट गया, दुनिया को जो सच दिखाते थे वो हमारे बीच नहीं रहे। और निसंदेह जब कोई बेशकीमती चीज टूटती है तो अफसोस बहुत होता है। एक बार पुनः आप सभी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। और आइए अब विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन्हें जिन्हें गजलों की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। जी हाँ, हमारे साथ तो बहुत से लोग उपस्थित है, भाई देखते हैं कौन है हमारे साथ। और आज मैं कुछ योजना बनाकर और आया था और पता चला कि अभी ऐसा हुआ। जी, हमारे साथ है भाई अनिल शास्त्री जी। गुड इवनिंग मनु जी। जी शुभ संध्या, प्रणाम दादा आपको। सविता जी शुभ संध्या, नमस्कार सर जी। बशीर बद्रू को विनम्र श्रद्धांजलि। नेहा जी बहराइच से हैं, नमस्कार मनु सर, आदाब आपको भी आदाब और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। नागेश्वर धाकर जी आपको भी बहुत बहुत शुभ संध्या, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी को ईद मुबारक। जी, और आपको भी। चलिए, सबसे पहले मुझे जो याद आता है बहुत ही प्यारी सी गजल, बशीर बद्र साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपको सुनाते हैं ये पहली गजल। और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गणेशली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।
1: सुनिए सदगुरु,

जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन नमनो स्वागत। विशाल बेदर्दी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार और शुभ संध्या मनु जी, आपको भी भाई नमस्कार। नगर सुधाकर लिखते हैं, सर जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं जी, आपका आशीर्वाद। और राजेश ने लिखा है, माई बर्थडे है आज, सांग प्ले ओ साथी दे, तेरे बिना भी क्या जीना। क्या बात है भाई, आज राजेश जी का बर्थडे है। रितिन सिंह जी हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग सर, आपको भी शुभ संध्या। और ने लिखा जगजीत सिंह जी एंड लता जी जाने चले जाते हैं कहाँ। मनीष शर्मा जी हैं, गुड इवनिंग सर जी, आपको भी शुभ संध्या। मनीष शर्मा जी बात कर रहे थे बशीर भद्र साहब की, आगे भी करेंगे। उन्होंने जिंदगी के कई फलसफे दिए, कई मायने दिए। उन्होंने कहा कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक कामों में कभी देर न करना साहब, नेक कामों में कभी देर न करना साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। वो कहते थे अच्छे काम को टालिए मत और बुरे काम को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए कि बाद में करेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उस पर छत रखी। हमने दीवार उठाया उसने छत रख दिया। और अक्सर लोग कहते हैं कि भाग्य बड़ा होता है या कर्म बड़ा होता है। देखिए कितनी, शायद ही कोई ऐसा शायर हो जिसने ये पहलू निकाला हो। मतलब हिंदी साहित्य का विद्यार्थी और अंग्रेजी साहित्य तो थोड़ा बहुत उर्दू का तालिबे इल्म हूँ, लेकिन मुझको कभी ऐसा परसेप्शन, ऐसी सोच देखने को नहीं मिली। भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, उस पर उन्होंने जो लिखा वो मैंने अपने जीवन में उतारने की बहुत कोशिश की। उसके बाद उन्होंने लिखा कि क्यों हथेली की लकीरों से है आगे उंगलियां। देखिए ये किसने शायद न सोचा हो सकता है मेरी जानकारी ना हो, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कहीं। क्यों हथेली की लकीरों से है आगे उंगलियां, आपके हाथ की लकीर के आगे आपकी उंगली है। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत लिखी, नहीं आप ईश्वर ने भी आपके भाग्य से ज्यादा महत्व आपके कर्म को दिया है। नहीं तो वो उंगलियों को पीछे कर सकता था और हथेली को आगे कर सकता था, लेकिन वो जो सबसे बड़ा इंजीनियर इस दुनिया का ऊपर बैठा हुआ है ना, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड किया है, सुव्यवस्थित है। क्या देखने का नजरिया है, हम तो सिर्फ बशीर भद्र जी के नजरिए के कायल हैं। उन्होंने कहा कि वो शाख है न फूल जिसमें तितलियां ना हों, वो शाख है न फूल जिसमें तितलियां ना हों, वो घर भी कोई घर है जिसमें बच्चियां ना हों। जब लोग पुत्र की बात करते हैं तो एक शायर उठता है और पुत्री की बात करता है। वो शाख है न फूल जिसमें तितलियां ना हों, वो घर भी कोई घर है जिसमें बच्चियां ना हों, बच्चियों का होना जरूरी है। उन्होंने फिर लिखा तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए, पीछे तुम्हारे मैं तो बड़ी दूर तक गया, पीछे तुम्हारे मैं तो बड़ी दूर तक गया, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए, हमने बुलाया आप सुन नहीं पाए।

और जिंदगी का सकारात्मक दृष्टिकोण, कुछ भी हो जाए उसमें अच्छा ढूंढ लेना, ये बशीर बद्र साहब की खूबी रही। मोहब्बत की तो सिर्फ एक बार की, उन्होंने लिखा कि सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। यानी अगर होली होगी तो आपके साथ होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी, हम होली ही नहीं मनाएंगे। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, मैं कैसे मान लूं उन्हें मैंने भुला दिया। और अब देखिए एक फिर एक नया तरीका, फिर एक ऐसी पंक्ति जो दिल को खट से जाकर छूती है कि सावन में वो ना आए तो मैंने यही किया, सावन में वो ना आए तो मैंने यही किया, झूले पे उनका नाम लिखा और झूला दिया। क्या इंतजार है साहब, शायद संभवतः बड़ा कठिन है। और जिंदगी ने जब उनको दर्द दिया तो दर्द पर उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, आपने अगर चोट दी तो आपको धन्यवाद, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। यानी मैं पत्थर था, आप आए तो हम पत्थर से इंसान बने। और देखिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए। अब देखिए, एक समझ वो है कि याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटे बदलते हैं, एक शायर का दृष्टिकोण वहां है कि नींद नहीं था आ रही है तो करवट बदल रहे हैं, शायर का दृष्टिकोण यहां देखिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, है नींद आज तेरे ना आने का शुक्रिया, अच्छा हुआ कि तुम नहीं आई, मैंने कई काम कर लिए अपने, नींद आ जाती सो जाते समय बर्बाद हो जाता। इंसान अपनी जिंदगी का अगर हम देखें 24 घंटे में से 8 घंटे मतलब एक तिहाई हिस्सा तो सोने में निकाल देता है, तो काम कहाँ कर पाएंगे, तो नींद नहीं आई तो अच्छी बात है, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, है नींद आज तेरे ना आने का शुक्रिया, सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली। एक जख्म मेरा था वो भर चुका था और भरने के तत्काल पश्चात दूसरा जख्म फिर मिल गया, सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया। उन्होंने जख्म को भी थैंक यू बोला कि भाई आप आए जिंदगी में, बहुत अच्छी बात है। आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। और अंतिम पंक्ति फिर दिल को ठक से छूती है कि गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, ये बात है तो सारे जमाने का शुक्रिया। उन्होंने कहा अगर गम मिलता है तो शायरी अगर अच्छी होती है तो ठीक है, हम उठाने के लिए तैयार हैं, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, क्या बात है। और भाई मैं साथ नज लिखती हैं कि नेक कर्मों में कभी देर न करना साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। वाह जी हाँ, तो बशीर बद्र बोल रहे हैं, उन्होंने ही कहा कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से,
ये नए मिजाज का शहर।

और अब आपको ले चलते हैं गीत की तरफ और एक नगमे की तरफ और फिर लौटेंगे और आपसे करेंगे डॉक्टर बशीर बद्र के बारे में चर्चा। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए, भाई राजेश सिंह जी का बर्थडे है तो साथी रे उन्होंने डिमांड किया है, तो इस गीत के बाद हम उनकी जो उनका जो आदेश है उनके आदेश का अक्षर सा पालन करेंगे। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

जी हाँ, बशीर बद्र। गजलों की दुनिया का एक ऐसा नाम जिनकी पंक्तियां देखी अनिल जी ने भेजी। मुझे याद है उनकी गजल कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हो गई है दिन में घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और फिर उन्होंने कहा कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने कभी छूकर नहीं देखा। मतलब एक एक पंक्ति दिल पर छूती। उन्होंने कहा कि एक बार वो मुशायरा कर रहे थे और मैं उनको सुनने लखनऊ गया हुआ था। हम जान पाते थे कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी, डॉक्टर राहत इंदौरी या बशीर बद्र साहब कहीं पर भी हो और अगर हमारी पहुंच में होता था तो मैं पहुंचता जरूर था, क्योंकि लाइव सुनने का मज़ा ही कुछ और था। और उस ज़माने में यूट्यूब वगैरह भी नहीं होते थे तो लाइव ही सुनते थे हम लोग। उन्होंने कहा कि एक बार शायरी हो रही थी, मतलब मुशायरा हो रहा था लखनऊ में, तो उनकी जो है शरीक हयात उनकी पत्नी भी आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि एक बार की बात, मैं मुशायरा पढ़ रहा था और मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि तुम शायरी कब लिखोगे, शेर कब लिखोगे। उन्होंने कहा कि मैंने उनको दो पंक्तियां सुनाई, आपको भी सुनाता हूं और चाहता हूं कि ये बात झूठी हो जाए। उन्होंने कहा कि हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों पर, हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों पर, अजब मां हूं कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। उन्होंने कहा कि उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा, और उनके लिए जो मैं कहता हूं वो ये कहता हूं कि हजार बात बनाओ मगर बनेगी नहीं, हजार बात बनाओ मगर बनेगी नहीं, जो असलियत है किसी हाल में छुपेगी नहीं, जो असलियत है किसी हाल में छुपेगी नहीं, ये बात छोड़िए कि कौन आएगा हमारी जगह, ये बात छोड़िए कि कौन आएगा हमारी जगह, हमारे बाद हमारी जगह बचेगी नहीं। और वास्तव में उर्दू की शायरी हो या जिंदगी के मौजूआत हों, बशीर बद्र के जैसा न कोई था और न शायद कोई भविष्य में। इतना काबिल होने के बावजूद, इतना विनम्र होना, मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करता हूं कि इस दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है। अगर आप उत्तर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आपको क्या लगता है इस दुनिया का सबसे कठिन काम क्या? मैं 5 सेकंड का समय आपको देता हूं, आपको जो लगता है कि दुनिया का सबसे कठिन काम ये है तो जरा चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि मुझे सबसे कठिन काम ये लगता है।

चलिए, दुनिया का सबसे कठिन काम है सरल होना, सहज होना। और ये सरलता जो है ना, वो इंसान को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाती है। डॉक्टर बशीर बद्र जितने महान शायर, जितने महान गजलकार, उससे कहीं बेहतरीन एक इंसान, एक ऐसे इंसान जिनको इस बात का गुमान नहीं था, जिनको इस बात का घमंड नहीं था कि मैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर हूं और मुझे सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है। वो एक सामान्य इंसान की तरीके से अपने जीवन को जीते रहे। और आज वो हमसे दूर है तो हम तो यही कहेंगे, जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। और भाई जी, सबने लिखा, भाई धर्मेंद्र मोहन ने लिखा, दुनिया का सबसे कठिन काम है लोगों को समझना। श्रीमती सप्ता शास्त्री लिखती हैं, दुनिया का सबसे कठिन काम अपने गुस्से को काबू करना और अपने के दिल में जगह बनाना। क्या बात है भाई। और उस्मान खान ने लिखा कि विनम्र होना, जी जी, सरल होना। सरल होना बहुत कठिन है, सरल लिखना बहुत कठिन है। ऐसा लिख दें आप कि मतलब इंसान समझ जाए। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि उसको समझने में फिर वो डिक्शनरी लेकर बैठनी पड़ती है कि इसका मतलब क्या होता है। तो दुनिया का सबसे कठिन काम है सरल होना, सहज होना, विनम्र होना। और ये सब कुछ किसी एक व्यक्तित्व में अगर आए तो उनका नाम है डॉक्टर बशीर बद्र। एक बार पुनः उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक बार पुनः आप सभी को ईद उल अजहा की, बकरीद की शुभकामनाएं। जी हाँ, आसमान वाले ने चाहा तो फिर शनिवार को आपसे पुनः मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम बहार ए गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणस्लेट 9.6 FM। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपके वजह से किसी और के होंठ ठुकरा सके प्यारी सी मुस्कान। फिलहाल इस नगमे के साथ आपसे लेते हैं अलविदा, और आसमान वाले ने चाहा तो शनिवार को आपसे मिलते हैं आप ही के कार्यक्रम बहार ए गजल में ठीक 9:30 बजे। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी आवरण। हो सके तो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ वक्त बिताने तुम भी बीजिंग आ जाना, आओगी तो अच्छा लगेगा मुझे। शरद ने दुबई एयरपोर्ट पर प्रीति से विदा होते हुए कहा। उसका काम के सिलसिले में देश विदेश आना जाना लगा रहता था। वो जहां भी जाता था उम्मीद करता था कि कुछ दिन के लिए ही सही प्रीति भी उसे ज्वाइन करे। सूरत देखिए अपनी शीशे में, मैं घर में तो तुम्हारे साथ 5 मिनट बैठना पसंद नहीं करती, फिर बीजिंग क्या खाक करने आऊंगी? मैं तो तुम्हारे साथ उम्र काट रही हूं उम्र कैद की तरह। प्रीति ने दिल ही दिल में सुलगते हुए सोचा और शरद की बात को तवज्जो दिए बिना कार से उनका लगेज निकालने में उनकी मदद करने लगी। फिर बिना उनकी तरफ देखे ही गुड बाय करके टाइम से अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कार स्टार्ट कर दी। रोड ट्रैफिक से पटी हुई थी, लगता है फिर ऑफिस के लिए देर हो जाएगी और नगमा की स्कैन करती हुई आंखें फिर से बर्दाश्त करनी होंगी। क्या 2 टके की जिंदगी है मेरी, प्रीति मन ही मन भन्नाई। तभी एक हॉर्न की आवाज ने उसकी सोच में बाधा डाली। सामने ग्रीन लाइट हो चुकी थी। उसने यंत्रवत ब्रेक से पैर हटाकर क्लच पर दबाव डाला। उसकी कार आगे बढ़ने लगी और उसकी सोच भी। इंडिया में मेरे भैया सोचते होंगे कि मेरी झोली चांद सितारों से भरी हुई है। उन्हें क्या पता कि हालात ने मुझे न्यूट्रॉन में बदल दिया है। ना कोई खुशी है ना गम है, जी रही हूं एक उदासीन सी जिंदगी, क्योंकि हाथ में उम्र की लंबी लकीर जो लेकर पैदा हुई हूं, ढो रही हूं नीम पर चढ़े हुए करेले सी कड़वी बेनूर अनचाही शादी को। कुछ खोई खोई सी हैं आज आप। ऑफिस पहुंचते ही नगमा ने आदत अनुसार कटाक्ष किया। तुम्हें तो पता है मैं शौकिया शायरी लिखती हूं, इसीलिए सोचते रहना मेरा काम है। सोचूंगी नहीं तो लिखूंगी कैसे? प्रीति ने स्थिति को संभालते हुए सफाई पेश की। आज तो तुम्हारा चेहरा कोई ऑटोबायोग्राफिकल शेर सुनाता सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुम्हारे दिल की तन्हाइयों में पत्थर फेंक कर वहां उथल पुथल मचा दी हो। नगमा बोली, आप भी कौन सी कम है, दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप करके उनकी जिंदगी की खामियों के नगमे दुनिया में गा गा कर अपना नाम सार्थक करती रहती हैं। प्रीति ने नहले पर दहला मारा क्योंकि वो जानती थी कि सीधी भाषा नगमा को समझ में नहीं आएगी। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कहकर नगमा खिसियाई बिल्ली सी उसे अकेला छोड़कर चली गई।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है आवरण। अब तक आपने सुना प्रीति को अपनी जिंदगी बड़ी ही बेरंग और उदासीन लगती थी। उसे किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं आता था। लगता था जैसे वो जिंदगी को ढो रही है। यहां तक कि अपने पति शरद के साथ वक्त बिताना भी उसे अच्छा ही नहीं लगता था। अब आगे मन ज्यादा दुखी होता तो YouTube पर सफल प्रेम कहानियां देखकर खुश होने की नाकाम कोशिश कर लेती। इन प्रेम कहानियों में अपने होने की कल्पना करती और काल्पनिक ही सही पर कुछ पल प्यार से जीने की कोशिश करती। फिर याद आया शरद तो है ही नहीं, इसलिए आज रास्ते में ही कुछ खाकर चलती हूँ। डिनर करने के बाद भी सीधे घर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऑफिस के बाद आसपास की फ्लोरिस्ट शॉप में यूं ही चक्कर लगाना उसे बहुत अच्छा लगता था। आज वो फिर से वहां फूलों को निहारने के लिए पहुंच गई। फूलों को देखते देखते अचानक उसे लगा कि आंखों की कोरों से उसने किसी जाने पहचाने चेहरे को आसपास देखा है। कोई ऐसा चेहरा जो पहले भी उसके बहुत करीब रहा है। वो तुरंत शॉप से बाहर आ गई, कार पार्किंग की ओर बढ़ी तो देखा कि टैक्सी स्टैंड पर जोसेफिन खड़ी थी। जोसेफिन यहां और वो भी बिना ब्राइन के, ये कैसे पॉसिबल है? हैरान सी वो लपक कर उसकी तरफ भागी। उसे देखकर जोसेफिन ने उत्साह भर कर उसे गले से लगाया। परिचित मुस्कुराहट से सराबोर उसका चेहरा कई सालों बाद प्रीति को देखने को मिल रहा था। इनसे मिलो, ये है मेरे नए पार्टनर जैकब। जोसेफिन ने अपने साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। पार्टनर? मतलब तुम्हारी और ब्राइन की कंपनी में कोई पार्टनर भी हुआ करता था? ये तो तुमने पहले कभी नहीं बताया, प्रीति ने कौतूहल से पूछा। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जैकब मेरे डीफैक्टो पार्टनर हैं और हम लिविंग टुगेदर रिलेशनशिप में हैं। प्रीति ने एक गहरी नजर जैकब महाशय पर डाली। उसके होठ कुछ बोलने को हिले मगर शब्द बाहर ना आ सके। आखिर जोसेफिन ने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, काफी समय से तुमसे बातचीत नहीं हो पाई है। तुम तो बिना कुछ बताए ही सिडनी से गायब होली। लाइफ काफी बदल चुकी है तब से। अभी हम यहाँ एक हफ्ते और रुकेंगे। अगर मौका मिला तो तुम्हारे साथ कॉफी पीने आऊंगी। मुझे अपना फोन नंबर दे दो। प्रीति ने ज्यादा कुछ सोचे बिना हैंडबैग से अपना कार्ड निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। तभी एक टैक्सी आ गई। जोसेफिन ने एक बार फिर से उसे गले लगाया और जैकब के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई। प्रीति हैरान परेशान सी टैक्सी को अपनी आंखों से ओझल होने तक देखती रही।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है आवरण। अब तक आपने सुना प्रीति को अपनी जिंदगी इतनी बेरंग लगती थी कि उसे अपने पति के साथ भी अच्छा वक्त बिताना पसंद ही नहीं था। वो हर वक्त उदासी रहती। एक बार उसे एक अपनी पुरानी फ्रेंड मिली। वो जिस आदमी के साथ थी उसे प्रीति ने पहली बार देखा था। उसकी फ्रेंड ने उसे बताया कि ये उसका नया लिव इन पार्टनर है। प्रीति हैरान थी। अब आगे ब्रायन सिडनी का जाना माना व्यक्ति था। सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि अपने सोशल वर्क्स की वजह से भी हर जगह उसके नाम और काम की चर्चा होती थी। ब्रायन से मिलने से पहले ही उसकी प्रसिद्धि लोगों तक पहुंच जाती थी। इसी के साथ साथ वो एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान भी था। गोताखोरी, नौकायान, पैराग्लाइडिंग, हर चीज का बेहद शौकीन। जोसेफिन एक एयर होस्टेस थी और ब्रायन अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर हवाई यात्राएं करता रहता था। वहीं पर कहीं उनकी मुलाकात हुई और कुछ ही महीनों में वो एक दूसरे के हो गए। जब प्रीति पहली बार जोसेफिन और ब्रायन से मिली थी तब तक उनकी शादी को 10 साल पूरे हो चुके थे, जबकि प्रीति और शरद की शादी को केवल 3 साल ही हुए थे। उनके 10 साल की शादी में भी प्यार का महासागर उमड़ पड़ता था। उनके बीच की केमिस्ट्री को देखकर प्रीति जैसों को ईर्ष्या होती थी क्योंकि उसकी 3 साल की शादी में प्यार का अकाल सदा बहार था। शरद और उसकी हर बात हर शौक में नॉर्थ और साउथ पोल का फर्क था। जोसेफिन और ब्रायन के हर शौक हर तरीके एक जैसे थे। वो दोनों खूब शौक के साथ साथ गोताखोरी पर जाया करते थे। 3-4 साल पहले गोताखोरी के दौरान रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से ब्रायन के शरीर का निचला हिस्सा बेकार हो गया था, जिससे वो ज्यादा लंबा चलने में असमर्थ था। मगर प्यार तो प्यार ही होता है, सो ये हादसा भी उन दोनों के प्यार को कम नहीं कर पाया। कम करता भी कैसे, आखिर उन्होंने नीले आकाश को साक्षी मानकर उम्र भर साथ निभाने के वादे जो किए थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। अपनी खुशी से उन्हें एक दूसरे पर थोपा नहीं गया था। उनके प्यार में समर्पण था, ढोए जाने वाला सामाजिक बंधन नहीं। उनकी शादी उनके प्यार की परिणति थी, महज निभाए जाने वाली रस्म नहीं। प्रीति को ऐसा लगता था कि उसकी और शरद की शादी तो वो जैकपॉट थी जिसमें लॉटरी शरद की लगी थी, और उसकी परिस्थिति जुए में सब कुछ अपना हारे हुए जुआरी जैसी थी। जब भी जोसेफिन और ब्रायन को साथ देखती तो उसके दिल का दर्द पूरी शिद्दत पर पहुंच जाता। वो सोचती काश उसकी भी शादीशुदा जिंदगी उनकी शादीशुदा जिंदगी की तरह परी कथा होती। वो उनके सामने बैठकर खुद को आधा अधूरा महसूस करती। जब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उससे बचने के लिए उसने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। उनके सामने सुखी वैवाहिक जीवन का झूठा आवरण ओढ़े ओढ़े वो अब थकने लगी थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है आवरण। अब तक आपने सुना, प्रीति अपनी जिंदगी से बहुत दुखी थी। उसे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती थी। उसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी को, अपने रिश्तों को ढो रही है। वो जब भी जोसेफिन और ब्रायन को साथ देखती तो उसे बहुत जलन होती। उसे लगता कि उसका और उसके पति शरद का रिश्ता उन दोनों की तरह क्यों नहीं है। वो दोनों साथ में इतने खुश रहते थे, इतने समर्पित रहते थे कि उनको देखकर लगता था दे आर मेड फॉर ईच अदर हैं। अब आगे, फिर जब शरद को दुबई में एक बेहतर जॉब मिला तो प्रीति के दिल को एक अजब सा सुकून मिला। उसकी खुशी शरद को बेहतर जॉब मिलने की वजह से कम और सिडनी को हमेशा के लिए छोड़कर जाने की वजह से ज्यादा थी, ताकि उसे फिर कभी जोसेफिन और ब्रायन का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर सेट होकर वो सब कुछ भूलने ही लगी थी कि उस दिन फिर जोसेफिन से उसका आमना सामना हो गया, लेकिन इस बार वो उसे किसी पहेली सी लगी। जोसेफिन, ब्रायन और जैकब के त्रिकोण को समझने की उलझन में पड़े पड़े सोचते सोचते उस रात प्रीति सो गई। अगले दिन सुबह उठी तो सिर कुछ भारी सा लगा। कुछ देर यूं ही बिस्तर पर लेटी रही, समझ में नहीं आ रहा था कि ऑफिस जाए या नहीं जाए। अंत में आलस की जीत हुई, उसने ऑफिस ना जाने का निश्चय किया। आधे ही घंटे में एक टेक्स्ट मैसेज आया तो उसकी आंखें खुली। जब उसने मोबाइल देखा तो उस पर जोसेफिन का मैसेज था। वो उसके साथ लंच करना चाहती थी। मैसेज को देखते ही प्रीति की आंखें पूरी तरह खुल गईं और उसने बिना एक पल गवाए आए हुए मैसेज के नंबर को दबा दिया। वो जोसेफिन के बारे में सब कुछ जानने को बेताब थी। उसने उसे बताया कि आज वो पूरा दिन घर पे ही है, इसलिए वो किसी भी समय उससे मिलने आ सकती है। पूरे उत्साह से वो नहा धोकर घर को ठीक करके जोसेफिन का इंतजार करने लगी और वो निश्चित समय पर आ गई। तुम्हारे वो मेरा मतलब है जैकब महाशय कहाँ रह गए? प्रीति ने इधर उधर नजर घुमाते हुए कहा। तो जोसेफिन बोली कि उसे कॉन्फ्रेंस में जाना था, वैसे भी उसके होते हम दोनों खुलकर बातचीत नहीं कर पाते। प्रीति भी तो यही चाहती थी। बहुत देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद आखिर बातचीत ब्रायन तक पहुंच ही गई। जोसेफिन ने बताया कि उसके और ब्रायन के तलाक को 4 साल हो चुके हैं। प्रीति ने एक ही सांस में कई सवाल दाग दिए। तुम दोनों अलग कैसे हो सकते हो? तुम्हें तो हमेशा इस बात का गुमान था कि ब्रायन अमेरिका में अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर मीलों दूर ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे लिए आकर बस गया था। तो क्या हुआ, मैं भी तो उसकी विकलांगता को वर्षों तक झेलते झेलते अपनी जिंदगी का गोल्डन टाइम बर्बाद कर चुकी थी, जोसेफिन ने कहा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है आवरण। अब तक आपने सुना, प्रीति कई सालों बाद अपनी दोस्त जोसेफिन से मिली, जो कि अब एक नए लाइफ पार्टनर के साथ रह रही थी। प्रीति हमेशा से उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ से जलती थी और आज उसको नए पार्टनर के साथ देख के प्रीति को बहुत अजीब लग रहा था। प्रीति उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। उसने बताया कि उसके हस्बैंड ब्रायन से उसका तलाक हुए 4 साल हो चुके हैं। प्रीति बहुत हैरान थी। अब आगे, पर जोसेफिन, तुमने उसके साथ जो कई साल खुशहाली से बिताए वो, और हादसे तो हादसे होते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं, तुम तो उस हादसे के साथ भी उसके साथ खुश थी ना? जोसेफिन बोली, हाँ, लेकिन तब भी उसके पास एक लाइफस्टाइल और एक स्टेटस तो था ना? था मतलब? प्रीति बोली। जोसेफिन ने बताया कि उसके एक एक्सीडेंट में हैंडीकैप्ड होने के बाद धीरे धीरे उसका बिजनेस खराब होने लगा और उसके लिए उसने लोन्स लिए जो वो चुका नहीं पाया। उसमें उसकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। आखिर कब तक मैं उसे ढोती? उसके पास बचा ही क्या था मेरे लिए? मैं क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? छोड़ दिया मैंने उसे। अब प्रीति चिड़चिड़ा कर बोली, ब्रायन के दिवालिया होने और तुम्हारे उससे तलाक लेने से क्या संबंध है? और ये जैकब, ये क्या मार्केट में तुम्हारे लिए तैयार बैठा था जो ब्रायन के व्यापार के फेल होते ही तुम इसके साथ रहने लगी? जोसेफिन बोली, हाँ ऐसा ही कुछ समझो। कुछ साल से हम दोस्त थे। ब्रायन के शहर से बाहर होने के बाद हमने कई बार कैजुअली टाइम स्पेंड किया था। ब्रायन जैसे व्हील चेयर मैन के पास मुझे देने के लिए था ही क्या? जब मुझे जैकब जैसा रियल मैन मिल सकता है तो मैं किसी व्हील चेयर मैन के साथ अपनी जिंदगी क्यों गुजारूं? आखिर कुदरत ने हमें जिंदगी जीने के लिए दी है, किसी की मजबूरियों पर बर्बाद करने के लिए थोड़े ही दी है। इतना कहकर जोसेफिन जोर का कहकहा लगाकर हंसती। जिंदगी में पहली बार प्रीति को उसकी हंसी देखकर घृणा महसूस हुई। वो हतप्रभ सी उसे देखती रह गई। आसमानी परी की मुस्कान के पीछे कितना शातिर दिमाग काम कर रहा था, प्रीति कभी समझ ही नहीं पाई। उसने उस दिन जाना कि गिरगिट ही नहीं, इंसान भी रंग बदलते हैं। उसने जाना कि शादी परिवार द्वारा तय की गई हो या खुद की इच्छा से की गई हो, उसे सफल असफल लोग खुद बनाते हैं। मृग तृष्णा में फंसी वो कभी देख ही नहीं सकी कि असली हरियाली उसके पैरों के नीचे थी। जरूरत थी सिर्फ सही दृष्टिकोण की। हाँ, जिंदगी जीने के लिए होती है, पर किसी दूसरे के जज्बातों को रौंद कर अपने ख्वाब सजाने के लिए नहीं। प्यार और त्याग एक दूसरे के पर्याय हैं। त्याग के बिना प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। प्यार प्यार है, भौतिक जरूरतों का गुणा भाग नहीं। भौतिकता के लाभ हानि के गणित से अर्जित किया गया प्यार त्याग का नहीं, बल्कि वासना का पर्याय होता है। उसे जिंदगी का घिनौना चेहरा देखने को मिला। उसे समझ में आया कि कभी कभी आंखों को जो दिखता है और कानों को जो सुनाई देता है वो भी गलत हो सकता है। पता लगा कि हर शख्स आवरण ही ओढ़े हुए जी रहा है, अपने अपने झूठ का। खैर, उसे ये आवरण और नहीं ओढ़ना था। जिंदगी को जिंदगी के जैसे ही जीना था, मृग तृष्णा की तरह नहीं। जिंदगी को जिंदगी बनाना उसके अपने हाथ में था। मृग तृष्णा तो सिर्फ छल है, धोखा है अपने आप से। जोसेफिन के विदा होते ही उसने शरद को फोन किया और बोली, मैं बीजिंग आ रही हूं,

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी आवरण। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। ईद का चांद भी क्या खूब पैगाम लाया है, ईद का चांद भी क्या खूब पैगाम लाया है, दूर बैठा कोई शख्स आज फिर याद आया है। सिवैयों की मिठास ने घुली है दुआओं की खुशबू, लगता है खुदा ने आज मोहब्बत को मुस्कुराया है। जी हाँ श्रोताओ, वक्त हो चला है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम यानी भूले बिसरे गीत का, और आज का जो सेगमेंट है वो अपने आप में बेहद खास है। ना जाने कितनी दुआएं, कितनी बातें, कितनी फरियादें और कितनी खुशियां लेके आया है आज का ये एपिसोड, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं ईद स्पेशल आपका भूले बिसरे गीत। मैं हूं आपकी आरजे अनोखी और आज हम बात करेंगे ईद की। हवा में खुशबू है ईद की, दिलों में है मोहब्बत की मिठास और यादों में बसे हैं भूले बिसरे गीत। ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं है दोस्तों, बल्कि दिलों को जोड़ने का पैगाम है। जब कोई अपने रूठे हुए को गले लगा ले, जब कोई दूर बैठा इंसान भी यादों में करीब महसूस हो, तो समझ लीजिए ईद सच में आ गई है। और आज के इस खास मौके पर हम सुनेंगे कुछ ऐसे गीत जिनमें इश्क भी है, इंतजार भी है और दुआओं की मिठास भी है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले नगमे की ओर, जो कि है सनम बेवफा मूवी से। इसके बोल हैं, मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, बिना ईद के ही चांद का दे।

गया यूं। जी हाँ, बिना ईद के ही अगर चांद का दीदार करना हो तो कौन कैसे करता है, वो इस गाने में आप बेहद खूबसूरती से एंजॉय करने वाले हैं। फिल्म है सनम बेवफा, सिंगर है लता मंगेशकर जी और विपिन सचदेवा जी, और अगर लिरिसिस्ट की बात करें तो है सावन कुमार तक जी, और म्यूजिक डायरेक्शन महेश जी और किशोर जी का है। दोस्तों, मोहब्बत में कभी कभी इंसान को अपने जज्बात साबित करने पड़ते हैं, और जब दिल सच्चा हो तो कसम भी सिर्फ खुदा की ही खाई जाती है। ईद की रातों में जब चांद आसमान से मुस्कुराता है तो कई दिलों में ये एहसास भी जगता है कि जिसे हम चाहते हैं वो भी हमें याद कर रहा होगा। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं ये नगमा।

है, रात भी है और खामोशी भी है। चांद भी है, रात भी है और खामोशी भी है। दिल में एक मीठी सी बेहोशी भी है। ईद की रात में अगर तुम याद आ जाओ, हाँ आप ही से कह रही, ईद की रात में अगर तुम याद आ जाओ तो समझो खुदा की मेहरबानी भी है। बेशक अगर किसी अपने की याद आए और रात हो ईद की, तो फिर क्या पल होगा। चलिए उसी को महसूस करते हैं नेक्स्ट वाले नगमे के साथ में। दोस्तों, ईद का असली मतलब है मिलना और दिलों को जोड़ना। कई बार ऐसा होता है कि किसी से नाराजगी हो जाती है, लेकिन ईद के दिन वही इंसान सबसे पहले याद आता है, क्योंकि ईद सिखाता है मोहब्बत में दूरी नहीं करीबियां होनी चाहिए। मोहब्बत की कहानी में कभी कभी दर्द भी आ जाता है, कभी किसी की बेवफाई तो कभी हालात की दूरी। लेकिन सच ये है कि जिसे दिल से चाहा जाए उसकी यादें कभी खत्म ही नहीं होती। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही दर्द भरा लेकिन बेहद प्यारा गीत।

0: मिठाई लो मिठाई, अल्लाह ताला ने जेलर खान को औलाद बख्शा। हाँ
1: बेटी,
0: और उसका नाम हम रखा। हाँ
1: लाओ ये मिठाई, अब मैं इसे बांटता हूँ अपनी दोस्त की खुशी के लिए।
0: वो कैसा खुशी, वो जल्दी बोलो बिरादर, कैसा खुशखबरी?
1: ओए लाले दी जान, तुम बाप बन गए हो बाप।
2: और इत्तेफाक की बात यह है बादशाह खान, मेरे बेटे के जन्मदिन के दिन ही तुम्हारी बेनजीर ने एक और बेनजीर को जन्म दिया है।
0: ओए क्या बोलता है योई?
2: हाँ बादशाह।
0: ओए बादशाह खान, तुमने मेरे बेटी का क्या नाम रखा है?
3: हिना।
0: और अब मैंने तुम्हारे बेटी का क्या नाम रखा है मालूम?
3: तो खोचे हमको क्या मालूम,
0: उसी नाम का हिंदुस्तानी अनुवाद है।

कहते हैं ईद की चांदनी में अगर कोई दुआ मांगी जाए तो वो दिल तक जरूर पहुंचती है। शायद इसीलिए कई लोग चुपचाप ये दुआ करते हैं, या खुद जिसे हम चाहते हैं उसके दिल में हमारे लिए वही मोहब्बत रहे। जी हाँ, नेक्स्ट नगमा जो है वो कुछ ऐसा ही है, थोड़ी सी दुआ मांग रहा है आज के दिन, आज यानी ईद के दिन। इश्क का अंदाज भी बड़ा अजीब होता है दोस्तों, कभी एक मुस्कान से दिल जीत लेता है और कभी एक नजर से ही कयामत कर देता है। उफ़, तो आइए सुनते हैं ये नगमा जिसके बोल है जरा कीजिए करम। साबिर ब्रदर्स की आवाज में ये कवाली, मूवी है कायदा कानून जो आई थी 1993 में, सिंगर है साबरी ब्रदर्स। लिरिक्स की बात करें तो समीर साहब ने इसको लिरिक्स से सजाया है और म्यूजिक डायरेक्शन है आनंद साहब का। ईद का दिन है तो दुआ भी खास हो, ईद का दिन है तो दुआ भी खास हो, हर दिल में मोहब्बत का एहसास हो, जो दूर है वो करीब आ जाए, जो दूर है वाकई वो करीब आ जाए, खुशियों से भरा हर एक सांस हो। चलिए इसी एहसास के साथ बढ़ते हैं और दुआओं में याद करते हैं अपने उनको जो हमसे थोड़े से दूर, थोड़े से नाराज और पर दिल में कहीं पास है।

ईद की रात है, चांद भी पूरा है, दिल में कहीं कोई किस्सा अधूरा है। काश इस चांदनी में वो भी याद कर ले हमें, काश इस चांदनी में वो भी याद कर ले हमें, जिनके बिना हर एक मंजिल, हर एक मंजर और ये जिंदगी अधूरा है। दोस्तों, ईद हमें सिर्फ नए कपड़े और मीठी सेवई ही नहीं देती, बल्कि दिलों में माफी, मोहब्बत और अपनापन भी भर देती है। अगर किसी से कोई गिला शिकवा है तो आज का दिन सबसे अच्छा है उसे खत्म करने का, क्योंकि ईद का असली पैगाम है मोहब्बत बांटो, खुशियां बांटो और दिलों को जोड़ो। जी हाँ दोस्तों, ईद की इस खूबसूरत शाम में अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई हो और दिल में किसी खास की याद जग गई हो, तो समझ लीजिए हमारा आज का भूले बिसरे स्पेशल सफल हो जाएगा। इसी प्यारे एहसास के साथ चलते चलते सुनते हैं एक और दिल को छू लेने वाला गीत, जो कि है ईद का इतना हसीन सबब। आइए इस सबब को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं आपके अपने शो, जी हाँ, भोले बिसरे गीत।

दोस्तों, ईद की इस खूबसूरत और रोशन रात में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो गैनेस्ट 89.6 एफएम के साथ में। मैं हूं आपकी अपनी आरजे अनोखी और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ दिस फेस्टिव जिसका नाम है ईद। जी हाँ, मिठास घुल जाती है ईद के नाम से ही, क्योंकि ईद पे भैया सेवैया जो मिलती है और सेवैया के साथ में ईदी। फिलहाल बात करेंगे इस पे भी कि भैया सेवैया इतनी जरूरी क्यों होती है ईद में बननी, लेकिन उससे पहले कुछ और बात। चूंकि रात का ये सन्नाटा और आसमान में चमकता हुआ चांद और दिल में उठती हुई किसी की खास वाली याद, बस यही तो है ईद की असली मिठास। मैं हूँ आपकी होस्ट या दोस्त आरजे अनोखी और आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत का ईद स्पेशल शो, जहाँ आज की रात हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की, यादों की और उन गीतों की जो कभी दिल से पुराने नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, ईद की रात में एक अजीब सा जादू होता है। कहते हैं जब चांद आसमान में मुस्कुराता है तो कई दिलों में दबे हुए जज्बात भी जाग जाते हैं। कोई किसी को याद करता है और कोई किसी के मैसेज का इंतजार करता है और कोई चुपचाप बस आसमान को देखकर दुआ करता है कि जो मुझसे थोड़ा सा दूर है पर मेरे दिल के सबसे करीब है, उसको अपनी दुआओं से नवाजना। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा। और जब बात जज्बात की हो तो एक गीत याद आता है जिसमें मोहब्बत की सच्चाई है और इंतजार भी भरा हुआ है। कारण है भाई, ईद का मौका है और कोई अपना अगर आपसे दूर है तो ये नगमा आप जरूर सुनना चाहेंगे। मूवी है दिल परदेसी हो गया, जो आई थी 2003 में, और गाने के बोल है मुबारका मुबारका मेरा सोना सजन, याद आया ना? हाँ, यही नगमा। चलिए अभी इसी का लुफ्त उठाते हैं हम, और इसको आवाज से सजाया है सोनू निगम साहब ने और इनके साथ में युगल जोड़ी जो बनाई है वो है अलका याग्निक जी ने। और लिरिक्स की बात करें तो सावन कुमार जी की लिरिक्स हैं और म्यूजिक डायरेक्शन रहा है उषा खन्ना जी का। तो फिर बढ़ते हैं ईद स्पेशल शो में इस नगमे की ओर, लेकिन उससे पहले कुछ अर्ज करती है आपकी अपनी आरजे अनोखी। ईद का चांद निकला तो तेरी याद भी आई, तेरी। ईद का चांद निकला तो तेरी याद भी आई, रात की चांदनी में तेरी सूरत जो नजर आई, दुआ की कि ये मोहब्बत यूं ही कायम रहे। हाँ, दुआ की मैंने कि ये मोहब्बत यूं ही कायम रहे, जैसे हर साल ईद के साथ खुशियां हजार आई। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मेरे लाइफ में आए और खुशियों से भर गया मेरा जीवन। फिलहाल बढ़ते हैं, मुबारकबाद देते हैं इस मुबारका सॉन्ग।

ईद आई तो लगा जैसे करम हो गया, सूना सा दिल भी आज गुलशन हो गया, जिसे याद करते थे चुपके चुपके हर रात, जिसे याद करते थे चुपके चुपके हर रात, आज उसी का ख्याल भी इबादत सा हो गया। जी हाँ, ये शायरी मैंने इसलिए फरमाई है क्योंकि ये जो नेक्स्ट वाला सॉन्ग है वो कुछ हद तक आप इसे रिलेट कर पाएंगे, या फिर हो सकता है पूरी तरह से रिलेट कर पाएं। गाने के बोल हैं, मुझ

गीत का। बेशक मूवी है बरसात की रात, जो आई थी 1960 में और आवाज से इसे सजाया है लता मंगेशकर जी ने। और लिरिक्स की बात करें तो साहिर लुधियानवी जी, जो कि हमेशा से सभी के फेवरेट रहे हैं, और म्यूजिक डायरेक्शन है रोशन साहब का। और ये फिल्म केवल इस सॉन्ग के लिए ही नहीं बल्कि अपनी शानदार कव्वालियों और संगीत के लिए बहुत मशहूर हुआ था उस वक्त में। तो ये गाना सुनने से आप और हम कैसे पीछे रह सकते हैं आज के अपने, जी हाँ, ईद स्पेशल शो में आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत अपने आरजे अनोखी के साथ में। और मैंने कहा था ना कि सिवैया क्यों खाई जाती, आखिर में ये इतना खास क्यों होता है, चलिए इस पर भी थोड़ी सी वार्तालाप कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, ईद पर जब घर में सिवैया बनती है तो सिर्फ मिठास नहीं बनती, उसमें घुली होती है माँ की ममता, परिवार का प्यार और रिश्तों की गर्माहट। कई घरों में ये परंपरा भी होती है कि सबसे पहले सिवैयां पड़ोसी को भेजी जाती है, यानी ईद सिखाती है कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। अकेले कोई खुशी नहीं सेलिब्रेट कर सकता है, गम हम हमेशा अकेले सेलिब्रेट करते हैं या फिर उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर खुशी की बात करें तो भैया असली खुशी तो सबके साथ ही आती है। और एक बात और आपसे बतानी थी कि क्या आपने कभी सोचा है कि ईद पर सिवई ही क्यों बनाई जाती है? दरअसल सिवैयां सिर्फ एक मिठास नहीं बल्कि मोहब्बत और बराबरी का प्रतीक है। पुराने समय में ये परंपरा रही है कि ईद के दिन घर की बनी सिवैयां पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटी जाती है। इसका मतलब है खुशियां अकेले नहीं सबके साथ बिल्कुल से बटोरी जाती है, बांटी जाती है, मनाई जाती है। और सिवैयों की पतली पतली डोरियां हमें ये सिखाती हैं कि रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, नाजुक जरूर होते हैं, लेकिन अगर संभाल कर रखे जाएं तो जिंदगी भर मिठास बनी रहती है। तो दोस्तों, जब बात मिठास की हो तो मोहब्बत की मिठास कैसे पीछे रह सकती है, इसी एहसास के साथ सुनते हैं ये वाला गाना बिल्कुल, जिसके बोल हैं मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, ऐसी खुशी लेके कौन आया, आया चांद।

ईद की रात है, चांद भी पूरा है ना। ईद की रात है, चांद भी पूरा है, दिल में एक अधूरा सा किस्सा जरूर है। जी हाँ दोस्तों, तो सेवैयों की जैसे हमारे रिश्ते भी मीठे रहने चाहिए, दिल में मोहब्बत के दिए जलते रहने चाहिए। ईद का असली तोहफा यही तो है दोस्तों, रिश्ते हर हाल में मुस्कुराते रहने चाहिए। अब चलेंगे नेक्स्ट वाले नगमे की ओर, जिसके बोल हैं मुबारक ईद मुबारक। तुमको ना भूल पाएंगे मूवी जो कि आई थी 2002 में और आवासी सजाया है इसे युगल जोड़ी यानी सोनू निगम जी और स्नेहा पंत जी ने, और लिरिक्स की बात करें तो जलेश शेरवानी साहब की, म्यूजिक डायरेक्शन है साजिद वाजिद की युगल जोड़ी का। चलिए फिर इस गाने की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर आएंगे नेक्स्ट वाले सॉन्ग पे। आपके अपने शो भूले बिस्तरे गीत के साथ आप मना रहे हैं ईद। जी हाँ ईद, और ईद माने बस ईद, जिसमें हो जाए कभी किसी का दीद, वही तो है आपकी अपनी असली ईद भाई। वो कहीं भी हो सकती है, दीद आपके ख्यालों में भी हो सकता है, सामने से भी हो सकता है, या फिर कहीं और भी हो सकता है। फिलहाल सेलिब्रेट करते हैं इस प्यारे से, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही अच्छे वाले सॉन्ग को आपके अपने शो के साथ।